आपके साथ तबले पर संगत किया है विनोद पाठक ने। तो लीजिए सुनिए रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग नट भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे रोहित प्रसन्ना द्वारा बांसुरी पर बजाया राग नटभैरव। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

0: ये और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गोस्वामी तुलसीदास के विचार।

बड़ी कृपा की भगवान ने कि हमें मानव का शरीर प्रदान किया, मोशन हो गया, हम जीव जंतुओं से ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव बन गए। इतना ही नहीं, ईश्वर ने जीव को सभी सुविधाएं सोचने समझने की शक्ति दी, उसे असीम ज्ञान से पूरित शास्त्र, वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृतियां, गीता, रामायण आदि न जाने कितने सारे ग्रंथ उसकी शंका समाधान हेतु उपलब्ध करा दिए। साथ ही उसका मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर साधु संत फकीर

0: गुरुजन भी भेजे। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी मानव का अवतार लेकर उसकी सहायता के लिए, धर्म रक्षण के लिए आए और उनकी इस अपार कृपा का उद्देश्य मानव को जीव मात्र को लौकिक झंझटों में रहते हुए भी उसे छुट्टी पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना होता है। मेरी संतानें, मेरा अंश आनंदित हो जाएं, बस यही ईश्वर चाहता है। जीव यदि उद्धार चाहता है तो उसे विषयों को विष के समान त्यागना होगा। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का सेवन ही नहीं उनका चिंतन भी बड़ा घातक होता है। जीव को आनंद के लिए अपनी वासनाओं से सावधान रहना होगा, जीतना होगा अपने मन एवं चंचलता को। अरे ये मन कुछ नहीं मात्र संकल्पों विकल्पों का भंडार है। आप संकल्प विकल्प करना छोड़ दीजिए और आप एकदम शांत और आनंदित। तो संकल्प विकल्प का स्रोत क्या है? ये आती हैं हमारी इच्छाओं से। हमारी अशांति का कारण ये इच्छाएं हैं। यदि इन्हें समाप्त नहीं कर सकते तो उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दो। हमारी आसक्ति मात्र ईश्वर में हो जाए तो वह आसक्ति न होकर भक्ति बन जाएगी और हम अपने उद्गम से ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तेरा स्वामी परम पिता तो आतुर है तुझसे मिलने के लिए, तेरे कल्याण करने के लिए। बस यदि देरी है तो तेरी ओर से ही है। वो कहता है, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे उसी समय साधुता प्रदान कर देता हूँ। फिर वह जन्म जन्मांतर तक शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है, फिर उसका नाश नहीं होता। अरे प्रारब्ध, जिसे तूने स्वयं अपनी कर्मों द्वारा सृजित किया है, अकाट्य है, तुझे अपना प्रारब्ध भोगना ही होगा। अतः उसे रोकर नहीं, हंसते हंसते भोग और सत्कर्म करके, निष्काम कर्म कर, फिर बंधेगा नहीं, मुक्त होगा, शांति पाएगा। कर्म करते हुए उसमें आसक्त मत हो तो कर्म फल व्याप्त नहीं होंगे। जीवन के मुक्ति मार्ग में अहंकार किसी भी प्रकार का हो घातक है, यही मनुष्य का विकास नहीं होने देता। अतः अहंकार का त्याग करो। मिथ्याचरण अर्थात हम जो हैं वह न दिखाकर अपने को वह दिखाने की कोशिश करें जो हम नहीं हैं, मिथ्याचरण है। मिथ्याचारी बनकर हम दूसरों की अपेक्षा स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अतः मिथ्याचरण का तुरंत त्याग हो। हे मानव, यदि आनंद चाहता है तो वह तुझे बाहर नहीं अपने भीतर ही मिलेगा। आनंद जीव का अपना स्वरूप है, इसे अपने आनंद को कैसे प्राप्त करें यही धर्मशास्त्र सिखाती है। दूध मक्खन में है किंतु दिखाई नहीं देता, युक्ति से निकाला जाता है। इसी प्रकार आनंद भी जीव को स्वभाव से ही प्राप्त है, किंतु इसे प्रत्यक्ष रूप से पाने के लिए विशेष कला की आवश्यकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, स्व माया बस रही गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश होते हुए भी माया के आवरण में फंसकर इस नाशवान शरीर को ही मैं मान बैठा हूँ कि फिर इसी के अनुसार मैं आचरण करता हूँ तथा ईश्वर से हटकर अपनी अलग सत्ता बना लेता हूँ। केवल ब्रह्म की ही तो सत्ता है, वह ही एकमात्र है, एक अकेला है, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। अपने आप को उससे अलग मानकर जीव दुख पाता है, अतः वह स्वयं भी अपने दुखों का कारण है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खास में मिलकर गुले गुलजार होता है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 127।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नवविवाहित जोड़ियों

को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज हमने आपको सुनवाया बालकांड भाग 127। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्ड विधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद्भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धक

0: राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंग प्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की

0: बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Delhi Police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. Prime Minister Narendra Modi has thanked the country's youth for the response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरितीरथ सिंह के गाए कुछ शब्द। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। गीतों भरे गुड मॉर्निंग के आज के इस शो के साथ मैं हूँ आपका दोस्त नवीन सक्सेना, बहुत ही खूबसूरत गीतों का एक गुलदस्ता लेकर, कुछ चुनिंदा फूल लेकर, जो आज आपकी सुबह को बेहतरीन बना देंगे दिन भर के लिए। सो एंजॉय विद दिस ब्यूटीफुल नंबर।

जीवन का सबसे खूबसूरत कोना वो होता है जब आप किसी को दिल दे बैठते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि वो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी नहीं कि उसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छाइयां उसमें हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं एक बात ऐसी होती है जो आपको छू जाती है और आपको लगता है कि शायद बस यही है जिससे बात करनी है, जिसकी बात सुननी है, जिसकी बात माननी है।

बिल्कुल भी नहीं, अपने हाल को बिल्कुल भी बेहाल मत कीजिए, क्योंकि हाल बेहाल जब हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रखी है। तो इस उथल पुथल और इस हलचल से अपने आप को दूर रखिए, कूल एंड काम रखिए। और हाँ, जिंदगी जैसे चल रही है ना वैसे ही चलने दीजिए, और इस खूबसूरत गीत के साथ आज के इस मौसम में खूबसूरत से सफ़र पर निकल पड़िए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो याद रखिएगा, लेकिन हाँ एक बात और भी याद रखिएगा कि जब भी आपके मन में कुछ हो ना, उसको अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनों को बताना तो चाहते हैं लेकिन कहीं थोड़ा सा हिचकते हैं। हिचकिचाहट को दूर रखिए जनाब, मन की बात अपने मन के दोस्तों से कीजिए। और हाँ, जब अपने आप अपने दिल की बात को शेयर करते हैं ना, बांटते हैं ना, तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं और दुख कम हो जाता है। एंड वाकई देन दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, आप करके तो देखिए। और हाँ, एक खूबसूरत सी बात अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, चाय पर उसके साथ बैठिए और हल्की हल्की चुस्कियों के साथ

0: अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम की तो बरी गुड मॉर्निंग, और आज आपका साथ दे रहा था आप ही का दोस्त नवीन सक्सेना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रखे गई। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को हैं। अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ग्रेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की

0: भावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य

0: तक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स NTA पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher-level committee of experts chaired by

0: 130 for 9 points and securing a place on the podium. Jhandu Kumar's bronze medal is a major achievement considering his challenging journey. He overcame polio at a young age and faced financial hardships while helping his family. His dedication to strength training and para powerlifting helped him rise to the international level. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Abhishek. The students' protests at Jantar Mantar is covered prominently by the dailies. Government steps up bid to end arm farce. Protesters firm on Pradhan's exit, leads Hindustan Times. Government seeks time for call on Pradhan exit demand, says the Times of India. Cabinet clears bill imposing tougher paper leak penalties, leads the Statesman. 47 officials sacked in major NEET paper leak purge. Legal action likely, notice, notes the Tribune. Bill to grant Vande Mataram equal legal protection as national anthem introduced in Rajya Sabha, says the Statesman. The Indian Express, in its editorial piece, Shine On, Dick Parry, writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone, and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On, You Crazy Diamond, written in memory of Sid Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावरलिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि ये मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम एनटीए में मुकम्मल तौर पर

0: तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरख्वास्त तलब की है। NTA ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील नौ के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। NTA ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मरतबा खिदमात हासिल की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ज़रिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की वजारतें व महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। तहकीकात के अलावा ये खसूसी टास्क फोर्स मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ मौसर तालमेल रखेगी ताकि इस तरह के मुकदमात में तेज़ी लाने के लिए रोज़ाना समात को यकीनी बनाया जा सके। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से मुतालिक मौसूला मुस्बत रद्दअमल और तजावीज़ पर हर एक का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को सज़ा देने का एक सख्त कानून तश्कील देने की हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामलात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से मुतालिक शिकों को शामिल करते हुए एक नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इस इजलास में पेश किया जाएगा। बिल के इस मुसवदे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। इस मुसवदे का ऐलान वज़ीर आज़म ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में किया था। जनाब मोदी ने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से कल जारी किया गया है, कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: हुकूमत इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम के CJP के मुतालबात पर आज इसके वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इससे पहले मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात के बारे में CJP के मुतालबात को पूरे सब्र तहमुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 असल मुतालबात सामने रखे और इम्तिहान पेपर लीक पर काबू पाने के लिए इस्लाहात की कुछ तजावीज पेश की।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुई।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत, तालीम और समाजी शमूलियत के लिए उनकी अहदबस्तगी और भारत रोमानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के एतराफ़ में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से डॉक्टर ऑनरिस कोज़ा के एजाजी खिताब से नवाजा गया है। इस एजाज़ को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम वक्फ किया और कहा कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती की अक्कासी है। भारत और रोमानिया के दरमियान गहरे सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक सदी कबल रविंद्रनाथ टैगोर के दौरे बुखारेस्ट को याद किया। उन्होंने मुश्तरका तहकीकी फैकल्टी और तलबा के तबादले

0: बदलों के जरिए मजीद तालीमी तआवुन की हौसला अफजाई की और ऐलान किया कि भारत ने रोमानिया के लिए ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स को दोगुना कर दिया है।
1: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering, and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में माहौल गर्मजोशी, वक़ार और मसरत से भरपूर था, क्योंकि वहाँ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी का अहम एजाजी डॉक्टरेट का खिताब पेश किया गया। अजीमुशान ऑडिटोरियम में एकेडमिक रोप में मलबूज फैकल्टी मेम्बरान, तलबा, सफारतकारों और मुमताज़ मेहमानों से भरा हुआ था, जिन्होंने खड़े होकर सदर जमहूरिया का पुरजोश इस्तकबाल किया। ये तकरीब सिर्फ एक तालीमी तकरीब नहीं थी, बल्कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती का जश्न भी थी, जिसमें बाहमी एहतराम और उम्मीद का जज्बा पूरा हॉल महसूस कर रहा था। रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल MV ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय शहरी की मौत हो गई थी। भारत ने तजारती जहाज़ों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया और सभी मुतालिका फरीकों से कहा है कि वो समंदर में आबदोरफ्त और बैन अलाक़वामी तजारत की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजारत खारजा के तर्जुमान इस जहाज़ पर 18 जुलाई को हमला किया था। वजारत खारजा के मुताबिक इस जहाज़ पर 18 जुलाई को हमला किया गया था, जब यह जहाज़ बहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज़ में अमले के 10 अफराद सवार थे, जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में एक भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज़ में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तजारती जहाज़ों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की ज़िंदगियों को जोखम में डालने की वाज़ेह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार LPG टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और LPG टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैर वाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ रबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: द्रास में वाक़े कारगिल वार मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवक़ार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोज़ा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क़यादत करेंगे। हज़ारों विजिटर, साबिक फौजियों, शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात, हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत हैं। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेज़बान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी

0: अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बर्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता डीएमआरसी ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियात बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीमी बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को शाये सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में NTA के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक NTA इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफ़र में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज़्यादा सख्त सज़ा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि ये बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
3: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक परिचर्चा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
4: श्रोताओं नमस्कार। हर वर्ष 25 जुलाई विश्व डूबना रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक खास विषय या थीम पर केंद्रित है, और इस वर्ष का थीम है एकजुट होकर इस स्थिति को बदलना, यूनाइट टू टर्न द टाइड ऑन ड्राउनिंग। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 से 2035 तक इस विषय पर एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनी है और एक अभियान की व्यवस्थित की जा रही है, जिसमें समुदाय, सर्वाइवर्स, कम्युनिटी, बिहेवियर चेंजेस, हाउ टू इम्प्रूव वाटर सेफ्टी का कंसेप्ट है और उसका जिक्र है। डूबना जैसी विश्वव्यापी समस्या पर एक विशेष परिचर्चा के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK राव, जो कि चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं। हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक इंटरनेशनल स्विमर हैं। और हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं मिस्टर रणवीर शर्मा, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के स्विमिंग कोच हैं और काफी बार इंडियन टीम के साथ बाहर जा चुके हैं। डॉक्टर, और सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूँ, क्योंकि आजकल रोजाना अखबारों में कभी भी रोज खबर सुनने को मिलती है, क्या ये जो डूबने वाली जो प्रॉब्लम है, क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम है या ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी राय?
5: अगर जो न्यूज में आता है वो अधिकतर डेथ होती है, इतने लोग मर गए, अगर डेथ की बात करो तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर ड्राउनिंग की आप बात करते हैं तो वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, एक

0: सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राउनिंग का असली अगर आप हैंडल करें इसको या कम करना चाहें तो प्रिवेंशन इसका असली आंसर है। मेडिकल केयर कंट्रीब्यूट करती है उसकी रिकवरी में या उसको आगे क्या होगा डूबने के बाद। डूबना किसे कहते हैं
1: रणबीर जी? जैसा डॉक्टर राव कह रहे हैं, डूबना किसे कहते हैं, और एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष भारत में 30,000 लोगों की डेथ होती है ड्राउनिंग से, और दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लोबली इंडिया की फिगर्स हाईएस्ट है, उसके बाद में गुआना आता है साउथ अमेरिका। तो क्या ये जो ड्राउनिंग है, आप किसको कहते हैं डूबना?
2: सर देखिए, जो डूबना जो वर्ड है उसमें जब हम जो हमारी एक्टिविटी को कवर करने के लिए जब हमारा जो पानी है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी जब एक्टिविटी बंद हो जाती, क्योंकि जब आदमी पूरा डूब जाता है या फिर जब उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, पूरी बॉडी में पानी चला जाता है, ऑटोमेटिकली वो फ्लोट पे आ जाता है। उस फ्लोटिंग से पहले का जो फेज होता है जिसमें हम डीपली जाते जाते पूरे डीप चले जाते हैं, उस कंडीशंस को हम डूबना कहते हैं, जहां हमारी एक्टिविटी एकदम से बंद हो जाती है।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, जैसा कह रहे हैं डूबने की समस्या निश्चित रूप से गंभीर है, और आप इंटरनेशनल स्विमर है, इंग्लिश चैनल आपने पार किया, लेक ज्यूरिच आपने पार किया, अब ये बताइए मुझे कि डूबने के कारण क्या है? कैसा कहते हैं कि साहब एक छोटा बच्चा भी डूब सकता है, जो एक साल से कम है वो टब में डूब गया या बाथ सिंक में डूब गया और या बाल्टी में डूब गया, एक साल से चार साल के बच्चे हैं वो घर में लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखे हैं वो उसमें डूब गया, तो आप क्या समझते हैं ये स्विमिंग जो इतना छोटा बच्चा कैसे डूब जाता है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? शुरुआत इससे करेंगे फिर बात करेंगे कि हम क्या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल की व्यवस्था या सुविधाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और स्विमिंग हर एक को सीखनी चाहिए, क्योंकि क्या हम स्विमिंग को एक एक्सरसाइज माने, स्विमिंग को एक स्पोर्ट्स माने, स्विमिंग को एक थेरेपी माने, आप क्या कहेंगे?
3: डॉक्टर जवाहरजन, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है, बट ये मैं आपको पार्ट्स में इसका आंसर देना चाहूँगी। जैसे कि आप रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं वो ज़रा से भी पानी के भाव में, जैसे आप छोटे स्विमिंग पूल में भी लेके गए, ये मान लिया आपने कि 2 फीट पानी है, बच्चा खड़ा हो पा रहा है, बट जब पानी में ज़रा सा मूवमेंट बनता है बच्चा गिर जाता है, हेड टर्न हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की ड्राउनिंग हो जाती है। तो उसी तरीके से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपको बच्चे को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना है। जहाँ बच्चे से आपने सुपरविजन हटा दी और आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, ज़रा सा पानी का भाव स्विमिंग पूल के अंदर उनको गिरा देगा पानी के अंदर, और हेड टर्न होते ही बच्चे की ड्राउनिंग हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे बड़े लोग हैं जो थोड़े एज के हैं, एडवेंचर में आ जाते हैं, दोस्तों का पीयर प्रेशर, अरे मैं देख लूंगा डीप में, चल मैं संभाल लूंगा, दे आर नॉट ट्रेन्ड लाइफगार्ड। किसी के पुश करने पे पीयर प्रेशर में आप गहरे पानी पे मत कूदिए, आपको शैलो वाटर्स में रहना है, वेस्ट से बिलो पे रहना है। जब आप एक माहिर स्विमर हो जाएं तब आप गहरे पानी की तरफ अपना रुख करिए। सावधानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्विमिंग पूल्स पे आप देखेंगे बोर्ड लगा होता है स्विम एट योर ओन रिस्क, राइट? वो इसलिए लगा के छोड़ा हुआ है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्विमिंग एक रिस्क है। अगर आप एक बेहतरीन तैराक नहीं हैं, सावधानियों के बिना एंड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, ये मत सोचिए कि मैं कर जाऊंगा जोश में। आपका एक ब्रीदिंग पैटर्न है, किस तरह से आपने स्विमिंग सीखी है, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है, पूल पार्टीज हो रही हैं, ये हो रही हैं, आप आए दिन जैसे डॉक्टर राव ने बताया कि जिस तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, ये गलत है। और हर जगह सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि स्विमिंग पूल की गाइडलाइंस हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। जहाँ भी आप गाइडलाइन से सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहाँ हादसे होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं।
1: डॉक्टर राव, रिस्क फैक्टर्स क्या है? Who are at risk?
0: रिस्क में सबसे बड़ा वो है जिसको स्विमिंग नहीं आती और वो डीप वाटर में उतरता है, सबसे बड़ा रिस्क वो है, बिकॉज इट्स अ रिस्की बिहेवियर। नेक्स्ट वो है जो कि हालात की वजह से होता है। आपके घर में पानी है, टब है, बच्चे को आपने छोड़ दिया, मदर कहीं बिजी हो गई, उसके बाद बच्चा गया और टब में उतर गया, तो वो अनसुपरवाइज बच्चा जो है वो एक रिस्क है अगर उसके पास वाटर सोर्स है जिसमें वो उतर सकता है। तीसरा होता है कि आपकी एज क्या है। यूजुअली यंगर जो बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 50% डेथ्स 18 साल से कम में होती है। उसके बाद आता है कि कोई एसोसिएटेड आपको डिजीज है या आप एक रिस्की बिहेवियर में करते हैं। डिजीज में जैसे आप समझ लीजिए आपको ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपका बैलेंस खराब करेगी, ऐसी कोई रिस्क है जिसमें आपका हेड बहुत क्लियर नहीं है, मान लीजिए अल्कोहल पी हुई है आपने, ड्रग्स ली हुई है आपने, ऐसी चीज़ है जैसे आपको पानी में सीजर हो गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको, तो इन लोगों के अंदर स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेनी होती है कि या तो ये पानी में जाए ना, और अगर जाए तो सुपरवाइज जाए, दैट मीन्स कि कोई वॉच ओवर कर रहा है ताकि अगर आपको कुछ हुआ तो वो आपको बचा ले। और तीसरा, आप सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, जैकेट लेंगे, लाइफ बॉयज लेंगे, जो भी लेंगे, तो इन लोगों के अंदर वो वाला होता है। पर अधिकतर वो रिस्क पे है जो कि जाने अनजाने पानी में उतर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आती है कि स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल था, एक अभी आई थी कि गोल्फ कोर्स में एक हैजार्ड था, वाटर हैजार्ड, बच्चों ने टापा और उसमें उतर गए। दिस इज अ रिस्की बिहेवियर, क्योंकि वो जैसे कह रहे हैं आप, वहां कोई बचाने वाला नहीं है और इनको स्विमिंग आती नहीं है, दे हैव नो आइडिया कि उसकी वॉल ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो सोचते हैं धीरे धीरे गहरा होगा ये, तो वहां पे वो फंस जाएगा।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, 53% डेथ कहा जाता है कि स्विमिंग पूल्स में होती है, और आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग करी है, तो स्विमिंग पूल्स की क्या कोई क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए कि साहब आपने स्विमिंग करते हो, तो क्या स्विम सूट का कोई कलर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो कि भाई ये वाला कलर कोडिंग आप करके जाओगे, आपने नियॉन ऑरेंज लिया या ब्राइट पिंक लिया या ब्लू लिया, तो ये सेफ कलर है तो दूर से पहचाना जाएगा कि भाई इसकी कलर कोडिंग अच्छी है, कैप लगाई हुई है, या कोई कलर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, गर्म पानी होना चाहिए स्विमिंग पूल में सीखने के लिए या ठंडे पानी में? आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग, बताइए मुझे कि स्विमिंग पूल में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
3: देखिए, स्विमिंग पूल्स के साथ ना यूजर्स का एक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्विमिंग पूल के बाहर आप देखेंगे कि डेक एरिया मार्क करा जाता है कि शैलो एंड कहाँ है, यहाँ 3 फीट पानी है, यहाँ 2 फीट पानी है, यहाँ 4 फीट है, यहाँ 6 फीट है। तो जब एक यूज़र स्विमिंग पूल में आता है तो उसे पहले ये ओरिएंटेशन देनी चाहिए स्विमिंग पूल के स्टाफ के द्वारा कि आपको तैरना आता है या नहीं आता। अगर वो यूज़र कह रहा है उसे तैरना नहीं आता, दैट मीन्स दैट पर्सन शुड रिमेन, उन्हें शैलो वाटर्स में रहना है जब तक कि वो अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं और ट्रेनिंग लें और इस लेवल पे आएं कि वो गहरे पानी में जा सकें। तब तक उन्हें अपने आप को सेफ प्ले करना है और शैलो एरिया में रहना है। तो स्विमिंग पूल पे, हर स्विमिंग पूल पे ये मैंडेटरी होता है कि आप एरिया को मार्क करिए, इंडिकेट कीजिए कि ये शैलो एंड है, 2 फीट से बह रहा है, यहाँ 3 है, अगर स्लोप है तो स्लोप को इंडिकेट करा जाए ताकि जो यूज़र्स हैं दे आर वेल अवेयर के एकदम शार्प स्लोप आएगा, वो डीप में फिसल सकते हैं। इसी तरह से डीप एंड को भी मार्क करा जाता है कि ये 8 फीट गहरा है, 9 फीट गहरा है या ये 12 फीट गहरा है, क्योंकि कई बार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग डाइव ले जाते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहरा है, दे बैंग देयर हेड और हेड इंजरी हुई, वहीं पे डेथ हो गई। सो बहुत प्रिकॉशंस के साथ एक इंसान को चलना चाहिए जब वो स्विमिंग पूल में है। देखिए, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, इससे आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगी कि स्विमिंग को आप स्कूल्स में कंपल्सरी कीजिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, अगर ड्राउनिंग के लिए हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, एक इंसान को अगर अपनी जान बचानी आती है तो कम से कम ड्राउनिंग का लेवल डाउन होगा। ये एक एजुकेशन की तरह है, ये एक लाइफ स्किल है, हर किसी को आना चाहिए, इसमें हमें प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है। और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि पहले दिल्ली में बहुत कम सरकारी स्कूल्स के अंदर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी थी, अब ओवर द इयर्स स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल्स में, सर्वोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, हर जगह पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ वंचित थे कि भाई इट्स एन एक्सपेंसिव एंडेवर, नहीं अफोर्ड कर सकते, हर बच्चे की पहुंच के बाहर है, बट अब सरकार इतने प्रयास कर रहे हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी स्विमिंग पूल्स दिल्ली में हैं, चाहे वो NDMC के हैं, चाहे MCD के हैं, एंड दे आर वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल।
1: रणवीर जी, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी, ये बताइए कि आप कोच हैं, तो कोचिंग अगर करनी है या कोई पेरेंट्स आता है कि बच्चे को जी मेरे स्विमिंग सिखा दीजिए, तो व्हाट एज यू शुड स्टार्ट? कहते हैं स्पोर्ट्स में हमेशा कहते हैं कि नर्चर देम यंग, कैच देम यंग।
2: स्विमिंग सिखाने से पहले हमें स्विमिंग का एक पैटर्न जो होता है, जैसे कोई भी बच्चा जिसको पता नहीं है स्विमिंग का, या कोई भी इंसान जब आता है, तो जो स्विमिंग पूल का जो रिसेप्शंस हैं उन पे अगर हम गाइडलाइन रखें स्विमिंग की, कि इस चीज़ से ड्राउनिंग होती है, या अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं उनमें जैसे रेड कैप का एक कोड होता है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो कॉस्ट्यूम वो पानी के अंदर चला जाता है, तो हमारा जो सबसे ऊपर रहता है वो हेड
1: कैप ही दिखती है।
2: अब दूर से अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करें कि ये नॉन स्विमर है या ये स्विमर है, तो वो कैप से हम उसको कोड कर सकते हैं। तो मोस्टली जैसे काफ़ी सारे जो जिन

को पता है कि भाई एक कलर कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर हम जैसे रेड कैप है या ब्लैक कैप है, एक ही तरह का कोड अगर हम सभी जितने भी बिगनर स्विमर हैं या जो जिनको स्विमिंग नहीं आती है या जो स्विमिंग सीख रहे हैं, उनको अगर हम एक कोड के माध्यम से अगर हम उनको स्विमिंग पूल के अंदर जाने की एंट्री देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कम अगर हम ज़्यादा नहीं माने तो 20% जो ड्रावनिंग है, जो स्विमिंग

0: सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ होता है उसको भी ये एजुकेट करने किया जाता है कि जितने भी इस कोड के या इस कलर की कैप जिन्होंने वियर की हुई है उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो वो सबसे ज़्यादा उनका जो अटेंशन है वो इसी कोड इसी कलर के ऊपर रहेगा। और फिर जैसे आपने पूछा कि किस एज से हम स्टार्ट कर सकते
1: जी
0: हैं, तो एज देखिए हम 6 to 8 हमारी जो आइडियल एज है स्विमिंग के लिए वो मानी गई है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिजिकल ग्रोथ है ये सारी चीज़ें, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी होते हैं जो हमारी फिजिकली जो ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे हर एक बच्चे की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग जो रेशो होता है उस एज में वो बहुत ज़्यादा वो ब्लॉक ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे जाके हम बच्चे को अगर ये बोलते हैं कि बेटा आप ये कीजिए, उस बात को वो जल्दी कैच कर लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका वहाँ पे जो ब्लॉक होता है उसमें वो ज़्यादा रहता है, जैसे हाइट का है, स्पीड का है, इंडोरेंस का है, तो ये हर एक ट्रेनिंग पैटर्न्स में अपने ब्लॉक्स रहते हैं। तो ये जो एज है ये सबसे अच्छी एज मानी गई है कि यहाँ हम स्विमिंग सिखाने के लिए अच्छे बच्चों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। स्विमिंग जैसे हमें जीने के लिए खाना सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अगर हम स्विमिंग को अपनी लाइफ के अंदर बता दें कि हर एक इंसान को कि आपको स्विमिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ की वैल्यू पता होना, क्योंकि स्विमिंग आज हमें हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत कम अवेयरनेस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसीलिए आज हम अगर कंपिटिटिव स्विमिंग की भी बात करें तो आज हम बहुत पीछे हैं, इसीलिए पीछे हैं।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्विमिंग हेल्थ प्लेजर एंड सेफ्टी, आप सेहत के लिए दायरे से देखिए, तैराकी बहुत इम्पोर्टेंट है एक लाइफस्टाइल, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा बड़ा कामिंग इफेक्ट है आपकी लाइफ के स्ट्रेस दूर करने के लिए, बहुत ही अच्छे फिटनेस एक्टिविटी है अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप इसे स्पोर्ट्स के दायरे में लेके आते हैं तैराकी को, तो फिर आपकी अचीवमेंट्स हैं, फिर आप स्टेट लेवल खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कंट्री का तिरंगा फहरा रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पोडियम पे जा रहे हैं, वो अलग दायरा है। जहाँ एजिंग और दूसरी बात आती है, वहाँ अगेन इट इज़ वेरी थेरापेटिक। सब जानते हैं पानी में ग्रेविटी इज़ ज़ीरो, आपका बॉडी वेट 1/10 रहता है। जो लोग अर्थराइटिस से, दूसरी समस्याओं से, बहुत से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, पानी से पड़ा उनके लिए कोई थेरेपी नहीं है। सो ये आपका देखने का दायरा है, एंड इट इज़ अ मदर स्पॉट, लेट्स सेलिब्रेट वाटर, इट्स अ वेरी पावरफुल एलिमेंट ऑफ नेचर, और इसका जितने कुदरत ने बहुत दिया है, जितना इसका फ़ायदा उठा सकें, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, अब ये कैसे पता लगे, मान लीजिए सुपरविजन भी है, वो गार्ड खड़ा है या लाइफ गार्ड खड़ा है, कोच खड़ा है, कैसे पता लगे कि फलां व्यक्ति लेडी डूब रही है?
2: देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा तैराक भी क्रैम्प आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी नस पे नस चढ़ गई, ऑल ऑफ अ सडन आप वहीं के वहीं स्टेशनरी हो जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ गार्ड को बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है। कई बार लोग सिर्फ आवाज़ नहीं लगा पाते, सिर्फ हाथ से ही इशारा कर पाते हैं कि मुझे मदद की आवश्यकता है। अगर वो चीज़ आपने कैच कर ली तब तो लोग मदद के लिए एकदम आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल्स के अंदर लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो लाइफ गार्ड भी सोच रहा होता है कि भाई डुबकी लगाने का, सांस होल्ड करने का नीचे प्रैक्टिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करते। बट अच्छी चीज़ ये है, अगर आप कोई प्रैंक कर रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी में होल्ड कर रहे हैं, तो आप स्टाफ को बताइए कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ताकि जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो अलर्ट रहे। ये एक सुपरविजन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अब धीरे धीरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दिल्ली में, स्विमिंग पूल्स हैं, सब धीरे धीरे सीसीटीवीज और वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि सावधानियां और ज़्यादा बढ़ सकें। और पीछे जब गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह थोड़े मॉडिफाई करे हैं स्विमिंग पूल के, पहले डाइविंग के पूल स्विमिंग पूल्स के साथ अटैच होते थे, अब धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड हमारा फीना का इंटरनेशनल बॉडी का जो रूल है कि हाँ आपको 6.5 फीट का एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाना है और वो करना है, ताकि गहराई को वो कम से कम रखें, ताकि ये हादसे कम हों।
1: डॉक्टर राव, एक मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आदमी डूबता क्यों है?
3: नहीं, डूबता क्यों है, बिकॉज उसको तैरना नहीं आता। पॉइंट इज कि डूबना कहते किसको है मेडिकली, जो लेमैन की टर्मिनोलॉजी है उसमें है कि इसके फेफड़े में पानी चला गया, पर पानी जाने से क्या होता है, वहाँ मेडिकल साइंस उसकी डिटेल में जाती है। आपकी जो लाइनिंग है लंग के अंदर वो डैमेज होती है, उसके अंदर से फ्लूड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आना शुरू होगा, ऑक्सीजन अंदर जाने

0: बंद हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन आपके दिमाग में नहीं गई, आप सांस लेना बंद कर दोगे। अगर आपने सांस लेना बंद किया तो आपका हार्ट, किडनी और बाकी ऑर्गन सारे जाएंगे। ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं कि ड्राउनिंग से डेथ कैसे हो।
1: ऑन द स्पॉट डॉक्टर मीनाक्षी, ये जब वो ड्राउन हो गया, डूब गया, आपने उसे निकाल लिया, तो आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैजुअलिटी है, ड्राउन हो रही है, उसको आप सपोर्ट देके आप पानी से बाहर लेके आए हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले उसका एयरवे खोलने की वो कोशिश रहती है। और लाइफगार्ड जो ऑन ड्यूटी होते हैं, सबको फर्स्ट एड और ये टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, उसके बिना उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। अच्छे तैराक होने के साथ साथ लाइफगार्ड ऑन ड्यूटी को ये सब चीज़ें कंपलसरी हैं, फर्स्ट एड देना और साथ साथ CPR। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और ये बहुत सीरियस मैटर है जब वहाँ बात आती है। यहाँ तक कि जब स्विमिंग पूल चलाने की आपको परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलती है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखना कंपलसरी है, स्ट्रेचर होना ज़रूरी है, पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स आपका रेडी होना चाहिए। अगर इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे है तो एम्बू बैग आपके होने वहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बिना आपको स्विमिंग पूल का लाइसेंस नहीं मिलता है। और वहाँ के जो चलाने वाले हैं स्विमिंग पूल, वो सब ट्रेंड लोग होते हैं कि इमीडिएटली, देखिए डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन का लेवल आपको देना है, बट जो स्विमिंग पूल का स्टाफ है उसे वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो है पर आपको देनी ही नहीं आती, तो वो एक समस्या है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं और जो लाइफगार्ड की ट्रेनिंग है और स्पेशलाइज तरीके से इम्प्रूव हो रही है, बट CPR इज़ वेरी
1: CPR पर बात करेंगे डॉक्टर राव से। रणबीर जी, ये बताएं कि जो एक ट्रेंड एथलीट है या एथलीट नहीं भी है, एक आम इंसान है, वो तो स्विमिंग सीख रहा है, अब जो पैरा वाले जो लोग हैं, क्या वो भी स्विमिंग करते हैं? आप तो उस पर आप बहुत काम कर रहे हैं, आप भारतीय प्राधिकरण से जुड़े हैं, खेल प्राधिकरण से, आप क्या समझते हैं कि वो मुश्किल काम है या वो आसान काम है, और उन्हें सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए?
3: देखिए सर, सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, इसमें मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि उनको सिखाना चाहिए। और जो दूसरा है आपका कि इन बच्चों के लिए मुश्किल है, तो डेफिनेटली, क्योंकि एक डिसेबिलिटी उनके पास पहले से है
1: जी,
3: तो जो हमारी जो सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रंट पे लाना ही नहीं चाह रहे हैं जो आज की सिचुएशंस है। और हम अभी धीरे धीरे जितने भी कोचिज हैं, मैम हैं, हम लोग धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में ये अवेयर कर सकें, पेरेंट्स को बता सकें, और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे पैरा के होते हैं उनमें भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं कि आपको ये एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये आपकी जीवन का एक भाग है, इसके साथ आपको कैसे आगे आप बढ़ सकते हो, वो हम उन लोगों को सिखाते हैं। डिसेबिलिटी एक अलग चीज़ है, स्विमिंग एक स्पोर्ट, एक हमारी ऐसी इम्पोर्टेंस है लाइफ की कि स्विमिंग जो सीख जाता है उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लेता है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑटिज्म, ऑटिस्टिक, ऐसे बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे आते हैं जिनकी स्पीच कम होती है, स्विमिंग जिसने स्टार्ट किया है या जो कंटिन्यू स्विमिंग कर रहे हैं, जिनकी स्पीच कम है उनकी स्पीच आ जाती है, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है उनकी स्पीच क्लियर हो जाती है, जिनके मूवमेंट क्लियर नहीं है उनके मूवमेंट क्लियर हो जाते हैं, जो चल नहीं पाता है स्विमिंग के कारण वो चल पड़ता है, चलने के साथ साथ धीरे धीरे वो दौड़ भी लेता है। मैंने खुद अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास एक लड़का है, पहले वो 5-7 फीट तक चल नहीं सकता था विदाउट एनी हेल्प, आज वो 400 मीटर ट्रैक रनिंग, 800 मीटर रनिंग भी करता है। तो ये सब स्विमिंग के बेनिफिट्स हैं। और जो डिसेबिलिटी है स्विमिंग वाटर रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि जो वाटर प्रेशर होता है, अगर हम जैसे बहुत सारे जितने भी मोस्टली हमारे ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स पे जो प्रेशर आता है, जो वाटर प्रेशर आता है, वो स्विमिंग में उस ज्वाइंट के चारों तरफ रहता है। अगर हम जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे नी का रिहैब हुआ है, डॉक्टर साहब और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर मुझे बोला गया कि आपने नी में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो वो स्ट्रेंथनिंग जब हम करते हैं, तो जब हम वो मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट में जिम के अंदर या स्ट्रेंथ रनिंग में उस पर्टिकुलर एक साइड ही उसको प्रेशर मिलता है। बट अब अगर उसी चीज को हम पानी के अंदर लेके आए, तो वो पानी के अंदर उसके चारों तरफ उस सेम प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये इसका स्विमिंग का सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि वाटर थेरेपी से ही बहुत

0: ज्वाइंट्स हैं, लगामेंट्स हैं, जब हम रिहैब करते हैं। आजकल आप देखिए बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं तो स्विमिंग रिहैब में सबसे ज़्यादा वो वाटर थेरेपी इसीलिए यूज़ कर।
1: ऑन द स्पॉट वेन्यू पे क्या CPR दिया जा सकता है? और अगर CPR देना है या ऑक्सीजनेशन देनी, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया तो अस्पताल में क्या उसका वो होगा?
2: जब एक इंडिविजुअल शख्स, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो बाहर आता है, खुद आए या कोई लाए, तो तीन कंडीशन हो सकती है उसके साथ। या तो वो खांस रहा है पर कॉन्शियस है, पर उसकी सांस ठीक है, खांसी आ रही है उसको। दूसरा है कि वो ब्रेथलेस है, खांस रहा
1: सांस
2: है,
1: फूल रहा है।
2: सांस फूल रहा है उसका, पर वो कॉन्शियस है। तीसरा, वो खांस नहीं रहा, वो सांस नहीं ले रहा, वो
1: अनकॉन्शियस।
2: कॉन्शियस नहीं है। ये तीन चीज ले पर्सन और ट्रेंड आदमी एक ही जैसे देखता है। मैं उसकी कॉन्शियसनेस देखूंगा, इज ही रिस्पॉन्सिव, कुछ बोला हिलाया। दूसरा, उसका रेस्पिरेशन, क्या वो सांस ले रहा है। तीसरा, उसका पल्स। यहां से शुरू होती है कहानी, जो डिफर करती है एक कार्डियक अरेस्ट जो कि दिल की वजह से होता है, और एक कार्डियक अरेस्ट जो ड्राउनिंग से होता है।
1: ड्राउनिंग से होता है।
2: ड्राउनिंग इज प्राइमरली अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, इज नॉट अ कार्डियक कंडीशन। दिल में उसको कुछ नहीं था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं चला, इसलिए हार्ट रुका। तो फर्स्ट अटेंशन जो बाई स्टैंडर्ड है उसकी होती है रेस्पिरेशन पे, हार्ट पे नहीं होती। उसमें अगर आपको लगता है कि ये सांस नहीं ले रहा, आप ऑक्सीजनेशन को छोड़ दीजिए, तो आप उसको 5 रेस्क्यू ब्रेथ माउथ टू माउथ देंगे, एंड यू विल वॉच कि उसकी चेस्ट ऊपर उठे। इन लोगों के अंदर पानी पेट में भी भरा है, वो नाक से गया, मुंह से गया, पर अल्टीमेटली पेट में भरा है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आप उसका पेट दबाएंगे और उसके मुंह से पानी निकल गया तो वो ठीक हो जाएगा।
1: जी
2: ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मेडिकली प्रूवन चीज नहीं है। इनफैक्ट इससे हार्म हो सकता है। ये आदमी और बच्चा अनकॉन्शियस है। अगर आप इसके स्टमक के पानी को मुंह में लाएंगे तो वहां से वो इसके लंग में जरूर जाएगा।
1: एस्पिरेट कर सकता है।
2: पहले नहीं गया था, अब जाएगा। और स्टमक खाली करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। तो पहली चीज, आप इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग दीजिए। काफी सारे वही रेस्क्यू ब्रीदिंग से उनकी किक इन हो जाती है और वो अपने आप सांस लेने लगेंगे। अगर वो नहीं लेते तो फिर आपको उसको देना है, एम्बुबैक्स से दीजिए, ऑक्सीजन लगा के दीजिए। फिर देखिए उसकी पल्स नहीं चल रही तो आपको मसाज देनी पड़ेगी, जो CPR आप बोल रहे हैं। अगर डिफिब्रिलेटर है तो वो लगेगा। अगर उसको लगता है आपको कि ये सब करते हुए उसकी आ गई या नहीं आई रेस्पिरेशन या हार्ट, ही हैज टू बी मूव्ड और शी हैज टू बी मूव टू हॉस्पिटल। देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू ऑन द साइट।
1: तो डॉक्टर राव, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका क्या आप इलाज करते हैं, अगर उससे बचाना है तो?
2: लंग में जो पानी गया वो अपने आप एब्जॉर्ब होगा, हम उसको नहीं निकालते। ट्रेकिया हमारी 20 से 25 मिलीमीटर डायमीटर की है। एंड जहां पर होता है उसका वो 0.5 मिलीमीटर है, जो बॉल पेन की निब के बराबर है, टिप के बराबर है। 23 जनरेशन डिवीजन के बाद आप उसे जो मर्जी कर लीजिए, उल्टा लेटा लीजिए, टांग दीजिए, पानी नहीं निकलेगा उसका। वो उसके अंदर चला गया और एब्जॉर्ब होगा। जो इंजरी हुई उसके डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको वेंटिलेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो जो उसके ऑर्गन इन्वॉल्व हुए उनको सबको सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली अगर वो बहुत टाइम तक नहीं डूबा रहा तो वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद उसके चेंजेस रिवर्ट हो जाते, एनी सर्वाइव। पर अगर वो डूबा रहा बहुत दिन या उसको CPR नहीं मिली 10 मिनट तक, तब उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा।
1: तो CPR में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए या बाईस्टैंडर
2: को
1: क्या करना चाहिए?
2: सिर्फ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन।
1: कितनी देर तक?
2: जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते, जब तक वो ब्रीद नहीं करता, जब तक आपको एम्बू बैग नहीं मिलता।
1: एज ए फिजिशियन, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, नागरिकों को, जनता को, कि आप अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं लेकिन काइंडली इन इन कंडीशंस को जरूर फॉलो करें, क्या सलाह देना
2: तीन
1: चाहेंगे?
2: चीजें, अगर आप घर की बात करते हैं और घर
1: जी
2: के इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं
1: जी
2: तो ये गार्ड वार्ड नहीं चलते
1: जी
2: क्योंकि छोटा बच्चा डूबता है।
1: जी
2: सो सुपरविजन केयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कीपिंग एनी गार्ड। अगर आप पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं तो वहां पे यू शुड क्रिएट बैरियर्स सो दैट यू डोंट हैव एक्सेस टू द वाटर बॉडी। आप पानी में नहीं जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। तीसरा ये है कि जहां आप चाहते हैं कि पानी में जाया जाए, जैसे स्विमिंग पूल्स हैं
1: जी,
2: तो वहां पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए आपको। कोच, लाइफ बॉयज, सेग्रीगेशन बिटवीन डीप एंड शेलो वाटर,
1: शेलो वाटर,
2: ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, चाहे किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, बेसिक फर्स्ट एड और लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी होना बहुत जरूरी है। इन सेफ्टी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और हर जगह इंडिकेशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शैलो एंड है, ये डीप एंड है, ताकि यूजर वेल अवेयर हो, जो बिगनर हैं वो आइडेंटिफाई करे जाए, अलग

0: एग्रीगेट करे जाएं ताकि ट्रेंड लोग अलग तैर रहे हैं, बिगनर्स अलग एरिया में हैं, सब एक दूसरे का ध्यान करें, ये नहीं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई किसी पे जंप कर जाए। तो एक पूल में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप नेचुरल ओपन वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं, नदी हैं, पॉन्ड्स हैं, आज भी हम देखते हैं रिवर के बैंक्स पे, पॉन्ड्स पे, साउथ इंडिया में देखिए, वेस्ट में देखिए, आप बंगाल में देखिए, बहुत अच्छे तैराक हैं जो पानी में और ये खुली ओपन वाटर बॉडीज़ में तैरना सीखते हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, बट सावधानियों के साथ, सुपरविज़न, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिना सुपरविज़न के, बिना ऑब्जर्वेशन के पानी में जाना बहुत ख़तरनाक है। और हर चीज़ का एक एरिया मार्क करते हैं, जो लोग पॉन्ड में भी स्विमिंग करते हैं वो पूरा का पूरा एरिया एक मार्क करके कि ये शैलो एरिया है, यहाँ सिखाया जाएगा।
1: जी
0: सो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखी जाएँ और सारे सेफ्टी गैजेट्स वहाँ पे अवेलेबल हों, जैसा मैंने आपको बताया।
2: ये तो इंडिविजुअल्स की बात हुई
1: जी,
2: लेट्स टॉक ऑफ मासेस। बाढ़ आई, 100 आदमी डूब गए
1: जी,
2: एक फेरी डूब गई उसमें 150 आदमी गया
1: जी।
2: दीज आर ऑल सेफ्टी इश्यूज। सेफ फेरी का डिज़ाइन ठीक नहीं था, फेरी ओवरलोडेड थी, सो दीज आर एक्सीडेंटल कॉजेज। एंड थर्ड इज दी साइकोसोशल, क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट ड्राउनिंग से डेथ बाय सुसाइड भी होती
1: है। हाँ, सुसाइडल डेथ भी एक बहुत बड़ा इशू है।
2: सो इट इज नॉट जस्ट कि आप बचा पाएंगे, उसका
1: बिहेवियरल चेंज भी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वी के राव, डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा, रणबीर शर्मा जी, आपने जो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ड्राउनिंग, और क्यों हम इससे कैसे बचाव कर सकें, इसकी रोकथाम हो सके और जो प्रेशियस लाइव्स हैं वो बचाई जा सके, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे, संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
5: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
6: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पता चला है 22 जुलाई 2026 को कि सिक्किम के नामची जिले में NHPC के निर्माणाधीन तीस्ता विद्युत परियोजना की सुरंग में एक दुर्घटना हो गई और सूचना अनुसार 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की दुर्घटनाएं उस पनबिजली परियोजना के लिए या बांध बनाने के लिए होती रहती है। आखिर बांध की सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर तकनीकी क्या है, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से जगह का और उस जमीन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और उस तकनीक के अलावा इसमें जन जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए लोगों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा। आप भारत सरकार के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पैनल बद्ध तकनीकी विशेषज्ञ है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन फेडरेशन नई दिल्ली के संस्थापक भी रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मणि कुमार, आप असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम, मेघालय की एशियाई विकास बैंक समर्थित जलवायु अनुकूलन एवं सामुदायिक जल संचयन परियोजना, सिक्किम की जल विद्युत परियोजनाओं, मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न नदी जोड़ों एवं जल हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता दे चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मणि कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
7: नमस्कार।
6: सबसे पहले हम बात करते हैं बांध के सुरक्षा की, विज्ञान की, तकनीक और जन जागरूकता की। तो एक जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उस जगह का चुनाव और बांध की क्षमता, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है मिश्रा जी?
7: तो बांध का जो चुनाव होता है उसके लिए कई तरह के साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज की आवश्यकता होती है। जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए घोषणा करती है उसके पहले उनको सबसे प्रमुख 3 से 4 तरह के साइंटिफिक स्टडीज करनी होती है। सबसे पहले तो बांध बनाने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसके लिए उसका जियोलॉजिकल और साइस्मिक स्टडीज सबसे मैंडेटरी होता है, बिकॉज जहां पर बांध बनेगा उसके अंदर की भू संरचना क्या है, उसमें जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन

0: से रॉक प्रोफाइल में वो डैम बनने जा रहा है, तो उसके रॉक की स्टेबिलिटी और वहाँ पे जो सोयल की स्टेबिलिटी, इन दोनों का असेसमेंट बहुत डिटेल रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी टोपोग्राफी के एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी, बिकॉज बांध बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बेसिकली विस्तृत हैं, जैसे कि हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट जनरेशन है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लड कंट्रोल्स हैं और अन्य हैं। तो इसके साथ साथ जो उस बांध बनाने के लिए जो लोकेशन का चुनाव करना है, वहां पे जो अर्थक्वेक की क्या प्रोफाइल है, तो उसके लिए साइस्मिक स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो सकता है बांध बनाने के दौरान या बांध बनाने के बाद, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, उन सब के लिए बेसिकली मुख्यतः तीन तरह की स्टडीज प्रमुख होती है, जो कि जियोलॉजिकल असेसमेंट्स, उसमें उनका स्ट्रक्चरल असेसमेंट, साथ में साइस्मोलॉजिकल भूवैज्ञानिक या वहाँ का जो अर्थक्वेक का निर्धारण, साथ में उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है।
1: अब जैसा कि अभी वर्तमान में मानसून का समय है और बारिश अनिश्चित होती जा रही है, कभी कभी काफी एक ही साथ बहुत सारी बारिश हो जाती है और कई बार लोग उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं, संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, तो मानसून के दौरान बांधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है और ऐसे समय में किस तरह की विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है?
0: इस संदर्भ में डैम जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो अलग अलग प्रबंधन के जो डैम्स हैं, जैसे कुछ डैम्स तो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कुछ डैम भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनका समय समय पे होता रहता है। इसमें जो डैम में जो वर्कर हैं, वहाँ के डैम के इंचार्ज हैं, वो प्री एंड पोस्ट मानसून एक इंस्पेक्शन अपने तरीके से करते हैं। साथ में ही जो भी डैम ऑपरेटर्स हैं या डैम यूनिट्स हैं, उन डैम यूनिट में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान, एक विस्तृत जो है खाका सरकार तैयार करवाती है, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में एक मैंडेटरी उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो होता है, उसमें अगर कोई इमरजेंसी डैम में आती है, अचानक जल स्तर बढ़ता है या अगर डैम के ब्रेक की सिचुएशन होती है, तो उसमें जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेट में अचानक पानी बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में क्या करें, उसमें डैम को ओपन करें, साथ में उनके जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि स्टेट में आपका डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सूचना देना, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, साथ में SDRF, NDRF, पुलिस, तो जब भी इस तरह की अचानक कोई दुर्घटना होने का ऑब्जर्वेशन होता है, तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को वो सारी सूचनाएं रहती हैं कि कौन से पर्टिकुलर डैम में उसका EAP क्या है और EAP के अंदर कौन कौन से जो प्रभारी है या अधिकारी है जो नियुक्त है, किनका क्या काम है। तो इमरजेंसी जो एक्शन प्लान है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डैम में आने वाली कोई भी समस्या है या अचानक जल स्तर बढ़ रहा है या कोई डिजास्टर ऊपर आ गया, कोई ग्लॉफ का इंसिडेंस हो गया, उसमें जो भी सावधानियां बरतनी है उसके लिए EAP अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और ये NDSA के एक मैंडेटरी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, असेसमेंट है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण
1: है। ये क्या कानूनी प्रावधान?
0: ये कानूनी प्रावधान है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में। ये जितने भी छोटे या बड़े स्तर के डैम है, चूंकि भारत में अभी करीब धर्मा जो पोर्टल है, करीब 6,500 डैम जो है उसमें रजिस्टर्ड है। धर्मा पोर्टल जो नेशनल सीडर सेंटर वाटर कमीशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, भारत में जितने भी छोटे बड़े डैम है, वही ओल्ड एज डैम है जो 100 साल से अधिक कुछ डैम्स है, करीब 290 डैम भारत में ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर या ओल्ड एज डैम्स है, वही 50 साल से पुराने डैम करीब 1,000 से अधिक उनकी संख्या है। तो इन सब के रख रखाव, उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी असेसमेंट, या अगर कोई वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में जो जनता वहाँ रहती है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बस्तियां हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डैम है, उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका जो इम्पैक्ट एरिया है अगर बांध टूटता है, वो काफी बड़ा है। तो इस केस में भारत सरकार ने जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया है, उस डैम सेफ्टी एक्ट में इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है। वो हर डैम यूनिट अपने लेवल पे बनाता है, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को लिख करके कंसर्निंग जो SDSO है और NDSA उसको जमा करना पड़ता है। तो सारा जो क्रियान्वयन है वो उसी एक्शन प्लान के हिसाब से ही ऑपरेट होता है।
1: मनी कुमार जी, जो बांध के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो पहाड़ी इलाकों में देखते हैं नदी सूखी है और अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में इवैल्यूएशन के लिए या इवैक्यूएशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होती है और वहाँ के लोगों को क्या किसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, प्रशिक्षण या जन जागरूकता कार्यक्रम आदि किया जाता है, तो वो किस तरह का है?
2: NDA के प्रोटोकॉल के तहत आज के डेट में जितने भी डैम्स हैं उनका हम लोग डैम ब्रिज एनालिसिस करते हैं। डैम ब्रिज एनालिसिस या डैम ब्रेक एनालिसिस के आधार पे हम ये जानते हैं कि अगर

0: डैम ब्रीच कर जाता है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, या तो वो एक्सट्रीम फ्लड हो, क्लाउड ब्रस्ट हो, ग्रोफ का इफेक्ट हो, एकाएक ज्यादा पानी आ जाता है, हालांकि हमारे डैम्स में उसका प्रोविजन रहता है, फिर भी अगर उस तरह के अगर सिचुएशंस आ जाते हैं उसके लिए हम लोग एक डैम ब्रेक एनालिसिस करते हैं। ये इसका प्रावधान NDSA में किया गया है, ये हर डैम्स के लिए आवश्यक होता है। और उस डैम ब्रेक एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर डैम ब्रेक करता है, डैम फेलुअर होता है, तो उसका पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे के क्षेत्र में कहां तक फैलता है, उसका एक्सटेंट कहां तक जाता है, और वो पानी का जो जमाव होता है उसका क्या डेप्थ है, किस वेलोसिटी से वहां पहुंचता है, उसके अराइवल का समय क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग उस एनालिसिस के आधार पे निकालते हैं और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है, और उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में वो सारा चीज समाहित रहता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान इवैक्यूएशन का भी उसमें रखते हैं कि अगर इस टाइप की स्थिति आ जाती है, अगर ये हमारा एरिया इनंडेट हो जाता है तो वहाँ के लोगों को कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे, और इसमें हमारा पूरा सिस्टम्स लगा होता है, हमारे केंद्रीय एजेंसी, राज्य स्तर की एजेंसी और लोकल प्रशासन और कम्युनिटी, ये सारे मिल के इस आपदा से हम लोग निजात पाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किया हुआ है और आज की स्थिति में हम उसको करने में सक्षम है।
1: इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर आती है, अचानक फ्लड लेवल हो गया या ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो गया या ग्लॉफ हो गया, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, क्योंकि डैम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 3 लेवल का स्ट्रक्चर भारत में बनाता है। ऊपर तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, इसके बाद जो लोकल जो प्रशासन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है कि अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह के कोई डैम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहाँ पे समय समय पे मॉक ड्रिल हो, एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करके, जैसे मान लीजिए अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस केस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल जो वहाँ पे प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक पूरा मॉक ड्रिल किया जाता है कि उस सिचुएशन में कैसे करें, सपोज अगर इवैक्यूएशन मास इवैक्यूएशन प्लान करना है तो कैसे करें, तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली इन्वॉल्व होता है,
2: उसमें लोगों को अवेयर
1: किया जाता है।
2: आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह दिखने को आ रहा है, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़, फ्लड्स के भी आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों के अनुसार अंत में जानना चाहेंगे कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक, प्रभावी कानून और जन जागरूकता, इन चारों के समन्वय से भारत को बांध सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है।
0: जहाँ तक बांध की सुरक्षा का सवाल है तो हमारे देश में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। 2021 के पहले वैसा कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, और जो भी होता था वो CWC केंद्रीय जल आयोग के गाइडलाइंस में किया जाता था। लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे हमारे जो बांध हैं वो एक स्टेट के नहीं, दो स्टेट के जुडिक्शन को कवर करते हैं, या फिर वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी होता है। तो ये सोचते हुए 2021 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया गया। उसी तरह से फिर राज्य स्तर पे भी एक कमेटी है और कमेटी के अलावे एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया जिसे स्टेट SDSO के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चीज एक्ट के हिसाब से गठित किए गए हैं। अब रहा कि ये हमारे डैम्स के संचालन में मदद करते हैं और जो ओनर्स हैं इसको फॉलोअप करें, डैम सेफ्टी के लिए इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसका सर्विलेंस प्रॉपरली होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस होना चाहिए, ये सारे चीज हमारे जो अथॉरिटी है उसको देखते रहते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है और उसमें वो मदद करते हैं।
1: जैसा कि आपने बताया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है और हमारे डैम जितने भी हैं बिकॉज बहुत सारा पानी उनमें स्टोर होता है, तो उसके लिए NDSA की जो गाइडलाइन है उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि CDSE है, कॉम्प्रहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन, वो अभी मैंडेटरी है सारे डैम्स को करना है और वो 2026 दिसंबर तक सारे डैम को कम्प्लीट करना है। अभी भारत सरकार में जितने भी स्टेट में डैम्स है सब लोगों ने भी CDSE करवाने का ऑलमोस्ट एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी काफी सारे डैम में CDSE में मैं कार्यरत हूँ, पार्टिसिपेट भी किया है। जो डैम सेफ्टी के इश्यूज हैं बहुत ही कंसर्न में है और सारे डैम ऑपरेटर्स एवं भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज

0: भी सेफ्टी को लेकर के कई सारे कदम उठा रहे हैं। इसमें कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिस्क असेसमेंट्स करने के लिए, और इसमें जैसे कि 8-10 मैंडेटरी कंप्लाइंस है, स्टडीज है, जैसे कि आपका CDSE है उस सबको करना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान सबको बनाना है, डैम ब्रेक एनालिसिस सबको करना है, हैजार्ड क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं, तो रिमोट सेंसिंग GIS का उपयोग करके कैचमेंट एरिया में फ्लड लेवल कितना बढ़ेगा, क्योंकि
1: ड्रोन वगैरह से
0: ड्रोन
1: भी सर।
0: वगैरह से भी असेसमेंट करते हैं। और पिछले करीब 8-10 साल में हमने बहुत सारे डैम फ्लड में डैम को टूटते हुए देखा, जैसे चमोली इवेंट 2021 हुआ, सिक्किम में 2023 में, और आपने आज जिक्र ही किया कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इन सबको देखते हुए NDSA एक्ट में काफी सारे कंप्लायंस और स्टडीज ऑलरेडी एक्सपर्ट ने बताया हुआ है, और उन सबका पालन भी डैम ऑपरेटर्स, चाहे प्राइवेटली ओन डैम हो या गवर्नमेंट संचालित जो भी डैम हो, वो उसको कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने रिसेंटली करीब 100-101 लोगों की लिस्ट भी जारी किया एक्सपर्ट की, और वो सब लोग अलग अलग प्रदेशों में जहाँ जैसा उनका हो रहा है वो लोग अपने हिसाब से उसको असेसमेंट में इन्वॉल्व है। भारत सरकार इस पे बहुत सचेत है, और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में डैम सेफ्टी में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि एक ड्रिप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड है जिसमें डैम के रिपेयर और सारी सुविधा की गई है, साथ में धर्मा पोर्टल जो डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ डैम है, इसके पहले हमारे पास नहीं थे इतने रिकॉर्ड, तो धर्मा पोर्टल में करीब 6,600 से अधिक डैम जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, और उसमें सब कुछ असेसमेंट वगैरह स्काडा सिस्टम के थ्रू सब कुछ हो रहा है।
1: निश्चित रूप से बांध के निर्माण के बाद बांध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मनी कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बांध सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और जन जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

मैनू सबर न आवे इतनिया डिठिया मैनू सबर न

0: वे सावला ना मार नैणा दे तीर। पूरन चंद वडाली ते साथियां दी गाई ते गुलाम फरीद दी लिखी ए काफी हुणे तुसी सुनी। हुण पेशे वार्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुखी एकता दा संदेश ते वार्ताकार ने नवनीत कौर सचदेवा।
1: अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्तमान युग दा एक अजिहा महान ज्ञान ग्रंथ है जिस दे प्रकाश नाल पूरी मानवता नू एक अध्यात्मक एकता दा अनुभव प्राप्त हुंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब दा विचारतारक तुरा जिस नू गुरमत भी कहा जांदा है, उस विच पूरी सृष्टि दी रचना अते उस दे संसारक नियमां नू समझण दी समर्था है। गुरमत एक अजिहा विचार है जो पूरी मनुखता नू सांझ दे सूत्र विच बंदा है ते इसे चेतना नाल जीवन विच व्यवहार करन दा संदेश दिंदा है। गुरु नानक देव जी मध्यकाली भारत दे एक अजिहे दौर विच प्रकाशमान होए जद समाज विच चल रहे बहुत सारे वहमां परमा पखंडा वैर विरोधा आदि करके सारी लोकाई कष्ट भोग रही सी। इन्हां हालात करके लोकी वखरेव्या ते ना बराबरियां दा सामना कर रहे सन। समाज विच रंग नसल जात पात ते धर्म मतां दे आधार ते नफरत फैल रही सी। अजिहे समय संतां भगतां ते गुरुआं ने एके दा प्रवचन कीता। गुरुआं दा दित्ता गुरमत सिद्धांत सारे जीवां विच एक ही परम सत नूं पछाणन दा संदेश दिंदा है। गुरमत दृष्टि अनुसार सारे जीवां अंदर इक्को ही ब्रह्म तत् दा वासा है जिस करके हर कोई एक दूजे नाल जुड़िया होया है। इस लई मनुख नूं आंतरिक एकता दी दृष्टि तों एक आत्म भाव नाल ही विचरना चाहीदा है। इस नाल समाज विचों सारियां ना बराबरियां ते वैर विरोध मुक सकदे हन। गुरमत अनुसार मनुख दी सिर्फ इक्को ही जात है, मनुख जाति। सृष्टि दे आरंभ तों ही दुनिया विच वन सुवंता हमेशा रही है। बाहरी रूप विच कोई भी शै किसे दूजे वर्गी नहीं है। बाणी दा फुरमान है, मेरा प्रभ साचै इक खेल रचाया, कोई ना किसी जिहा उपाया, आपे फरक करे वेख विगसै, सब रस देही माहा हे। गुरु साहब कहंदे हन कि सृष्टि दी सारी वन सुवंता मिल के ही संसार नू मूर्तिमान करदी है, सब इसे दा ही भाग है। इस वन सुवंता दा मतलब यह नहीं कि इन्हां विच एक दूजे तो चंगा जां माड़ा होण दे तत् शामिल होण। मानव सिरजना जिन्हां तत्तां नाल होई है उह वी प्रकृति विच्चों उपजे इक्को जिहे तत् हन। उन्हां दे मेल करके सिर्फ उन्हां दी बणतर वक्खरी हो जांदी है, पर इन्हां तत्तां दा मेल करवाउण वाला तत् सभना विच सांझा है। इस रचना तो पहलां दी अवस्था विच कोई भेद नहीं हुंदा। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती। ब्रह्म विच्चों उत्पन्न होण अते इसे विच समापत होण दे हुकम नूं समझना ही गुरमुख होना है। अर्थात पूरी सृष्टि दे जीआं नूं भेदां दी थां अभेद दी दृष्टि नाल वेखण दी चेतना जो कि गुरमत प्रदान करदी है। परमात्मा दी एकता ते आधारित एक संपूर्ण समानतावादी समाज दे अपने संदेश नूं फैलाउण लई जो अपने सारे अणगिनत रूपां विच विभिन्नता दा जशन मनाउंदा है, जिवें एक अक विच्चों लखां चंग्याड़ियां निकलदियां हन पर ओह सारियां वापस उसे अग विच लीन हो जांदियां हन। जिवें इक्को तूड़ विच्चों करोड़ां तूड़ दे कण पैदा हुंदे हन पर ओह सारे वापस उसे मिट्टी विच मिल जांदे हन। जिवें एक समुंदर विच्चों लखां लहरां उठदियां हन पर ओह सारियां इक्को पानी विच अपेद हो जांदियां हन। इस लई परमात्मा दे स्वरूप तों सारी सृष्टि सजीव अते निर्जीव पैदा हुंदे हन अते ओह सारे इक्को सिरजणहार नाल संतुलन विच रहिंदे हन। गुरु साहिबां ने धर्म सभ्याचार नसल आदि दे नाते सारियां वंडियां नूं रद्द करदे हुए मनुखता नूं विश्वास

0: आवाज़ हमदर्दी सहनशीलता अते समझ दे बंधन विच बनण दी कोशिश कीती अते लोकां नू इक परमात्मा दी मौजूदगी नू स्वीकार करन लई उत्साहित कीता। गुरु नानक देव जी अनुसार जो ये पछाणदे हन कि सारे रस्ते एक वल ही लै जांदे हन ओह मुकत हो जाणगे। सिख धर्म दे बुनियादी सिद्धांत सच्चे गुरसिख नू दूजे धर्मां दे रीति रिवाजां दी राखी अते आदर करन दा उपदेश दिंदे हन। गुरमत द्वारा प्रचारी गई विश्व दृष्टि समुचे ब्रह्मंड नू इक्को तुरे तो उत्पन्न मंदी है। उस अनुसार इस सृष्टि दा अते इस विच वसदे हरेक जीव दा इक्को ही तुरा है जिस तों ओह पैदा होया है अते उस विच विलीन होना मनुखी जीवन दा मनोरथ है। जो कोई भी इस एक दे सिद्धांत दे अनुसार अपने जीवन दा अनुभव करदा है ओह गुरु दा सिख है। एक दी एह दृष्टि श्री गुरु ग्रंथ साहब विचले संदेश नू समुची मानवता नाल जोड़दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब दी संरचना अते सिद्धांत भी एके दा प्रचार कर रहे हन। इस दी संरचना वल जे ध्यान गोचरा कीता जाए तां इस विच सिख गुरु परंपरा दे 6 गुरु साहिबान तो इलावा 15 भगत 11 पट अते 4 गुरसिखां दी बाणी भी दर्ज कीती गई है। गुरुआं द्वारा प्रचारे सिखी सिद्धांत विच समाज ते उस द्वारा सिरजी पक्षपाती व्यवस्था किसे तरह नाल भी प्रवान नहीं है। अजेही पक्षपाती व्यवस्था ब्रह्मंडी एकता नू खंडत करदी है। गुरमत दा विचार निरोल एकता अते इक सुरता उपर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहब विच केवल उन्हां ही भगतां पट्टां दी बाणी दर्ज कीती गई जो कि गुरमत अनुसार एक पिता एकस के हम भारक दी सुर बुलंद करदे ने अते गुरमत दर्शन दे अधीन हन। श्री गुरु ग्रंथ साहब अते इस विचली बाणी दे सरोकार सिद्धांतक अते विहारक पद्धर उत्ते ब्रह्मंडी सांझ दे प्रतीक हन। इस सांझीवालता दा आधार एह विश्व दृष्टि है। मनुख ने प्रकृति तो संस्कृति वल विकास करदियां अपने आप नू समुचता तो वर्गीकृत कर लिया। खंडां दे खंड भागां दे भाग कर दित्ते। विकास मनुख नू उस समुचता दे होर नेड़े लै के जाण वल रुचित होना चाहिदा सी पर मनुख द्वारा अपनी होंद नू बरकरार रखण दी तीबर इच्छा अखंड तो खंड वल यात्रा करदी है। पर असलियत विच उसदी जीवन यात्रा मुड़ खंडत तो अखंड वल दी यात्रा है। गुरु ग्रंथ साहब विचली बाणी मनुख नू बार बार चेता कराउंदी है कि इस समाज विच विचरदियां उसनू अपने मूल तो टुटण दा एहसास हो जाए। बाणी दा फुरमान है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। बाणी मनुख अते उस द्वारा सिरजे समाज नू इक सूत्र विच बनण वल रुचित है। मनुख दी चेतना जे जाग जाए कि यह समुचा ब्रह्मंड अते उस विच वसदा हरेक जीव सारियां दा तुर अते मूल इक है तां उस दे अंदर प्रकृति अते संस्कृति विचली सांझ कुदरती रूप विच उपज जाएगी। साडी दृष्टि सोच अते विचार ही सानू एक दूजे तो तोड़दे हन पर मनुखता ते ब्रह्मंड दे इक्को तुरे दा ज्ञान एक दूजे नाल मुड़ जोड़ भी सकदे हन। गुरु साहब मनुख नू समाज विच विचरदियां यह समझाउणी दिंदे हन। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसार्यो पीतर सतगुर ते सोझी पाई सबको मीत हम आपन कीना हम सब ना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल लियो मेरा राजन। मनुख दी अज्ञानता उस अंदर दूजे मनुखा प्रति नफरत द्वेष वैर दी भावना पैदा करदी है। उसका अपना स्वै उस उत्ते हावी होके सर्व एके अते सर्व सांझ दी दृष्टि उत्ते पड़दा पा दिंदा है। गुरमत इस तात पराई नू नजिठण दा राह साधा दी संगत दसदी है। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। गुरबाणी दा समुचा उपदेश किसे भी खास वर्ण जात फिरके धर्म समाज सभ्याचार नाल संबंधित नहीं। यह उपदेश संपूर्ण मानव जाति लई है। गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन उपदेश चौ वर्णा को सांझा। अजोके समय अंदर समाज विच वधदे वखवाद अते आपसी सिद्धांतक मतभेदां नू देखदिआं मनुख दी इह समाजक लोड़ भी बनदी जा रही है कि ओह सांझ अते एकता दे राह वल झात मारे। गुरु एक सिख नू की उपदेश दे रहा है इस दी सेध बाणी विच्चों ही सानू प्राप्त हो सकती है। शब्द गुरु बाणी विच दर्ज हुकम अटल हन। यह मनुख दी अपनी कमजोरी है कि ओ स्वै केंद्रित होके विकारा विच वस्या होया है अते बाणी दे हुकम दी पूरी निश्चा नाल पालना नहीं करदा। बाणी उसनू उसदा आपा छड़न अते निष्काम रूप विच सेवा भाव पैदा करन दी प्रेरणा दिंदी है। गुरबाणी भाईचारक सांझ बनाउण लई लोड़ींदे गुणा बारे भी मनुख नू सुचेत करदी है। यह गुण दया, संतोख, परोपकार, सरबर, संजम, प्रेम भाव आदि हन। मनुख ये सारे गुणा दे व्यवहार दी दूजियां तो उम्मीद रखता है पर अपने आप नू इन्हां तो बाहर रखता है, जबकि गुरबाणी अपने पितर चात मारन दी सेध प्रदान करती है। बाणी दा फुरमान है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। पर अजोका मनुख अपने तो वध चंगा किसी नू नहीं समझदा अते बाकी सारिया नू अपने वैरी वजों दृश्यमान कर लैंदा है। समुची गुरबाणी समुचता दी गल करती है। गुरबाणी समुची मानवता लई मार्गदर्शक है। गुरबाणी द्वारा मानवता नू भाईचारक सांझ उसदी जीवन दृष्टि विचों प्राप्त है। यह जीवन दृष्टि समुचे ब्रह्मंड अते मनुखा अंदर एक दे वास दा प्रचार करती है। सिख धर्म दे स्वरूप नू निश्चित करदिआं गुरु साहिबान द्वारा सिरजिया शब्द गुरु दा संकल्प अते बाणी राही दित्ता संदेश हरेक मनुख, समाज अते सभ्याचार राही अपनाए जा सकते हन। गुरु दी दृष्टि विच कोई बाहरा जां पराया नहीं है। गुरु साहब दा कथन है, सबे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसे बाहरा जियो।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी नवनीत कौर सचदेवा दी वार्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुखी एकता दा संदेश। हुण प्रोग्राम दे अखीर विच पेशे काफी बुल्ले शाह, आ मिल यार सार लै मेरी, मेरी जान दुखाने केरी। आवाज़ ए सुरिंदर कौर दी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 10 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए सुझाव।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में 5वें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत

0: वी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi thanked youngsters and everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
2: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: That video also created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now, surpassing earlier record of 300 million views. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. The National Testing Agency, NTA, has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has informed that 18 stations have been closed from 7:30 this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk, New Delhi, Central Secretariat, ITO, Mandi House, Supreme Court and others. However, DMRC noted that interchange facilities shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economics.

0: Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honour, the President dedicated the award to 1.4 billion people of India and said it reflected the enduring friendship between the people of the two countries. Rescue and relief operations are being carried out on a war footing following the heavy rains in Gujarat. In the last 24 hours, 265 taluks of the state have received rain. 5 deaths confirmed by State Relief Commissioner. The Chief Minister of State, Bhupendra Patel, held a high-level review meeting in Gandhinagar. So far, about 40,500 people have been evacuated. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. The Yatra has been resumed for both Baltal and Pahalgam routes. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow after Jhandu Kumar clinched the bronze medal in the men's heavyweight para powerlifting. Jhandu, who hails from Nalanda district of Bihar, delivered a strong performance by lifting 190 kilograms in his second attempt, earning 130.9 points and securing a place on the podium. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है AIR लाइव न्यूज़ 24/7 एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप कहीं से भी आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल और साथ में आकाशवाणी के तमाम चैनल्स सुन सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, लगातार तमाम कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। और अगला जो कार्यक्रम है, यानी अब जो कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं, वो है आप ही की पसंद का, जी हाँ, जिसका नाम है आपकी फरमाइश। और फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आज देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और इस समय मौसम जैसा भी है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं पर उमस और गर्मी अभी भी जारी है तो कहीं पर बारिश भारी है। तो इस मौसम का क्या असर हो रहा है खेती पर, क्या असर हो रहा है पूरी पारिस्थितिकी पर, पूरी प्रकृति पर? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानसून सीजन जब भारत में शुरू होता है जून, और उसके बाद जुलाई का महीना, सावन का महीना आते आते हमारे आसपास की पूरी जो धरती है वो हरी भरी नज़र आती है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बहुत लंबे मैदान हो, चाहे वो नदी की तलहटी का क्षेत्र हो, जहाँ पर भी पेड़ या घास या कुछ हरियाली हो सकती है, कुछ बीज अंकुरित हो सकते हैं, वो सब खिल उठते हैं और पूरी प्रकृति धुली हुई नज़र आती है। लेकिन कहीं पर जब बरसात ना हो रही हो तो उस जगह पर लोगों को निराशा होती है। तो इस बार थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है एलनीनो के प्रभाव के कारण, लेकिन फिर भी बरसात कई जगहों पर हो रही है। आशा है कि आने वाले दिनों में और भी जगहों पर बरसात होगी। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको पहला गाना, जिसे सुनवाने के लिए आप सभी श्रोताओं के हमें ईमेल मिले। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ईमेल एक ही बार भेजिए प्लीज़। जिनके एक से ज़्यादा मेल आएंगे उनके बारे में मैं समझ जाऊंगा कि वो कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं, ऐसे श्रोताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। तो आप अगर एक मेल भेजेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दे सकता लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपका नाम, आपका ईमेल शामिल हो जाए और आपकी पसंद के गीत हम सुनवा पाएँ। और ये भी हो सकता है कि आपकी पसंद के गीत भले न सुनवा पाएँ लेकिन आपके नाम ज़रूर शामिल करें आज के इस कार्यक्रम में। तो वीरगाम गुजरात से अजीत भावसर और प्रमिला जी ने लिखा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने लिखा, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, मेरठ से ही अनिल जैन, संयम मुस्कान और जीवयम जैन ने, पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और इनके पूरे परिवार ने हमें ईमेल किया। और आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं आपको मेरा साया फिल्म का ये गाना, जो है लता मंगेशकर के स्वर में राजा मेहंदी अली खां का गीत, और इसके लिए तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आपने सुना। उम्मीद करते हैं आपको ये गाना पसंद आया होगा। और अगला गाना मेरे सनम फिल्म से आशा भोसले के स्वर में हम सुनेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर का बहुत ही प्यारा सा संगीत भी है इस गीत के साथ। छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी की पसंद के साथ। और भी श्रोताओं के नाम, खत, ईमेल हम शामिल कर रहे हैं इस गीत में। संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी जालंधर पंजाब से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और रिधान खुराना बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका और प्रभा देवी मोहाली चंडीगढ़ से, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज चंडीगढ़ से ही, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का भी ईमेल हमें मिला। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार ने ईमेल किया। दिनेश चौहान ने रामदेवरा से, डांगरी से बाबूराम जयपाल ने। तो आप सभी की पसंद पर हम ये गाना सुनने जा रहे हैं दोस्तों, और आपसे आशा करता हूं कि अगर आपका नाम शामिल हो गया है तो आप मेल भेजना बंद कर देंगे और एक बार ही मेल भेजेंगे ताकि आपका नाम शामिल हो पाए।

श्रोताओं, अगला जो गाना है वो हमने लिया है शिकार फिल्म से, और आज प्रसिद्ध संगीतकार जीएस कोहली का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। और ये बताया है हमें हमारे जो श्रोता हैं दिल्ली से, मनोहर लाल गांधी, प्रकाश गोगिया, सत्य प्रकाश, तो इसका एक गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसमें आवाज़ें लता मंगेशकर की हैं और साथ में मोहम्मद रफ़ी को भी आप सुनेंगे। और इस गीत को हमने जैसा कि बताया शिकार फिल्म से लिया है, तो बहुत ही प्यारा सा गीत है, SD नारंग का संगीत इसमें। आइए सुनते हैं ये गाना, और जिन श्रोताओं का नाम हमने आपको बताया अभी, उनके अलावा भी कई श्रोताओं के खत इसमें शामिल हुए हैं, ईमेल शामिल हुए हैं, अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी और अंकुर इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी का भी ईमेल इसमें शामिल किया।

शिकार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, और जीएस कोहली का यह संगीत था। उनको हम नमन करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार, उनकी जयंती है। और अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, उसे लिया है हमने फिल्म से, फिल्म का नाम है अदालत। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को इस बार सुनेंगे, और राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत है, बहुत ही प्यारा सा गीत ये भी, आइए सुनते हैं।

इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल हमें मिले थे। श्रोताओं, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सत्तोड़, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु कर्नाटक से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का ईमेल भी मिला। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा, गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दरजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर और गुरलाल तथा अविराज सिंह, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी की पसंद पर हमने ये गाना सुना और कार्यक्रम का जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं उसे भी हम बहुत ही मधुर आवाज़ में सुना रहे हैं, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। श्रोताओं, हसन कमाल का गीत, बप्पी लाहिरी का संगीत और एतबार फिल्म से ये गाना लिया। सुनवाने के लिए ईमेल आप सभी के मिले। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान और मोहिनी, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू और भाविका सिक्का। आप सभी की पसंद पर सुनेंगे एतबार फिल्म का ये प्यारा सा गाना, ये गजल।

उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी पसंद के इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो गाने सुनवाए जा रहे हैं और आपके खत शामिल हो रहे हैं, ईमेल शामिल हो रहे हैं, आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अगला गाना हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे, उदित नारायण की आवाज़ है, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, झज्जर हरियाणा से ही बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल किया हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौकेलाल वर्मा ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, ये प्यारा सा संगीत नदीम श्रवण का और उदित नारायण की आवाज में गाना सुन रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको पंकज उदास की आवाज में मोहरा फिल्म का ये गाना। इंदीवर के बोल हैं और विजू शाह का संगीत। और सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बाला और मीनाक्षी तिवारी। ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरुण।

चोपड़ा, कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्लू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी, किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ गोंडा ने, और इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार लिखे हैं। लिखा है इन्होंने ईमेल में, किसी का भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, किसी पर दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। इसमें आप भला को जब उल्टा लिखते हैं तो उसका लाभ बनता है और दया को उल्टा लिखते हैं तो याद बनता है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन शब्दों का, बहुत ही अच्छा विचार। तो इस तरह से हम अपने विचार शेयर करते रहें और साथ में उन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात भी करते रहें, उन्हें अपनाते भी रहें। क्योंकि कई बार होता है कि हम आदर्श हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में बहुत होते हैं, लेकिन हम उनको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो जीवन में थोड़े थोड़े उन विचारों को, आदर्शों को हम अपनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम धीरे धीरे आदर्श की ओर बढ़ते रहेंगे। गाज़ियाबाद से शीशपाल अकेला, इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है और शायद इसीलिए अपना इन्होंने उपनाम रख लिया है अकेला का, तो ये भी ईमेल करते हैं। तो आइए सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में, विजू शाह के संगीत निर्देशन में, इंदिवर की रचना, मोहरा फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, मोहरा फिल्म का ये गाना पंकज उदास के साथ साधना सरगम के सुर में, इंदीवर का गीत और विजू शाह का संगीत आप सुन रहे थे। और अगला तथा अंतिम गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं, उसके लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल हम शामिल कर पाए हैं। एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम, अशफ और रसीद वारसी, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जीशान खान, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र सिंह डूडी। आप सभी की पसंद पर हम ये गाना सुनेंगे स्वदेश फिल्म का। और श्रोताओं, स्वदेश की बात हो रही है तो मैं आपको 25 जुलाई से जुड़ा एक बहुत ही रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। 1977 तक, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1977 तक से पहले जब नीलम संजीव रेड्डी हमारे राष्ट्रपति बने भारत के, तो एक परंपरा शुरू हुई और वो परंपरा थी 25 जुलाई को राष्ट्रपति के शपथ की। जब 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसी दिन हमारे अगले राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो 1977 के बाद से अभी तक, यानी नीलम संजीव रेड्डी से लेकर आगे के जितने भी राष्ट्रपति बने, उन सभी राष्ट्रपतियों ने, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, KR नारायणन हो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, R वेंकटरमन हो, ज्ञानी जैल सिंह हो, या फिर आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आप सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ ली। हालांकि इसका कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन एक परंपरा बन गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये भारत के समृद्ध लोकतंत्र का प्रतीक है। और भारत सिर्फ आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक देश नहीं बना, बल्कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र की जननी। भारत सदियों से, सैकड़ों हजारों साल पहले से भारत में जो सभ्यता थी वो बहुत बहुत अच्छी और बहुत लोकतांत्रिक थी।

0: ये जो बंधन है कभी टूट नहीं सकता, ये हमारा बंधन है हमारी अपनी मातृभूमि, हमारे अपने राष्ट्र भारत से। और इसके साथ ही आज का आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुई।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू

0: district of Bihar delivered a strong performance by lifting 192 kg in his second attempt, earning 130.9 points and securing a place on the podium. In a social media post, the Prime Minister described Mr. Kumar's performance as spectacular and highlighted that the achievement is a powerful reflection of immense strength, unwavering determination and years of disciplined effort. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं, और साथ ही हमारे प्रसारण आप सुन सकते हैं श्रोताओं डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मोबाइल एप्लीकेशन है AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, क्योंकि सुबह के 11:10 हुए हैं और ये कार्यक्रम सबरस का है। विभिन्न कलाकारों के सुगम संगीत हम आपको सुनवाते हैं। इसमें सबसे पहले भारती सिंह का गाया ये गीत होगा, उसके बाद जगजीत सिंह के स्वर में एक प्रस्तुति और फिर रूमा तथा अंतिम प्रस्तुति गुरदास मान के स्वर में। आइए सुनते हैं।

गुरदास मान के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम सुरमंजरी का। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे तन्वी भट्टाचार्य का राग शुद्ध सारंग में गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे तन्वी भट्टाचार्य का राग शुद्ध सारंग में गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3।

0: सकते हैं, जहां पर हमारे सभी कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJB के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: घर आंगन।
1: जी हाँ, कार्यक्रम है घर आंगन। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
2: और मैं हूँ दीपा भूषण।
1: हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार। राधा कैसी हो?
1: बहुत अच्छी हूँ,
2: बहुत दिन बाद मुलाकात।
1: हाँ, आपकी मुस्कुराहट देख के तो वैसे भी मन में बहुत प्रसन्न हो जाता है।
2: और देखो राधा, मौसम सुहाना हो रहा है और हमारे श्रोतागण घर आंगन कार्यक्रम सुनने के साथ साथ सुहाने मौसम का भी आनंद ले रहे हैं।
1: और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हम घर आंगन कार्यक्रम में ले आए ढेर सारी काम की बातें और सुरीली खूबसूरत की। दीपा जी, कौन सा सुंदर विचार लेकर आई हैं आप?
2: बिल्कुल राधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, उनमें जीवन यानी सच्चाई और अपनापन होना बहुत ज़रूरी है।
1: सच में दीपा, ये एक बहुत सुंदर संदेश है। जीवन में रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और अपनापन सबसे अधिक मायने रखता है। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वही जीवन के सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखद बनाते हैं।

0: देखा ना, हम आ गए अपने कार्यक्रम घर आंगन में, जहां अपनी महिलाओं और श्रोताओं को हम ढेर सारी जानकारी देते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम। देखिए, ये गीत हमने सुना कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: और दोस्तों, अब हम आज बात करेंगे मैदान की, मेडल की नहीं बल्कि उस मजबूत व्यक्तित्व की जो मैदान से निकल कर आता है।
1: बिल्कुल, हम अपनी बेटियों की पढ़ाई, अच्छे स्कूल, करियर और भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम उतना ही ध्यान इस बात पर देते हैं कि हमारी बेटियां किसी न किसी खेल से भी जुड़ी हों?
0: बिल्कुल दोस्तों, और यही तो बात है, अक्सर खेल को हम अक्सर सोचते हैं कि ये मनोरंजन या खाली समय बिताने का साधन है, लेकिन सच तो ये है कि खेल जीवन की सबसे अच्छी पाठशाला है।
1: बिल्कुल, और खेल जो है वो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि मन और व्यक्तित्व को भी गढ़ते हैं। खेल सिखाते हैं अनुशासन, समय का महत्व, हार के बाद दोबारा उठना, जीत के बाद विनम्र रहना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात है दीपा, दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल सही कहा राधा। और दोस्तों, खेल का मतलब केवल क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन नहीं है। अगर आपकी बेटी को दौड़ना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे शतरंज पसंद हो, किसी को तीरंदाजी अच्छी लगती है, किसी को शूटिंग, किसी को तैराकी।
1: और जब परिवार विश्वास करता है तो बेटियां कमाल करती हैं। हमारी बेटियां लगातार विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रही हैं।
0: और राधा, इसके पीछे क्या है, एक ऐसा परिवार जिसने कहा खेलो हम तुम्हारे साथ हैं, यही विश्वास किसी भी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
1: और दीपा, मुझे लगता है कि हर बेटी का लक्ष्य मेडल जीतना होना भी नहीं चाहिए। खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे व्यक्तित्व निखरता है, आत्मविश्वास आता है, लोगों में घुलना मिलना सीखा जाता है, समाज को समझा जा सकता है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है।
0: और बिल्कुल आज राधा, बिल्कुल सही बात कही तुमने। और आज तनाव, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बढ़ती दुनिया में मानसिक मजबूती सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हर हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि हर हार जो है वो अंत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में ये सबक बहुत जरूरी है कि हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है। याद रखिए दोस्तों, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल नहीं होता, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एक स्वस्थ शरीर, एक सशक्त मन, सही निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासित जीवन और सकारात्मक व्यक्तित्व।
0: तो आइए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ने का ही नहीं खेलने का भी पूरा अवसर देंगे, क्योंकि जब एक बेटी खेलती है तो केवल एक खिलाड़ी नहीं बनती, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने वाली एक सशक्त नागरिक बनती है।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना सच हुए सपने तेरे, फिल्म थी काला बाजार और गायिका थी आशा भोसले।
1: एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है जी, घर आंगन। और हम अपनी महिलाओं से, श्रोताओं से बातें कर रहे हैं ढेर सारी। आज है 25 जुलाई, जब मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव दिवस, यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं और उससे होने वाले हादसों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
2: बिल्कुल राधा, तुमने सही जानकारी दी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल बहुत से लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं।
1: और इसके बचाव के उपाय भी बता दीजिए दीपा जी।
2: इसके बचाव के लिए पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बैरियर लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तैराकी सिखाना और सुरक्षित बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण देना राधा बहुत जरूरी
1: जैसे
2: है।
1: जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि खेल सीखना सिखाने चाहिए बच्चों को। हाँ, तो तैराकी तो भी उसी में आता है कि तैराकी भी हमें अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए।

0: ठंडी हवा काली घटा, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55, गायक कलाकार थे गीता दत्त और साथी। और राधा, अब तुम कहो तो कुमाऊं की बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक गीत तुमने सुना होगा, बेड़ू पाको बारमासा, सुनाया गया?
1: हाँ,
0: ये कुमाऊं से
1: बिल्कुल।
0: बहुत फेमस गीत है और ये धुन सुनते ही मन जो है उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहुंच जाता है। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़, नदियाँ और लोकगीत ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत परंपरा है पिछौड़ा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं।
1: पिछौड़ा यानी दुपट्टा, जिसे विवाहित महिलाएं लहंगे या साड़ी के ऊपर ओढ़ती हैं। ये पीले और लाल रंग का होता
0: बिल्कुल,
1: है और
0: बिल्कुल,
1: उसपे कुछ
0: बिल्कुल।
1: डिजाइनिंग होती है, एक सुंदर और पारंपरिक परिधान है। एक बात और मुझे याद आई है दीपा, कि दिल्ली में हम जो ये पिछौड़ा तरीके का दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, जो हम दिल्ली के महिलाएं किसी भी त्योहार पे, उसे हम बोलते हैं पीलिया।
0: अच्छा,
1: वो उसी तरीके का होता है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है।
0: अच्छा, बिल्कुल राधा। और कुमाऊं में इसे विवाह, जनेऊ, नामकरण, देवी पूजन, हरेला, नवरात्र और दूसरे मांगलिक अवसरों पर महिलाएं बड़े सम्मान के साथ इसको धारण करती हैं। खासकर विवाह में दुल्हन को पिछौड़ा ओढ़ाने की परंपरा सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से भी जुड़ी है।
1: और दीपा, इसकी बनावट भी बहुत खास होती है।
0: बहुत खास।
1: पारंपरिक जो पिछौड़ा होता है वो हल्के पीले या केसरी रंग के कपड़े पर बनाया जाता है। उस पर लकड़ी का नक्काशीदार मोहरों से लाल रंग के सुंदर डिजाइन छापे जाते हैं, और पीला और लाल रंग मिलके जो
0: बहुत
1: खूबसूरती
0: सुंदर,
1: आती है ना,
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: होता
0: प्यारा
1: है।
0: लगता है राधा। और इसके बीच में स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी, कलश और कमल जैसे शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं, जो सुख, समृद्धि और मंगल का संदेश देते हैं।
1: वाह वाह वाह, यानी पिछौड़े का हर रंग और हर आकृति अपने आप में एक कहानी बताती है।

0: फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: और राधा, हम फिर आ जाते हैं जो हम बात अभी कर रहे थे अपने श्रोताओं से पिछौड़े की, कुमाऊं के। और एक रोचक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो पहले पिछौड़ा जो था पूरी तरह से हाथ से ही बनाते थे, अब लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई की जाती थी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग आता था। आज भले ही आधुनिक तकनीक आ गई है, लेकिन आज भी हाथ से बने पारंपरिक पिछौड़े की पहचान और सम्मान आज भी कायम है। आज भी लोग उसी तरह से उसको देखते हैं।
0: मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है दीपा, कि आज की युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ रही है, चाहे वो देश हो या विदेश। शादी और धार्मिक अवसरों पर गर्व से पिछौड़ा पहना जाता है।
1: बिल्कुल, और इसमें स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों का भी बड़ा योगदान है। वे इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं, इससे हमारे सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है और स्थानीय लोगों को, राधा देखो, रोजगार भी मिल जाता है।
0: और पिछौड़ा जो है वो सिर्फ एक परिधान नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, और जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है।

0: अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का एक गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की।
1: और दीपा, हम बात करेंगे अब एआई की। जी हाँ, आजकल तो एआई बहुत चल रहा है,
0: बहुत,
1: क्योंकि मशीनों में इंसानों जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। आज हमारे दैनिक जीवन को आसान और तेज और स्मार्ट बनाने के लिए जो एआई है वो बहुत प्रमुख साधन बन चुका है, पहले से ही है। अब गूगल मैप्स खोलते हैं, हम मैप देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई नई भाषा सीखनी होती है, कोई भी हम सोशल मीडिया में गाने देखते हैं या फिल्में देखते हैं, वो सब एआई ही तो है। अब डिजिटल तकनीक जो है ये हर पल बदलती दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत होगी और हर समय इसकी ज़रूरत है हमें, लेकिन अब एआई से जुड़ी नई नई जानकारियाँ, ऐप्स और टूल्स की जो भरमार है ना, उसने तनाव को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई हमारे काम को आसान बनाने के लिए आया है, लेकिन यदि इसका उपयोग संतुलित तरीके से न किया जाए तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। हर समय नई तकनीक को अपनाने और उसके बारे में जानने की कोशिश लोगों को तनाव में डाल रही है। अब इसके कुछ उपाय आप दीपा जी बताइए।
0: हाँ, मैं बिल्कुल अपने श्रोताओं को इसके उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप आवश्यक नोटिफिकेशन ही चालू रखें, स्क्रीन टाइम सीमित करें, काम के दौरान बीच बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें, एआई का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करें, हर

0: खाने का दबाव ना डालें। दिन में कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से जो दूरी बनाना ना बिल्कुल संभव नहीं होता, लेकिन उसका संतुलित उपयोग हम कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग में सोचना होगा कि हम बैलेंस कैसे बनाएं, कब फोन का इस्तेमाल करना है, कब एआई का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। यदि हम एआई और डिजिटल साधनों का समझदारी से उपयोग करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे और मानसिक तनाव से भी बचा जा सकता है।

जानते हो तुम, कुछ ना कहेंगे हम।

0: देखा एक बार, हंस के किसने देखा एक बार है, दिल की मुराद कोई पा गया।
1: सांसों में मिठिया होठों पे मिठाया,
0: दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम।
2: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना दिल तेरा दीवाना है सनम। फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी।

0: एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज का इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
1: और मैं हूं दीपा भूषण।
0: बातें कर रहे हैं हम काम की, अपनी महिलाओं की, अपने श्रोताओं के काम की बातें हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करेंगे बहुत जरूरी, जो किचन से भी जरूरी मतलब जुड़ी हुई है दीपा, और हम बताने वाले हैं गीला और सूखा कचरा प्रबंधन यानी अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखिए घर में जो भी निकलता है कचरा तो उसे डिवाइड करना बहुत जरूरी है। अभी तो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है, कई महिलाएं उस कचरे को अलग अलग भी करती हैं, बहुत काबिले तारीफ है ये बात कि वो अलग अलग रखती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि गीला और सूखा कचरा प्रबंधन दो मुख्य हिस्से हैं। गीला कचरा सड़ने वाला जैविक कचरा होता है जिससे खाद बनती है जो हरे डिब्बे में जाता है, और सूखा कचरा नहीं सड़ने वाला रिसाइकिल योग्य कचरा होता है, वो नीले डब्बा होता है, इसे अलग रखना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
1: और दोस्तों जो गीला कचरा है ये पूरी तरह से जैविक होता है और प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके और पौधों की पत्तियां। गीले कचरे के लिए हम हरा डस्टबिन का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल सही बताया दीपा, क्योंकि जैसे घास का रंग हरा होता है ना, ऐसे सोचा जा सकता है कि हम उसे खाद बना देंगे तो हरा डस्टबिन हमें याद रहेगा। और जो सूखा कचरा होता है ड्राई वेस्ट, वो नीला डस्टबिन में जाता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है और आसानी से प्राकृतिक रूप से वो नहीं सड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलीथिन है, दूध के खाली पैकेट हैं, कागज़ है, गत्ते हैं, धातु के डिब्बे हैं, कांच है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो सूखा कचरा होता है। एक बात और है, जो कांच है ना नीले में डाल सकते हैं, लेकिन अलग से पॉलीथिन में पैक करके अगर उसे ब्लैक में दिया जाए, क्योंकि वो हैजार्डस वेस्ट होता है, क्योंकि खतरनाक होता है, तो उसे अलग से दिया जाना चाहिए।
1: और अब मैं बताना चाहूँगी श्रोताओं को कि सूखे और गीले कचरे को अलग क्यों करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना, गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है, सूखे कचरे को रिसाइकल करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो बदबू पैदा होती है, कचरे का रिसाइकल नहीं हो पाता और बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है।
0: इसलिए अपने किचन में और घर में हर जगह ध्यान रखिए कि गीला कचरा हमें अलग रखना है और सूखा कचरा अलग।
2: तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है
2: कह

0: दिल में जो भी बात है वो हमारे श्रोताओं को भी कहनी है कि ये कार्यक्रम उन्हें हमारा कैसा लग रहा है, हमारी ईमेल आईडी पे fmgoalga@gmail.com पे बता देना है कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या क्या चाहते हैं इस कार्यक्रम में। ये गीत हमने लिया था दीवार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।
1: और राधा, बारिश का मौसम है, देखो कभी ना कभी घूम फिर के बारिश आ रही है, कभी धूप भी आ जा रही है,
0: और दिल्ली में कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, और मौसम बड़ा सुहावना है,
1: बहुत सुहावना। और राधा, बरसात की रिमझिम फुहारे हों और ठेले पर ताज़े ताज़े जामुन दिख जाएं तो मन अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और जामुन खाते ही सबसे पहले जीभ का जो बैंगनी हो जाना है ना वो याद आता है। बचपन में तो हम सब एक दूसरे को जीभ दिखाकर खूब हंसते थे।
1: बहुत सही कहा, लेकिन जामुन सिर्फ बचपन की यादें ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी मौसमी फल माना गया है।
0: सबसे अच्छी बात यह है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा राधा, और आयुर्वेद में इसके बीजों का चूर्ण मधुमेह के मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट के गुण त्वचा में चमक लाते हैं, साथ ही विटामिन सी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है।
0: यही कारण है दीपा कि बरसात के मौसम में जामुन का सेवन शरीर को ताजगी देने के साथ साथ संतुलित आहार का भी अच्छा हिस्सा माना जाता है।
1: और मैं बताऊं रहा था, जामुन खाने के साथ साथ बहुत से लोग घर पर जामुन का शरबत भी बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र में सहायक माना जाता है। मौसम के ताज़े फल हमारे भोजन को और भी पौष्टिक बना देते हैं,
0: और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है कि जो फल जिस मौसम में मिले उसका आनंद उसी मौसम में लेना चाहिए।
1: तो दोस्तों, इस बरसात में जामुन जैसे ताज़े और मौसमी फलों को ज़रूर खाएं, और हाँ, खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रकृति के इन अनमोल उपहारों का आनंद लीजिए।

0: लव इन टोक्यो फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है दीपा, और हम चाहते हैं श्रोताओं से इजाजत,
1: और हम भी सायोनारा कहें।
0: सायोनारा, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,00,000

0: में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। चैनल है आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ और मैं हूं आपकी रेडियो साथी दुर्गेश सारस्वत। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में अपनी जगह बनाए रखती हैं। बिल्कुल, हम ऐसी ही कई सारी फिल्म आपके साथ साझा करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज भी हम एक ऐसी ही कालजयी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई फिल्म की कहानी से जोड़ दिया, एक नए आत्मविश्वास और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दर्शकों के मन को छू जाती है। तो चलिए इस फिल्म को इस गीत से पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम आज किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं।

जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने श्रोताओं, ये फिल्म है दिल एक मंदिर। साल 1963 में आई इस फिल्म का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने, और फिल्म में राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी ने अपने सशक्त अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया। वहीं अगर हम संगीत की बात करें तो यहाँ शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज के सफ़र में हम और आप कई सारे ऐसे नगमे सुनेंगे जो इस दिल एक मंदिर की कहानी के चुनिंदा गीत हैं, और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी करेंगे और इस कहानी के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं उस मधुर गीत से जो प्रेम की कोमल भावनाओं से बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत है फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत।

तो दोस्तों, ये था दिल एक मंदिर का एक बहुत ही शानदार गीत, जिसे सुनकर आज भी दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है जो प्यार में, सच्चे प्यार में डूबे हुए होते हैं। कहते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ निभाने का नाम नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए त्याग करने का नाम होता है। और ऐसी ही भावनाओं से भरी फिल्म है ये दिल एक मंदिर की कहानी। कहानी एक शादीशुदा जिंदगी और प्यार और विश्वास से भरी हुई है, जिसमें एक दंपत्ति होता है जिनकी जिंदगी में प्यार और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। लेकिन अचानक उनकी खुशियों पर संकट आ जाता है जब कहानी में पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता की गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इलाज की जिम्मेदारी होती है एक मशहूर डॉक्टर के हाथों में। आखिरकार कहानी में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ये जो डॉक्टर हैं, वो कभी पत्नी के पुराने प्रेमी रह चुके हैं। अब डॉक्टर के सामने एक कठिन परीक्षा है। क्या वह अपने पुराने प्रेम को याद करेगा या अपने पेशे की शपथ निभाकर मरीज की जान बचाएगा? कहानी का अगला भाग हम आपको इस गीत के बाद बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।

तो दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म की कहानी की, जिसमें डॉक्टर साहब के पास ये कश्मकश होती है कि वो अपने प्यार के साथ जाएं या फिर अपने पेशे के साथ। वहीं दूसरी ओर पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है और हर परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ती। तो आखिरकार डॉक्टर अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मरीज का सफल इलाज करते हैं। आखिरकार फिल्म का संदेश भी यही है कि जो सच्चा प्रेम होता है श्रोताओं, त्याग, ईमानदारी और कर्तव्य में छिपा होता है। रिश्तों की जो मजबूती होती है ना, वो विश्वास और समर्पण से बनती है, ना कि केवल भावनाओं से। ऐसी ही न जाने हिंदी सिनेमा में कितनी फिल्मों की कहानी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ फिल्में और उनके संगीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कितनी भी समय निकल जाए वो बदलते नहीं हैं। समय ज़रूर बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो अच्छा संगीत होता है ना, वो अपना आकर्षण कभी भी खोता नहीं है या कम नहीं होने देता। यही एक कारण है कि दिल एक मंदिर के गीत जो हैं, आज भी रेडियो, संगीत मंचों और श्रोताओं की यादों में उतने ही ताज़ा हैं जैसे कि

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत। अपने भाव, संगीत और गायकी के कारण ऐसे तमाम गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये फिल्म दिल एक मंदिर और इससे जुड़े सदाबहार गीत और उनकी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म और उसके मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दुर्गेश सारस्वत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलते चलते सुनते हैं ये इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 1:40 हुए हैं, आपसे सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण मियां खबरां। सरकार अज कोकरोच जनता पार्टी के वफद नाल प्रीख्या प्रणाली विच सुधार अते पेपर लीक नूं रोकण दे उपावां नाल संबंधित मंगां बारे एक होर गेड़ दी गलबात करेगी।

0: लद्दाख विच 27वें करगिल विजय दिवस के संबंध में दो दिन समारोह अज द्रास विच शुरू हो गए ने। आसाम विच हड़ां संबंधी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे विच हड़ां की हालत संबंधी जायजा लैण लई आसाम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा नाल टैलीफोन ते गलबात कीती है। जम्मू कश्मीर विच श्री माता वैष्णो देवी ते श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार 6 दिन मुलतवी रहने तो बाद अज तो मुड़ शुरू हो गई है। भारत अते जिम्बाबवे विचकार 3 ट्वेंटी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचां लड़ी दा दूजा मैच अज हरारे विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार अज कॉकरोच जनता पार्टी CJP दे वफद नाल प्रीख्या प्रणाली विच सुधारां अते पेपर लीक नूं रोकण दे उपावां नाल संबंधित मंगां बारे एक होर गेड दी गल्लबात करेगी। मीटिंग 3:30 बजे दिल्ली दी कंस्टीट्यूशन क्लब विच होणी तय है। इस तों पहलां कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा अते डॉ जितेंद्र सिंह ने नवीं दिल्ली विच CJP दे वफद नाल मुलाकात कीती सी। इस तों बाद श्री नड्डा ने कहा सी कि मीटिंग विच प्रीख्या प्रणाली विच सुधारां लई CJP दीआं मंगां नूं ध्यान नाल सुणिआ गिआ। श्री नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 मुख मंगां रखीआं ने, पेपर लीक नूं रोकण लई कुछ सुधारां दा सुझाव भी दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले विच सख्त कानून लियाउण बारे अपने वीडियो संदेश ते लोकां दे सुझावां ते प्रतिक्रियावां लई धन्नवाद कीता है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक वर्गियां घटनावां नूं रोकण अते दोषियां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन लई एक नवां बिल अगले हफ्ते संसद विच पेश कीता जाएगा। बिल दे खरड़े नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मंजूरी दे दित्ती है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी दे इंस्टाग्राम वीडियो ने एक नवां रिकॉर्ड कायम कीता है। इह वीडियो नूं 24 घंटिआं विच 30 करोड़ 30 लाख तों वध वार देखिआ गिआ, जिस नाल दुनिया विच सब तों वध देखिआ गिआ वीडियो बण गिआ है। लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कानफ्रेंस विच सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नूं मंत्रिमंडल तों हटाउण दी मंग कीती है। कांग्रेस नेता ने मंग कीती है कि प्रदर्शन दौरान विद्यार्थियों तों होए हमले लई जिम्मेवार लोकां खिलाफ कार्रवाई कीती जानी चाहीदी है। सरकार ने सोशल मीडिया ते कोमरे उस वीडियो का खंडन किया जिस विच दावा किया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा कि नवी दिल्ली के जंतर मंत्र के विरोध प्रदर्शन कारण 30,000 फौजी जवानों ने इस्तीफा दे दिता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस राही तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अजिहा कोई बयान नहीं दिता। PIB ने नागरिकों नूं अपील की है कि वह किसी भी जानकारी की पुष्टि लिए सिर्फ भरोसेयोग अधिकारित स्रोतों ते ही भरोसा कर। लद्दाख विच 27वें करगिल विजय दिवस के संबंध में दो दिन समारोह अज द्रास ते लामचेन व्यू पॉइंट विखे एक युद्ध यादगारी समारोह नाल शुरू होया। इस समारोह विच 1999 के करगिल युद्ध विच सर्वोच्च कुरबानी देने वाले बहादुर सैनिकों नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई नूं पाकिस्तान उत्ते भारत की जित की याद विच मनाया जांदा है। इस समागम विच ऑपरेशन विजय बारे एक दस्तावेजी, बहादुर सैनिकों नूं श्रद्धांजलि, शहीदां दे परिवारां नाल गल्लबात अते साबका सैनिकां वल्लों यादां सांझियां करना शामिल सी। समागम विच सीनियर फौजी अधिकारी, सिविल अधिकारी, साबक सैनिक, वीर नारियां अते होर मेहमान शामिल होए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जंगी यादगार विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे के मुख कारगिल विजय दिवस समारोह की अगवाई करनगे। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। साडा एक्सटेंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। आसाम विच हड़ां संबंधी हालत अजे भी गंभीर बनी हुई है। राजभर विच 1,15,000 तों वध लोकां ने राहत कैंपां विच शरण लई है। राज विच हड़ां नाल मरण वाले की कुल गिणती 61 तक पहुंच गई है। उपरी आसाम विच दिखो, दिसांग अते दनसिरी नदियां अजे भी खतरे के निशान तों उपर वग रही ने। प्रभावित इलाकों विच राहत ते बचाव कार्य जारी ने। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आसाम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा नाल टैलीफोन ते गल्लबात कीती ते सूबे की हड़ां की हालत संबंधी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री सरमा ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने नुकसान के पद्धर, राहत कार्यां अते जमीनी पद्धर ते आ रही चुनौतियां बारे जानकारी हासिल कीती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहत, मुड़ वसेबे अते मुड़ निर्माण के चल रहे कार्यां विच सहायता लई केंद्र सरकार वल्लों हर संभव सहायता का भरोसा दिता है। श्री सरमा ने यह भी कहा कि आसाम के लोग इस मुश्किल समय दौरान प्रधानमंत्री वल्लों दिते भरोसे अते समर्थन लई उन्होंने बहुत धन्नवादी ने। जम्मू कश्मीर विच भारी बारिश कारण लगातार 6 दिन तो रद्द श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अज मुड़ शुरू हो गई है।

यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगु होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदगुमानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज़्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि ये शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट ज़िले में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मज़ीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाक़यात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धीखू, दिसांग और धानसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव इमदादी काम जारी हैं। आफात से निमटने वाली टीमें और ज़िला हुकाम मुतासर इलाकों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बाज़ाबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाक़यात में 5 अफराद की जानें तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज़ कर दिए हैं और मुतासरा इलाकों के हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नज़र रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशउसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी हिदायात पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के 9 मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा 2 रोज़ा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में CJP के वफ्द के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के वफ्द से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगु करते हुए JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चार खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालका बदउनवानियों के मामलात की तेज़ी से समाअत की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने

महीने के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रुसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज़ ने इम्तहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वज़ीर आला मोहन यादव ने भी चार शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से दो रोज़ा यादगारी तकरीबात का आगाज़ आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी नजरान जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और जंग में शामिल फौजियों की तजर्बात शामिल थे। कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीबात की क्यादत करेंगे

0: आगाज आज यूथ संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। करगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कैनेडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वफ्द के दरमियान इम्तहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat, over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of

0: अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता

0: और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक कलाकार। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कलाकार की फ्लैशबैक की कहानी, जहां पुराने ज़माने की कहानियां वापस जिंदा होती हैं। जी हां, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बिना कैमरे के सामने आए पूरे बॉलीवुड को कैमरे के पीछे से चलाया। नाम सुनोगे तो कहोगे, अरे ये तो सुना हुआ लगता है। इससे पहले कि हम आपको उनका नाम बताएं, तो उन्हीं का क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।

इस गीत के बाद शायद आपको इस बात का पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कलाकार एफ सी मेहरा की, यानी फाकिर चंद मेहरा की। श्रोताओं, एफ सी मेहरा का जन्म 29 अगस्त 1923 को पेशावर में हुआ था। हाँ, वही पेशावर जहाँ से पृथ्वीराज कपूर का पूरा परिवार भी था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रॉयल इंडियन एयरफोर्स से की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसकी आगे की कहानी हम आपको बताएं, क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है एफसी मेहरा। ये से पहले हमने आपको बताया था कि इनकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स से। एक दिन इनकी ईमानदारी के कारण इनकी जॉब चली गई। जेब खाली थी पर जज्बा उनका फुल ऑन था। इन्होंने छोटे मोटे काम किए। एफसी मेहरा ने 1950 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग में अपना सफ़र शुरू किया और बहुत जल्द प्रसिद्धि हासिल भी कर ली और इन्होंने ईगल फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जहां उन्होंने उस दौर की कुछ प्रतिष्ठित फिल्में बनाईं। शम्मी कपूर और कल्पना अभिनीत फिल्म प्रोफेसर एक संगीतमय कॉमेडी फिल्म थी, जो अपनी आकर्षक कहानी और ए गुलबदन और क्या तुमने है कहा जैसे यादगार गानों के लिए बेहद लोकप्रिय हुई।

एफसी मेहरा ने आम्रपाली, ऐलान, अलीबाबा, अलीबाबा 40 चोर, सोनी महवाल, राम जाने, चमत्कार भी उन्हीं फिल्मों की देन है। मतलब जिस दौर में स्टार, म्यूजिक, कहानी तीनों चाहते थे, एफसी मेहरा ने वो फॉर्मूला पकड़ लिया था। और फिल्म ही नहीं, टीवी भी, जमान संभाल के, ऑफिस ऑफिस, खट्टा मीठा जैसे सीरियल भी ईगल फिल्म से ही आए थे। एफसी मेहरा मुंबई के सबसे पुराने सिनेमा हॉल मिराज के और दिल्ली के प्लाजा के मालिक भी थे। मतलब फिल्म बनाना भी उनका और दिखाना भी उनका। उनके बेटे उमेश मेहरा और राजीव मेहरा भी उनके पदचिन्हों पर ही चले।

श्रोताओं, एफसी मेहरा ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी चलती हैं, क्योंकि एफसी मेहरा का सिनेमा बिल्कुल साफ सुथरा और एंटरटेनमेंट और अच्छी कहानियों भरा रहा। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप प्रोफेसर का सॉन्ग सुनिएगा या सोनी महवाल देखें, तो ईगल फिल्म का वो लोगो आपको ज़रूर याद आएगा। बस आज के लिए इतना ही, जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और कलाकार की कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे एक बहुत ही अच्छे आखिरी गीत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपनी रेडियो सखी निधि वर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: श्रुति बहना, आजकल तो बादल हमते लुका छिपी को खेल खेले हैं। कहूं तो मेघा घुड़की दे के चले जाएं और कहूं बरसे हैं तो ऐसा बरसे हैं कि बंद है नो ही भूल जाएं। इतना जम के बरसे हैं कि सब
1: हाँ
0: जगह
1: सही में।
0: पानी ही पानी है जाए।
1: हाँ जे तो है, पर जे वर्षा को जल जो है ना, जो पानी है वो कितने जरूरी है हम सभी के ताई।

0: ये जो वर्षा को जल है ना,
1: हाँ
0: या जल को बहुत संभाल के रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्रोत है, या कुछ संचित कियो ही जानो चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हो श्रुति बहना। भूमंडल पे सबसे बड़ो जल को स्रोत जो है वो वर्षा को जल है। और बहना, मेहनत कश किसान भाइन के काजे तो पावस ऋतु को ये जल बहुत महत्व राखे। समय पे वर्षा होना बिनके काजे प्रकृति को सबसे बड़ो उपहार है। वे धरती को समृद्ध करवे में कोई कसर ना छोड़े।
0: हाँ वंदना बहन, प्रकृति तो प्राणी मात्र की जननी है। वो तो सबके काजे वात्सल्य उड़े ले, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ते लेके हम तक समान भाव ते ममता की बारिश करे है।
1: हाँ
0: अब वर्षा जल तो सबके काजे हुए है, अब चाहे वाको उचित प्रयोग करो चाहे वाको तिरस्कार करो।
1: हाँ श्रुति बहना, हम आज नेक्सी बारिश है जाए तो हाय हाय करें कि यहाँ पानी भर गया वहाँ पानी भर गया। जबकि प्रकृति के या वात्सल्यमय उपहार को सहेजबे के काजे कई उपाय किए जा सके हैं। बहना, पावस ऋतु में आषाढ़ माह जल प्रबंधन को, जल संचयन की तैयारी को माह है।
0: बिल्कुल, हमारे ब्रज में नदी तालाब सरोवर जगह जगह पे बने हुए हैं, इनते अच्छो वर्षा जल संचय को साधन और कहाँ है सके है।
1: सही कह रही हो श्रुति बहना। ये प्राचीन साधन आज हु जल संचयन के प्रमुख साधन है। वर्षा ऋतु में जे जल ते लबालब भर जाएं, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लायो जा सके है।
0: तभी तो प्राचीन काल में राजा तालाब सरोवर कुआ बावड़ी बनवाते थे, और या काम को बहुत पुण्य को काम कहियो जातो वंदना।
1: हाँ श्रुति बहना, और पहले याद है श्रुति बहना कि घर हु ऐसे होते कि जो उनकी छत होती बिन में मोरी होती, जो सीधे क्यारी में खुलती। और हमारे घर की छत पे जो मोरी ही वो क्यारी में खुलती तो सब्जी भाजी के काजे क्यारी हु तैयार है जाती और वर्षा जल को प्रयोग हु है जातो।
0: देखो वंदना, वर्षा जल की एक एक बूंद अमृत के समान है। अब
1: हाँ
0: ये हम सब पे निर्भर करे है कि हम याकू उपहार समझ के स्वीकार करें और याको कैसे प्रयोग करें। अब तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और
1: हाँ
0: नए नए तरीकान ते वर्षा जल संचयन प्रणाली ते समस्या को समाधान हो मिल सके है।
1: बहना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए बे में घास के मैदानन की हु बहुत बड़ी भूमिका होए। तो आज के समय में घास के मैदानन को जगह जगह विकसित कियो जानो बहुत जरूरी है।
0: हाँ, अगर जगह कच्ची है तो पूरा सीमेंट नाए बिछाए के टाइल लगाए के काम चलायो जाए सके है और वर्षा को जल भूमिगत है सके है। और आजकल तो मोरी की सफाई बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बहना। सच में ही वर्षा की बूंदें जो हुए वो अमृत समान हुए। पुराने लोग या बात को जानते, वे वर्षा को जल भर के हु रखते और याई ते हमारो लोक साहित्य वर्षा गानते भरियो पड़ो है।
0: सही कह रही हूँ वंदना बहन, बरखा ऋतु में चमकती बिजुरिया और वहाँ में एक नई नवेली नार को सौंदर्य जब वो जल भरवे जावे तो वहाँ की कछु लचक ही अलग होवे है। वो सबको मन लुभाए लेवे है और कवियन ने तो वाके बारे में बड़ी बड़ी कविता गढ़ी है। और ऐसे ही कछु भाव जागृत कर तो हमऊ एक लोकगीत अपने श्रोतान को सुनवाए देवे। तुम कहो
1: बिल्कुल सुनवाए दियो।
0: तो आओ सुने हैं माधुरी शर्मा के स्वर में जी लोकगीत।

0: बड़ो ही मनमोहक लोकगीत आपने सुनवायो है बहना। देखो आपने कही है ना कि वर्षा ऋतु में नागरी को सौंदर्य लुभावनो विषय रहो है कवियन को रचनाकारन को। तो बहना कालीदास के मेघदूतम में प्रकृति को हूँ मानव के रूप में वर्णन कियो गयो है।
1: अच्छा
0: कितने सुंदर वर्णन कियो है कि जब आषाढ़ में प्रथम बूंद धरती पे गिरे हैं तो धरती भीनी सुगंध छोड़े है और जंगल में हलचल भड़वे लगे, हिरन चौकड़ी भरे हैं।
1: हाँ हाँ फूलन पे भवरा मंडरावे हैं, जगह जगह तितली और जुगनून ते वन उपवन सुसज्जित है जावे हैं। कदम के फूल की सुगंध दूर दूर तक फैल जावे है, पपीहा और कोयल हु तान लेके सुर में गान करे हैं, चहुओर आनंद ही आनंद होए है वंदना बहन।
0: और बहना ब्रज में जी आनंद दूनो है जाए, जब मोर अपे पंख फैलाए रंग बिखेरे है, तो ब्रज की गली गली हु झूलेन के गीत अंते गुंजायमान है जाए, जब नन्ही नन्ही बूंद पड़े हैं। बहना आज चौन आई याई विषय पे एक वार्ता सुनवाई दे जाए।
1: हाँ हाँ चौना है आप कहो और हम अभी सुनवाई देवे हैं वार्ता। तो
0: हाँ
1: लियो श्रोताओं सुनो जी वार्ता, ब्रज में वर्षा ऋतु को प्राकृतिक सौंदर्य। वार्ताकार हैं दिनेश दिवाकर।
2: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में ऋतुओं को विशेष महत्व रहा है। प्रत्येक ऋतु अपने संग कछु न कछु नया सौंदर्य, नवीनता और स्पंदन लेके आवे है। इन्हीं ऋतुओं में वर्षा ऋतु को स्थान अत्यंत विशिष्ट है। जब गर्मी की तपती दोपहरी, सूखी धरती और धूल ते भरी हवा अपने चरम पे होवे है, तब आकाश में घिरते कारे कारे बादल, उनते बरसतो पानी, बाते भीगी माटी की सुगंध और बहती ठंडी ठंडी हवा मन और तन दोनों में ताजगी भर देवे है। ब्रजभूमि में याको सौंदर्य तो और हूँ अद्भुत मनोहारी और भावपूर्ण है जावे है। ब्रजभूमि भक्ति प्रेम स्मृति और लीलान की भूमि है। ये वही पावन भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलांते रास लीलांते प्रेम में प्रसंगनते प्रकृति को दिव्यता प्रदान करी। जब यहाँ वर्षा ऋतु आवे है तो ऐसो प्रतीत हुए है मानो प्रकृति स्वयं कृष्ण भक्ति में डूब गई हो। सरोवर कुंज वन उपवन यमुना तट मंदिरन की झांकी झूलन की सजावट और हरे भरे खेतन की हरियाली सब मिलके ब्रज के सौंदर्य को अनुपम बनाए देवे हैं। ब्रज भूमि को नाम लेते ही मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना नंदगांव गोकुल और राधाकुंड जैसे अनेक पवित्र स्थान स्मरण में आवे हैं। यहाँ की धरती हवा और जल सब में एक विशेष माधुर्य है। वर्षा ऋतु में यह माधुर्य और अधिक निखर जावे है। ब्रज में वर्षा ऋतु को आगमन एक उत्सव की भांति होवे है। बारिश होते ही ब्रज को वातावरण बदलवे लगे है, सूखी धरती में नमी आ जाए है, वृक्षन की पत्ती हरी भरी है जाए है और हवा में ठंडक आ जाए है। ऐसो प्रतीत हुए है मानो प्रकृति ने अपनो पुरानो रूप छोड़ के एक नयो रूप धारण कर लियो हुए। या समय मिट्टी ते एक मधुर और भीनी भीनी सुगंध उठे है जो मन को और अधिक आनंद कर देवे है। खेतन में खड़ी हरी भरी फसल लहरावे लगे हैं, छोटे छोटे पौधा घास बेल और लता बढ़वे लगे हैं, वृक्षन पे नई नई कोपलें आ जामे हैं और तरह तरह के फूल खिलवे लग जाए हैं। ये हरियाली आंखन को ही ना भावे बल्कि मन को ही आनंदित करे है। प्रकृति को प्रत्येक दृश्य अत्यंत मनोहारी लगे है। ब्रज की भूमि या ऋतु में सचमुच एक स्वर्गिक उपवन जैसी दिखाई देवे है। ब्रज के वन उपवन और कुंज या ऋतु में विशेष रूप से और अधिक सुंदर है जाए हैं। वृक्षन पे बैठी कोयल मोर पपीहा और तरह तरह के पक्षीन के स्वर और ध्वनि वर्षा के संग मिलके एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न करे हैं। यह संगीत में कोई कृत्रिमता नाए हुए है बल्कि यह प्रकृति की एक स्वाभाविक लय हुए है। ब्रज में वर्षा ऋतु और सावन आते ही घर घर में पीड़न पे झूला डारवे की हुई परंपरा है। ब्रज वाला अपनी अपनी सखीन के संग भीनी भीनी फुहार और पक्षीन के मधुर स्वरण के बीच झूला झूलते हुए मल्हार गीत गावे हैं और लोकगीत गाए गाए के नृत्य करे हैं। सत्य मानो यह वातावरण न केवल मन को मोह लेवे वारो वरन कानन में मिश्री घोरवे वारो नेत्रन को परम सुख देवे वारो और हृदय को उद्देलित और आनंदित करवे वारो हुए है। यह ऋतु में भक्त तरह तरह के फल फूल सुंदर वस्त्र और लतांते झूला सजाए के वापे श्री राधा कृष्ण को विराजमान करे हैं, भक्ति गीत गावे हैं और उनकी सेवा करे हैं। यह दृश्य धार्मिक अनुष्ठान नए बल्कि सौंदर्य प्रेम और भक्ति को अनूठो संगम और जीवंत चित्र है। ब्रज की वर्षा ऋतु को सबसे मनोरम सांस्कृतिक पक्ष झूला उत्सव है। यह उत्सव ऋतु की मधुरता और श्री कृष्ण की लीलान को प्रतीक है। यही कारण है कि यह ऋतु में ब्रज को धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष विशेष रूप से समृद्ध दिखाई देवे है। ब्रज में यमुना जी को विशेष स्थान है। यह ऋतु में यमुना जी अपेक्षाकृत और हु भव्य दिखाई देवे है। जल की प्रवाह तेज है जाए है, तटन की हरियाली बढ़ जाए है और आसपास का वातावरण अत्यंत मनोहारी लगे है। नदी के किनारे बने घाट, यमुना जी को जल, बहती शीतल हवा, मंदिरन की घंटन की आवाज और भक्तन की चहल पहल सब मिलके एक दिव्य अनुभूति प्रदान करे हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और अन्य पवित्र जलाशयन में वर्षा को जल भर जावे है, उनते उनको स्वरूप और हु अधिक निखर जावे है। वृंदावन ब्रज को हृदय माने जाए है। ये स्थान कृष्ण बाल लीला, रासलीला और भक्ति परंपरा ते विशेष रूप से जुड़ो हुआ है। वर्षा ऋतु में वृंदावन की छटा कई गुना बढ़ जाए है, या कि मार्ग, कुंज, वन, मंदिर, वृक्षावली और वृंदन ते ढकी भूमि एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करे हैं। ब्रज के मंदिरन में वर्षा ऋतु के समय विशेष सजावट हुए है। झूला उत्सव को आयोजन या मौसम को एक प्रमुख आयोजन हुए है। या समय प्रकृति और भक्ति एक दूसरे के पूरक बन जाए हैं। या ऋतु में वृंदावन और संपूर्ण ब्रज को सौंदर्य मात्र बाहरी सौंदर्य ना रहवे है, वरन एक आंतरिक आनंद और श्रद्धा को अनूठो अनुभव बन जाए है। ब्रज साहित्य में वर्षा ऋतु को अत्यंत सुंदर, रसपूर्ण और भावपूर्ण वर्णन मिले है। कवि ने बादल, बिजली, मोर, कुंज, नदी, जनमानस के जीवन और राधा कृष्ण के संयोग और वियोग को या ऋतु ते जोड़ के साहित्य और लोकगीतन की अद्भुत रचनाएं करी हैं। ब्रज भाषा की कोमलता और संगीतात्मकता या ऋतु के वर्णन को और अधिक मधुर बना देवे हैं। वर्षा को मात्र एक ऋतु नाए बल्कि भावनान को प्रतीक मानो गयो है। ये कभू मिलन को संकेत बने है, कभू विरह को, कभी आशा को और कभू निराशा को, कभू प्रेम को और कभी भक्ति को। ब्रज साहित्य में जब आसमान ते उठते घने कार्य बादर, कड़कती बिजली, पुरवाई हवा और झंझन करती फुहारन को वर्णन हुए है, तो प्राकृतिक सौंदर्य, स्त्री पुरुष के प्रेम और सौंदर्य के संग संग राधा कृष्ण की प्रेम छवि हु मन में उभर आवे है। यह प्रकार वर्षा ऋतु ब्रज के लोक काव्य में एक मात्र प्राकृतिक विषय न आए बल्कि प्रेम, सौंदर्य और भाव को विषय बन जाए है। वर्षा ऋतु में ब्रज को धार्मिक वातावरण और हु अधिक गहन है जावे है। मंदिरन में घंटी की ध्वनि, भजन, कीर्तन, आरती और झूला उत्सव वातावरण को भक्तिमय बना देवे हैं। भक्तन को मानना है कि या ऋतु में ब्रज के दर्शन करवे ते मन को विशेष शांति मिले है। या समय प्रकृति स्वयं ईश्वर की उपासना करती भई प्रतीत हुए है। यही कारण ते इन दिनन में तीर्थयात्रियों की संख्या और अधिक बढ़ जाए है। यात्री या पावन भूमि पे आए के मंदिर, सरोवर, हरियाली और लीला स्थलन के दर्शन करवे आवे हैं। वर्षा ऋतु ब्रज में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव को हूँ समृद्ध बनावे है। प्राकृतिक सौंदर्य के संग संग वर्षा ऋतु ब्रज के पर्यावरण के लिए हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मौसम भूजल को हूँ पुनर्भरित कर रहे, पेड़ पौधा वन वृक्षन को जीवन देवे है और भूमि

0: तू उपजाऊ बनावे है। जहाँ गर्मी में सूखेपन को संकट होए है, वहीं वर्षा खेत खलिहान बाग बगीचा और जलाशयन को जलते भर के उनको जीवन की नवीनता प्रदान करें हैं। आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है गई है, तब ब्रज की वर्षा ऋतु हमें सिखावे है कि प्रकृति को संतुलन कितनो अनमोल है और कितनो आवश्यक है। वृक्ष जलाशय और हरित क्षेत्रन की रक्षा ते ही या प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखे जा सके है। यदि हम प्रकृति को सम्मान करेंगे तभी ब्रज जैसी पवित्र भूमि अपनी आभा को बचाए रखेगी। अगर कहो जाए तो ब्रज में वर्षा ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य आध्यात्मिक भाव और सांस्कृतिक समृद्धि को अनुपम और अनूठो संगम है। ये वो भूमि है जहाँ प्रकृति भक्ति और सौंदर्य एक दूसरे में घुल मिल जाए हैं। यह ऋतु धरती को हरियाली देवे है, जलाशयन को जल देवे है, पक्षियों को गीत देवे है, मनुष्य को आशा प्रेम सौंदर्य आनंद और भक्तन को भक्तिभाव देवे है। ब्रज की वर्षा ऋतु केवल दृश्य सौंदर्य नाए बल्कि एक अनुभूति को सौंदर्य है। यहाँ बादल केवल वर्षा नाए लाए हैं बल्कि भावनान की वर्षा करे हैं। यहाँ के जन जीवन को ऐसी दिव्यता प्रदान करे हैं कि वर्षा ऋतु केवल ऋतु नाए रह जाए है बल्कि जीवन को उत्सव बन जाए है। यह मन को शांति हृदय को आनंद और आत्मा को भक्ति प्रदान करे है। यही सु कहे जा सके है कि ब्रज भूमि में वर्षा ऋतु को सौंदर्य भारतीय प्रकृति और संस्कृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति में से एक है।
1: ब्रज में वर्षा ऋतु को प्राकृतिक सौंदर्य या विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे हैं। वार्ताकार है दिनेश दिवाकर। बहना कितने सुंदर वर्णन किया है दिवाकर जी ने वर्षा ऋतु में ब्रज के सौंदर्य को।
2: बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो वैसे भी बरसात है रही है। हाँ। तो मोको तो ऐसा लगे हो कि मैं तो सुन सुन के ही भीग गई हूँ।
1: बहना जब धरती पे टप टप करती बूंद पड़े और घन घन घन घन करते मेघा बरसे हैं तो संगीत में वातावरण सोना है जाए।
2: और देखो रिम झिम करते मेघ बरसे है ना, ये काऊ कविता की रचना करे हैं, काऊ संगीत की रचना करे हैं और मन में तरह तरह की इच्छाएं जागृत करे हैं, चाहत पैदा हुए है मन में। तो बरखा की जो ऋतु है ना वो एक बड़ी अनोखी ऋतु है जो सबके मन में उल्लास उत्पन्न करे है।
1: हाँ, और देखो कारी बदरिया घिर रही हैं तो चौनाए एक प्यारा सा लोकगीत अपने श्रोतान को या बादरी के बीच में सुनवाई दिया जाए।
2: तो आओ सुने हैं हरिकिशन और साथीन के स्वर में जी लोकगीत।

0: और यह लोकगीत के संगे आज का ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
1: मोय यानी वंदना जौहरी को
0: और मोय श्रुतिपुरी को देव अनुमति
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
4: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अब प्रस्तुत है नाटक स्वयं दीपा, कड़ी 1, प्रथम प्रसारण।
1: आइए सुनते हैं नाटक स्वयं दीपा। नाटककार माधुरी सुबोध, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज अब इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।
2: जीवन के इस उठान पर खड़े होकर आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो पूरा धुंधलका धीरे धीरे छंटने लगता है। जीवन का हर घटित क्षण मेरे मानस पटल पर उभर आता है। संपूर्ण जीवन एकाएक चित्रमाला सा सामने घूम जाता है। मैं देवयानी, दैत्य राज के गुरु शुक्राचार्य की लाडली बेटी, राजऋषि ययाति, महर्षि कच्छ, सबके चेहरे घूमने लगते हैं, कभी मुखौटों के साथ कभी बिना मुखौटों के। कितना कठिन होता है अपनों के चेहरों के मुखौटे हटाना। बीता हुआ कल, जीवन में जिया अच्छा समय, लौट आए फिर एक बार, किसका मन नहीं करता अपने अतीत को फिर से जीने की लालसा। काश मैं भी अपने मन में दबा कर रख पाती। जीवन की उषा बेला से जीवन के मध्याह्न तक सारा जीवन एक खुली पत्रावली की तरह मेरे सामने पड़ा है। अचानक उसके पन्ने फड़फड़ा उठते हैं। तटस्थ भाव से मैं उन्हें पढ़ने की, देखने समझने की कोशिश करती हूँ। सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। महर्षि कच्छ तो स्वयं देव जाति के थे, तरुण, सुदर्शन और समवयस्क। उनके साथ घुल मिलकर आत्मीयता से रचा बसा समय मुट्ठी में रेत सा सरकता रहा। कितने वर्ष बीत गए पता ही नहीं लगा। पता चला भी तो तब, जब उनसे बिछुड़ने का समय आया, जब मैंने उन्हें बताया मैं उनसे प्रेम करती हूं और उनके बिना जीवित नहीं बचूंगी, तो औचक असमंजस के भाव उनके चेहरे पर उभर आए थे, जैसे कुछ विलक्षण बात कह दी हो। हृदय में कोई कपट नहीं था जो अपनी भावना छिपाती। एक कुमारी कन्या के मन में किसी चिर कुमार के प्रति प्रणय जागना विलक्षण था, या उसका स्वीकार, ये आज भी पहेली बना हुआ है। मैंने तुमसे विवाह का ही प्रस्ताव तो किया था। जिस पुरुष ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा वही मेरा पति हो, ये कहते ही झट से मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। पिताजी ने महाराज ययाति से जीवन भर के लिए मेरा हाथ पकड़ने का आग्रह किया, मेरा पाणी ग्रहण का आग्रह। पर तब क्यों नहीं, जब तुम मेरे जीवन की ड्योढ़ी पर खड़े थे। पिताजी से भी निसंकोच कह दिया था कि आर्य कच्छ मेरे प्राण हैं, उनके बिना जीना कठिन है। तब उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। वे आखिर तक अनिर्णय की स्थिति में रहे, भला क्यों। महर्षि कच्छ, तुम देवलोक लौट गए पर मेरे हृदय से कभी दूर नहीं जा सके। तुम आज भी मेरे जीवन में बसे हुए हो। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में उभर आता है, ज्यों का त्यों। तुम पिताजी के आश्रम के आंगन में खड़े होकर बड़े चौकन्नेपन से इधर उधर देखते हुए जैसे कुछ ढूंढ रहे थे।

0: मैं देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच दैत्यराज वृषपर्वा के राज्य में पहुंच गया हूं। सुना है आचार्य शुक्र का आश्रम यहीं आनंदवन में है, जहां वे अपनी साधना में लीन रहते हैं, पर शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवराज इंद्र उनके मृत संजीवनी ज्ञान से बड़े आतंकित हैं। जिन दैत्यों को देवतागण अपने पराक्रम और कौशल से मार देते हैं, मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं। इसीलिए इस विद्या को पाकर ही कुछ समाधान ढूंढना होगा। वे मुझे संजीवनी विद्या सिखाएंगे संदेह है।
1: तुम युवा हो, परिश्रमी और लगन के पक्के हो, शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पाने में अवश्य सफल रहोगे। अपने गुरु ऋषि अंगिरा के पौत्र को शुक्राचार्य ये विद्या अवश्य सिखाएंगे।
0: देवताओं के इसी विश्वास के कारण मुझे शुक्राचार्य के आश्रम में आना पड़ा, पर यहां तो सन्नाटा है।
1: अच्छा, अब तुम अकेले ही आगे बढ़ो, मैं जाता हूं।
2: अतिथि, कौन है आप? कैसे आगमन हुआ इस आश्रम में आने का प्रयोजन? आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपका परिचय पा सकती हूँ?
0: मैं शुक्राचार्य के गुरु ऋषि अंगिरा का पौत्र हूँ देवी।
2: ऋषि अंगिरा के पौत्र? इस आश्रम में आपका स्वागत है। पिताजी बाहर गए हैं, कुछ ही समय में लौट आएंगे, तब तक आप यहाँ विश्राम करें। मैं देवयानी हूँ, आचार्य शुक्र की पुत्री।
3: ओम नमः शिवाय।
2: लीजिए, पिताजी भी आ गए। पिताजी, ये आर्य कच्च हैं, ऋषि अंगिरा के पौत्र, आपसे भेंट के लिए आए हैं।
0: प्रणाम आचार्य।
3: ऋषि अंगिरा के पौत्र?
0: जी।
3: मेरे गुरु अंगिरा, तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, यहाँ आकर तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला युवक?
0: आचार्य, मैं कच्च हूँ, पिताजी के ही आदेश से मुझे यहाँ आना पड़ा।
3: हाँ, भला क्यों?
0: आचार्य, पिताजी का आदेश हुआ कि अपनी कुल परंपरा के संचित ज्ञान कोश को पाने के लिए आपके पास जाऊं, आपका शिष्यत्व प्राप्त करूं। उनके पास जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है आचार्य, किंतु जो ज्ञान पितामह ने उन्हें न दिया आपको दिया, वो आपसे पाऊं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं आचार्य। अरे, आपका शिष्यत्व पाने के लिए मैं योग्यता की हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।
3: मेरे मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं, इसे जो ज्ञान बृहस्पति से ना मिला, जो केवल मेरे पास है, वो मृत संजीवनी विद्या पाने की लालसा भी इसके मन में होगी। इसे मृत संजीवनी विद्या सिखाना दैत्यराज के प्रति विश्वासघात तो नहीं होगा? ये उनके शत्रु पक्ष से जो है, ज्ञान की परंपरा तो अजस्त्र रहनी चाहिए। मेरे बात कौन है जो संजीवनी विद्या को अमर रखेगा? गुरु अंगिरा ने जो ज्ञान अपने पुत्र को ना दिया, मुझे दिया, उसे नष्ट नहीं होना चाहिए। उनके स्नेह और गुरु ऋण से कभी मुक्त ना हो पाऊं। ज्ञान की जो निधि मेरे मानस की अतल गहराई में छिपी हुई है, योग्य व्यक्ति को ना सौंपी तो मेरे साथ ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नहीं, यह मैं कभी नहीं चाहता। मैं भी वृद्ध हो चुका हूं, पुत्र ना सही, गुरु भाई का पुत्र, गुरु का पौत्र अपनी संतान की ही तरह है। कच्च संजीवनी विद्या को पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है, उसकी पैतृक परंपरा, उसकी विरासत उसे सौंपने में मुझे भी हर्ष होगा।
0: संभवतः गुरुदेव के मन में राजनिष्ठा और गुरु परंपरा का द्वंद चल रहा है।
3: तुम बहुत बुद्धिमान हो कच्च
0: आचार्य,
3: स्थिति और स्वभाव के द्वंद को खूब समझ रहे हो। आज से तुम गुरु के संरक्षण में हो, आश्रम की छत्र छाया तुम पर बनी रहेगी। कच्च, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का भी समय होगा
0: आचार्य।
3: ओम नमः शिवाय।
0: आचार्य
3: वत्स,
0: प्राणी का जन्म तो होता है ना आचार्य, इसीलिए वो अनादि तो है ही नहीं, पर क्या वो अनंत यानी अमर हो सकता है?
3: अमृत से ही अमरता पाई जा सकती है वत्स।
0: तो क्या मृत्यु को भी जीता जा सकता है आचार्य?
3: मृत को मृत संजीवनी से पुनर्जीवन दिया जा सकता है वत्स। अब विश्राम करो, सांझ हो गई है।
0: जी आचार्य।
3: आज का पाठ इत्यलम्।

0: उधर नहीं, इधर से, इधर इधर इधर से घास चरनी है, चलो तो जंगल की ओर चलो।
1: सब मस्त होकर घास चर रही हैं। पेड़ की छाया में बैठता हूं, इन पर यहां से दृष्टि रखना सही होगा।
2: अरे कौन हो भाई?
3: पहले तो इस वन प्रांत में तुम्हें कभी नहीं देखा।
2: नए नए आए लगते हो।
3: क्या नाम है तुम्हारा?
1: कच्छ, कच्छ नाम है मेरा, और आचार्य बृहस्पति मेरे पिता हैं।
2: और शुक्राचार्य के आश्रम में रहते हो।
3: क्या नाम बताया तुमने अपने पिताजी का?
1: आचार्य बृहस्पति।
2: देवताओं के गुरु बृहस्पति?
1: ठीक पहचाना, मैं उन्हीं का पुत्र।
4: सुना वीर,
5: क्या कहते हो, क्या करना चाहिए?
3: दैत्यराज वृषप्रभा को पता चल गया कि हमने आश्रम की रक्षा में असावधानी की है, तो जीवित न छोड़ेंगे तुरंत।
4: इससे पहले कि महाराज की कृपाण हमारा गला काट दे, क्यों ना इसी उदंड युवक को
3: हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे।
6: संध्या हो गई है, आर्य कच्छ अभी तक गोचारण से नहीं लौटे।
7: अंधेरा बढ़ चला है, कच्छ को अब तक लौटाना चाहिए था।
6: पिताजी, हृदय में अनेक आशंकाएं उठ रही हैं। वन हिंसक पशु, कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ होगा ना? वो देखिए पिताजी, गौएं अपने आप अकेले ही लौट आई। आर्य कच्छ का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं।
3: ओ

0: घोर अनर्थ, अनर्थ हो गया देवा, अनर्थ हो गया दैत्यों ने कच को।
1: नहीं नहीं पिताजी, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। कच को जीवन दीजिए पिताजी, आश्रम के विद्यार्थियों को संरक्षण देना आपका दायित्व है। पिताजी, आपकी मृत संजीवनी विद्या क्या केवल दैत्यों के जीवन की रक्षा के लिए है? यदि कच्छ न लौटे तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी।
0: नहीं बेटी,

0: कितना भटकाया तुम लोगों ने। अरे अब तक तो घास खा ली होगी ना। अरे गुरुजी, देवयानी देखो ना, जरा सी मेरी आंख क्या लगी, सब गायें चुपचाप आश्रम लौट आई और मैं वन ही वन खोज खोज कर दुखी होता रहा। आचार्य
1: वत्स, अब विश्राम करो।
0: जी आचार्य।
2: अरे ये देखिए, जबा का पुष्प।
0: अरे कितना सुंदर है, एकदम एकदम रक्तिम।
2: हाँ अरे, सिंदूर जैसा, रोली का सा रंग, जैसा बाल अरुण का होता है, किसी सौभाग्यवती के बाल का सौभाग्य बिंदु सा।
0: वैसे बहुत भाता है ये रंग और ये पुष्प तुम्हें।
2: हाँ अरे, इसे बालों में गूंथना भी भाता है मुझे।
0: अभी तक तो केवल देवी पूजन में ही प्रयोग होते देखा है इसे। जब कभी इस पुष्प को देखूंगा तो तुम्हारा स्मरण अवश्य होगा। सांझ ढलने लगी है, अंधेरा उतरने लगा है, जीवन का मधुमिलिंद अब उजला होने लगा है। कौन पंछी कुहकता पीयू पीयू पीयू गाने लगा है, मंद मधुर मुस्कुराती चांदनी बिछलने लगी है, सांझ ढलने लगी है, सांझ ढलने लगी है।
2: अरे कच, आज गौर पूजन का विशेष आयोजन है, महेंद्रादित्य को पूजा के पुष्प लेने भेजा।

0: पता नहीं कहाँ चला गया। पूजा में अनावश्यक विलंब हो रहा है मुझे।
1: अच्छा, देवी का आदेश हो तो मैं आनंद वन जाकर जबा के पुष्प ले आऊं।
0: अरे यदि ऐसा हो जाए तो समय पर गौर पूजन हो जाएगा, आश्रमवासी भी प्रसाद ग्रहण करके भोजन कर पाएंगे।
1: आदेश ने देवी, मैं अभी लेकर आता हूँ।
0: जी अवश्य जाइए।
2: अब देखो कैसा आनंद आता है।
3: गज को मार डाला।
4: दोबारा शुक्राचार्य जीवित ना कर दे इसलिए जलाकर भस्म कर दिया।
2: ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
0: पिताजी, पिताजी आरे कच को गौर पूजन के लिए फूल लाने आनंद उन भेजा था, पर वो लौट कर नहीं आए।
3: वाह, क्या कहा बेटी, ये तो चिंता का विषय है। भला पुष्प लाने में इतना विलंब क्यों?
0: जबा कुसुमों से आनंदवन भरा पड़ा है पिताजी, अवश्य ही वो किसी संकट में पड़ गए हैं।
3: रुको। मैंने तो कच को पहले ही कहा था कि दैत्य लोग आकर वो अपने प्राणों को संकट में डाल रहा है।
0: पर पिताजी अब तो वे आश्रमवासी हैं ना, बाहरी गांव के कोई प्राणी नहीं। कई वर्षों से आश्रम की सेवा करके संयम पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहे हैं।
3: ओम, इन दैत्यों का, इन मूर्खों का क्या उपचार करूं, कारण कच के शत्रु हो गए हैं।
0: तो क्या आर्य कच का जीवन फिर से संकट में है पिताजी?
3: संकट, महासंकट कहो। निरपराध कच इनकी शत्रुता झेल रहा है। आश्रमवासी के प्राणों को संरक्षण देना आचार्य होने के नाते मेरा दायित्व है, मैं वही पूरा कर रहा हूँ।
0: तो क्या आपने अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर उन्हें जीवन दान दिया?
1: आपकी पूजा के पुष्प लेकर उपस्थित हूँ देवी।
0: पिताजी आपने आर्य कच को पुनः जीवित कर दिया।
1: देवयानी, मैं देवलोक से यहाँ आया हूँ ये जानकर दैत्यों ने मुझे नष्ट करने की कितनी चेष्टाएं की।
0: जी,
1: पर तुम्हारे कारण ही आचार्य ने मुझे पुनर्जीवन दिया, तुम्हारे अनुरोध के कारण।
0: अरे
1: पर देवयानी, ये तुम्हारी सेवा और स्नेह ही है जिसने मुझे मुझे संबल दिया, तभी मैं संयम और एकाग्रता से अध्ययन करता रहा। कच्च, क्या बात है गंधर्व लालित्य, तुम इस प्रकार गोपनीय तरीके से क्यों आए हो?
5: प्रकट होकर आता तो इस आश्रम से तुम्हारी छुट्टी हो जाती। देवराज इंद्र का संदेश लेकर आया हूँ, बहुत विलंब हो रहा है। क्या अभी तक तुम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं कर सके हो?
1: लालित्य, ज्ञान प्राप्त करने में अनावश्यक शीघ्रता उचित नहीं, धैर्य की आवश्यकता है। समय आने पर गुरु शुक्राचार्य स्वयं मुझे संजीवनी विद्या दे देंगे। जहां इतने वर्ष धैर्य पूर्वक आश्रम के नियमों का पालन किया है, आगे भी करना चाहिए। देवराज से मेरा प्रणाम कहकर निवेदन करना कि शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा अब जाओ, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे लालित्य।
6: अरे ये कौन है, हमारे वन प्रांत का तो नहीं लगता।
7: निसंदेह दैत्य लोक का तो कदापि नहीं।
6: इसकी सूचना दैत्य राज वृषपर्वा को देनी चाहिए।
4: इससे पहले तो कस से मिलने कभी कोई नहीं आया। हो सकता है कोई नया मित्र हो
5: अथवा कोई पुराना परिचित। मुझे तो पहले से ही लगता था कच संजीवनी विद्या लेने आया है।
6: हैं? आचार्य बृहस्पति के द्वार पर ज्ञान की कमी थोड़े ही है, उनका बेटा संपूर्ण ज्ञान पाकर भी शुक्राचार्य का शिष्य क्यों बना?
7: केवल मृत संजीवनी का ज्ञान ही तो नहीं है उन्हें।
6: अगर वो मृत संजीवनी पा लेगा
4: तो देवताओं को मारने और पराजित करने में दैत्य राज को कभी सफलता नहीं मिलेगी और देवराज इंद्र विजयी होंगे।
7: हाँ, हमें उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देना चाहिए।
6: मेरी समझ में भी कुछ कुछ यही विचार आ रहा है।
7: कोई ऐसा उपाय सोचो कि इस बार हमारा वार खाली ना जाए।
4: कच्छ को मारा तो शुक्राचार्य ने उसे जीवन दान दे दिया।
6: अब ऐसा उपाय सोच

0: कि फिर उसे जीवन दान न दे सके।
1: पिताजी, आज आपको भी लौटने में विलंब हो गया।
2: हाँ बेटी, मार्ग में कुछ नटखट दैत्य मिल गए थे, वही जो अपने आश्रम के आसपास मंडराते रहते हैं।
1: पिताजी, मैंने बहुत देर पहले आर्य कच को हवन की सामग्री लेने के लिए वन की ओर भेजा था, पर वो अभी तक नहीं लौटे। इतना विलंब होना तो नहीं चाहिए। दो बार पहले भी उनके प्राण विपत्ति में पड़ चुके हैं पिताजी, इसलिए अधिक चिंता हो रही है।
2: कहती तो तुम ठीक हो, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो।
1: उन्हें कुछ हो गया ना पिताजी, तब तो मैं भी कहीं की नहीं रहूंगी। सब जानते हुए कि दैत्य उनके प्राणों के शत्रु बने हुए हैं, मैंने ही उन्हें वन में भेज दिया पिताजी।
2: देवा, देवा, तुम्हारी ये बेचैनी मुझे भी घबराहट में डाल रही है।
1: पिताजी,
2: देवा, देवा, कच्छ की विद्याधन की अवधि पूरी हो चुकी है। मैंने मृत संजीवनी के अतिरिक्त अपना संपूर्ण ज्ञान उसे दे दिया है।
1: परंतु पिताजी, संजीवनी के बिना उसका अध्ययन पूरा कैसे होगा? कुछ कीजिए पिताजी, कुछ कीजिए।
2: देवा, धैर्य धारण करना सीखो, संयम।
1: वो मेरे जीवन प्राण है, पता लगाइए पिताजी कहाँ लुप्त हो गए हैं वो।
2: ओम नमः शिवाय।
1: क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, कहाँ है कच्छ?
2: कुछ अनिष्ट हुआ लगता है। हाँ? किंतु कच्छ है कहाँ? कहाँ हो कच्छ, तुम कहाँ हो?
3: मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, आपके उधर में।
2: ओ कच्छ, मेरे भीतर? किंतु ये सब कैसे हुआ?
1: अब क्या होगा पिताजी, अब क्या होगा?
2: मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ देवा, बाहर आने का एक ही उपाय है।
1: वो क्या पिताजी?
2: मेरा उदर चीर कर बाहर आए।
1: नहीं पिताजी।
2: फिर मेरा जीवन समाप्त।
1: पिताजी नहीं।
2: एक कच्छ ही क्या, अन्य कोई भी तो मृत संजीवनी का प्रयोग नहीं जानता।
1: आपके जीवन के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। किंतु पिताजी, अगर कच्छ को कुछ हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा।
2: आज परीक्षा की घड़ी आई है देवयानी, तुम्हें कच्छ अथवा मेरा, किसी एक का जीवन चुनना पड़ेगा।
1: क्या?
2: ये भयानक घड़ी है, निर्णय की घड़ी।
1: क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है पिताजी? क्या अभी उन्हें संजीवनी विद्या नहीं सिखाई जा सकती पिताजी, ताकि बाहर आके वे अपने संजीवनी ज्ञान से आपको जीवन दान दे सके? बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए।
2: इतने वर्ष जिनकी सेवा की, उन्हीं के कारण आज मेरे और मेरे शिष्य के प्राण संकट में। निर्णय मुझे ही लेना है, शुक्राचार्य को ही लेना है। अब वो निर्णय की घड़ी आ गई है कि कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया जाए। ये विद्या कच्छ को मैं दे नहीं रहा हूं, मुझे देनी पड़ रही है। परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर दी गई हैं कि उसे देना पड़ रहा है। दैत्यराज वृषपर्वा, तुम्हारे लोगों के कारण विवश शुक्राचार्य तुम्हारे शत्रु देवताओं के वंशज को मृत संजीवनी विद्या देता है। अब मृत संजीवनी के प्रयोग पर तुम्हारा एकाधिकार समाप्त हुआ। आज के बाद कच्छ ही इसके प्रयोग का एकमात्र अधिकारी होगा, मैं भी इसका प्रयोग ना कर सकूंगा। हे कच्छ, अब तुम्हारी विद्या पूरी हुई, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूं। मेरे उदर से बाहर आकर तुम संजीवनी विद्या के प्रयोग से अपने गुरु को जीवन दान देना।
4: मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा गुरुदेव, मेरा ये जीवन सदैव आपका ऋणी रहेगा।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक स्वयं दीपा, नाटककार माधुरी सुबोध, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे ममता मलकानी, मनिल मयंक मिश्रा,

0: नितिन गुप्ता, राजीव शर्मा, हर्ष बाला खन्ना, राजेश ढींगरा, विनायक, हिम्मत सिंह नेगी और नीलम मलकानी।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर।

आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच आज नई दिल्ली में अब से थोड़ी देर में तीसरे दौर की वार्ता होगी। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्नपत्र लीक घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3

0: द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डैन और अन्य नेताओं के साथ उनकी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष की शुरुआत में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इसके शीघ्र कार्यान्वयन से रोमानिया और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। राष्ट्रपति ने रोमानिया के विकास में भारतीय पेशेवरों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों और विद्यार्थियों के बहुमूल्य योगदान की भी सराहना की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुजरात में इस मानसून में अब तक औसत वर्षा से 52% अधिक वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों में पाटन जिले के संतालपुर तालुका में सबसे अधिक 15 इंच वर्षा दर्ज की गई। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country, with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said that following the irregularities in the NEET UG examination 2026, the government handed over the investigation to the CBI and cancelled the exam. The government also announced a fresh date for a re-examination. He added that the government decided to conduct this examination in computer-based test or CBT mode from next year. Delhi police has said that it is continuously monitoring social media handles amid the ongoing protest over the NEET UG paper leak issue. Briefing media in New Delhi today, DCP Central Rohit Rajbir Singh said that Delhi police is sharing every information on fake news, AI and deep fake videos, edited clips and misleading posts through its social media handles. Mr. Singh added that this will help people differentiate between true and false information. He said that more than 400 social media handles have been identified and blocked for peddling fake news and AI-generated content. The BJP has accused the Congress of shying away from the discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Addressing media in New Delhi, BJP MP and spokesperson Sudhanshu Trivedi sought to know from leader of the

सिंह कॉलोनी सब्जी मंडी थाना सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में आप जानकारी दे सकते हैं। अगला नाम रेखा, पत्नी विजेंद्र कुमार, निवासी घुसराना गैल, थाना डिबाई, जनपद बुलंदशहर। अंतिम बार इन्हें 12 मई 2026 को मंगलवार के दिन अपने ही घर पर देखा गया था। इनकी आयु 26 वर्ष है, कद करीब 5 फुट, चेहरे की बनावट दोहरा, बदन चेहरे का रंग गेहुआ। इनके विषय में यदि आप कोई भी जानकारी रखते हो तो कृपया विजेंद्र कुमार पुत्र उदयराज सिंह निवासी ग्राम घुसराना गैल थाना डेबाई जनपद बुलंदशहर में आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9149388396। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9149388396। इसके अलावा आप विशाल प्रताप सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई बुलंदशहर में भी जानकारी दे सकते हैं। अगला नाम है राजकुमार उर्फ रैंकी, पुत्र हरिश्चंद्र, निवासी गांव सिकंदरपुर थाना सुरीर जिला मथुरा। इन्हें अंतिम बार श्रीजी पोटरी मुरारी नगर आपदा नगर खुर्जा बुलंदशहर में देखा गया था, दिनांक 20 मई 2024 को। इनकी आयु करीब 26 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच, शरीर सामान्य, रंग गेहुआ है। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया राजेश कुमार निरीक्षक कोतवाली खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर में आप जानकारी दे सकते हैं। डब्बू उर्फ देवेंद्र, पुत्र स्वर्गीय नानक, अंतिम बार इन्हें अपने गांव वीरखेड़ा चौकी क्षेत्र बिलसुरी थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में देखा गया था। अंतिम बार 8 जून 2026 सोमवार को इन्हें देखा गया था। करीब 45 वर्ष इनकी उम्र है, 5 फुट 10 इंच इनका कद है, शरीर सामान्य और चेहरे का रंग भी सामान्य है। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी मिले तो दीपक कुमार क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगला नाम है स्वाति, पिता का नाम काले, गांव चंदसीना थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर। इन्हें अंतिम बार बेड़ा अस्सा में देखा गया था 18 अप्रैल 2026 को। इनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, कद 137.16 सेंटीमीटर, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरे का रंग गेहुआ और बाल काले हैं। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी हो तो कृपया थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर में आप जानकारी दे सकते हैं। अंतिम सूचना श्री मांगेराम, इन्हें अंतिम बार 23 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे वसुंधरा रेजिडेंसी में देखा गया था। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी नई मंडी मुजफ्फरनगर में आप जानकारी दे सकते हैं। इनकी आयु 56 वर्ष है, कद 5 फुट 8 इंच और शरीर की बनावट साधारण व रंग सांवला है। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के खोए हुए व्यक्तियों की सूची। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।

अंजनी। आज के कार्यक्रम में कलाकार होंगे पुष्पा गोसाई, शिवानी गोला, राजपाला और साथी ब्रह्मपाल नगर और कुसुम गौर। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा 5:30 पर और चहल पहल आप सुनेंगे 6:10 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार आप सुन सकते हैं 6:30 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण जीवन में लोक उत्सवों का महत्व। इसके अलावा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार भी आप सुन पाएंगे। कलाकार होंगे रोशनी भारती, देवेंद्र सिंह ब्रजेश और बलराम बेसरा। कार्यक्रम कृषि जगत हम आपको सुनवाएंगे 7:05 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा टमाटर एवं मिर्च की वर्षाकालीन खेती। इसके अलावा बातचीत का विषय होगा संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की खेती। बातचीत की जाएगी डॉक्टर डी के राणा, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र उजवान नई दिल्ली से। देशभक्ति गीतों के साथ साथ योजना पर चर्चा होगी अग्री उड़ान योजना के विषय में। बाजार भाव और कल के कृषि के मौसम की जानकारी के साथ साथ आप आनंद लीजिएगा लोकगीतों का भी। गजल और कव्वाली का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और कार्यक्रम मुशायरा आप सुन सकेंगे 8:00।

रात्रि 9:30 पर प्रसारित की जाएगा अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10 बजे आप सुन पाएंगे। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 4:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: the Indian Institute of Public Administration, IIPA, New Delhi, has invited applications for the contractual post of managing editor for its prestigious quarterly publication, the Indian Journal of Public Administration. Candidates should possess a PhD in a social science discipline, preferably public administration or public policy, along with 3 years' experience in publishing and strong communication skills. The appointment is initially for 1 year, extendable annually up to 3 years based on performance. The selected candidates will receive a consolidated remuneration of 90,000 rupees per month with a provision of 10% annual increase. The last date to apply is 31st July 2026. Detailed information is available on the Institute's website, that is at www.iipa.org.in. The National Institute of Design, Madhya Pradesh, NIDMP, an institute of national importance under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, has invited offline applications for the post of Head Librarian, Resource Center on direct recruitment against a lien vacancy. Eligible candidates should submit their applications in the prescribed format by 31st July 2026. Detailed eligibility criteria, educational qualifications, experience requirements, application format and other terms and conditions are available on the Institute's website, that is at www.nidmp.ac.in. The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has invited applications for one post of Assistant Accounts Officer at its regional office, Delhi, to be filled on deputation. The post is open to eligible government officers and private candidates are not eligible. Applications in the prescribed format must reach the Director, HR, UIDAI by 27th July 2026. Detailed eligibility criteria, terms and conditions and the application procedure is available on the official UIDAI website, that is at www.uidai.gov.in. The Centre for Marine Living Resources and Ecology, an attached office of the Ministry of Earth Sciences, has invited applications for 9 temporary project-based positions to support the biodiversity beyond national jurisdiction, secretariat and the Deep Ocean Mission. The vacancies include Project Scientist 3, Consultant, Project Scientist 1, 3 posts, Executive Assistant 2, Senior Research Fellow 1, Project Associate 2, and Section Officer Consultant with consolidated monthly remunerations ranging from 28,000 plus HRA to 80,000 rupees fixed, depending on the post. Eligible candidates should apply within 15 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application procedure and interview updates are available on the official website. Kindly do refer to www.cmlre.gov.in.
1: And now we have the employment news in Hindi.
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित करता इन पदों के लिए आवेदन एसोसिएट प्रोफेसर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पुनर्वास अधिकारी, प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, सहायक लेखाकार और कार्यशाला पर्यवेक्षक सह स्टोर कीपर। इसके अतिरिक्त केवल गुवाहाटी और इम्फाल केंद्रों के लिए आवश्यकता है इन पदों को भरने की। व्यावसायिक चिकित्सक सलाहकार, प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सलाहकार, स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन, स्पेशल एजुकेटर दृष्टिबाधित सलाहकार, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तथा नर्स सलाहकार। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को हर तरह से पूरा करते हैं वे अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है जिसका पता है svnirtar.nic.in। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं recruitments.svnirtar.in। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में एस्टेट एवं सुरक्षा अधिकारी का एक पद रिक्त है। इसे भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है जबकि 7 अगस्त 2026

0: आप आवेदन की हार्ड कॉपी सभी संलग्नों सहित भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के लिए देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी की वेबसाइट www.niperguwahati.ac.in। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली इन पदों के लिए संविदागत आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विधि अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, संपदा अधिकारी और आंतरिक ऑडिटर। पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, निर्धारित आवेदन प्रारूप सहित विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.niepa.ac.in पर। किसी भी पूछताछ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं establishment@nipa.ac.in पर। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लोधी रोड, नई दिल्ली आमंत्रित करता है अवर सचिव और आशुलिपिक ग्रेड सी के पदों के लिए आवेदन। विस्तृत विवरण देखिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.presscouncil.nic.in। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, जामनगर, गुजरात आमंत्रित करता है इन शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन। पीजीटी भौतिकी एक रिक्ति, पीजीटी रसायन विज्ञान एक रिक्ति, पीजीटी जीव विज्ञान एक रिक्ति, पीजीटी अंग्रेजी एक रिक्ति अस्थाई, टीजीटी अंग्रेजी एक रिक्ति नियमित, टीजीटी हिंदी, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी गणित, कला शिक्षक, लोअर डिवीजन क्लर्क, सामान्य कर्मचारी, स्कूल चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक सह मैट्रन महिला। आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए सैनिक स्कूल बालाचाड़ी जामनगर की वेबसाइट www.ssbalachadi.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का।

0: बिल्कुल, जिस तरह के ये विचार हैं उनसे बिल्कुल जो आदमी का जो जीवन है और जिस तरह से वो जीता है, जिंदा दिली है, सब कुछ इसमें नजर आती है।
1: एब्सोल्युटली मुकेश, एंड गुलजार की आवाज़ थी, जगजीत सिंह की मेलिफ्लुअस आवाज़ थी, और वो भी यही कहते हैं ना, आदमी बुलबुला है पानी का, ये
0: जी बिल्कुल,
1: डूबता भी है उभरता भी है, एंड ये लम्हा तो है इंसान से ही ज़िंदा है, हमसे और आपसे ज़िंदा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह ये लम्हा हमसे ज़िंदा है, हम भी इस लम्हे को ज़िंदा रखें, और सिर्फ इसी लम्हे को ज़िंदा रखें, बिकॉज द फ्यूचर इज़ नॉट इन आर कंट्रोल, पास्ट हैज़ ऑलरेडी बिकम पास्ट, सो नो यूज़ वेस्टिंग टाइम ओवर द पास्ट एंड फ्रेटिंग ओवर द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स वाई एवरी डे एग्जैक्टली एट 4:30 हम लोग इस लम्हे को भरपूर जीते हैं, और अपने लिसनर्स को भी कहते हैं जीने का मौका देते हैं विद आवर शो परिक्रमा, और ये जो गुलजार की बड़ी फेमस लाइन्स हैं, आदमी बुलबुला है पानी का।

0: डूबता भी है उभरता भी है। और ये कितना मुझे आज, क्योंकि आज से एकादशी
1: आज
0: स्टार्ट
1: बिल्कुल आज जो
0: है
1: है देव शयनी एकादशी है, और आज
0: जी
1: ही के दिन भगवान विष्णु जो है वो शयन के लिए चले जाते हैं,
0: दैट्स
1: और
0: राइट
1: 4 महीने तक वो शयन करते हैं। उसके बाद जब देवोत्थानी एकादशी आती है तब वो उठते हैं।
0: जो मुकेश जी, मतलब जो मेरे कह सकते हैं मेरे जहन में कई ख्याल आते हैं,
1: जी
0: बिकॉज गॉड्स रियली यू नो डोंट नीड एनी टाइम टू रेस्ट, लेकिन ये उनका एक इशारा है हम इंसानों के लिए कि देखो कि तुम इतना काम भी करते हो लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए भी
1: रेस्ट
0: ज़रूरी है
1: जरूरी है,
0: कि ठहराव लाओ,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, उनको मेरे ख्याल से क्या ही रेस्ट की
1: जी
0: ज़रूरत, क्या ही नींद की ज़रूरत। बट इवन ही सेंड्स अ सिग्नल्स टू ऑल हिज डेविटीज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं तुम अपने आप को ना खो दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिंदगी में एक ठहराव लाओ।
1: बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम के साथ, परिक्रमा कार्यक्रम के साथ मैं हूं मुकेश कुमार, और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा। आवाज से आप लोग पहचान ही गए होंगे। आज के कार्यक्रम में हमारी नजर रहेगी क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, और उनके पास क्या जानकारी है उस पर बताएंगे अपने श्रोताओं को। इसके साथ ही खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी, और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती।
0: दैट्स राइट, सो वेल लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट मुकेश।
1: जी
0: And the biggest news coming in is that Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and has tendered his resignation to Prime Minister Modi.
1: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
0: श्री अमरनाथ यात्रा एंड श्री माता वैष्णो देवी यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर रिज्यूम आफ्टर रिमेनिंग सस्पेंडेड फॉर 6 डेज ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर।
1: सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत जारी।
0: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डेजिग्नेट्स 4 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पेपर लीक एंड रिलेटेड इरेगुलरिटीज।
1: भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची।
0: And in men's cricket, India to take on host Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And as we had mentioned even in our intro that Dev Shaini Ekadashi is going to start. So our topic for Dateline India, the segment that throws open the show Parikrama, Mukesh, aaj hamara topic bhi Dev Shaini Ekadashi hai.
1: बिल्कुल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर वर्ष 4 महीने तक कई हिंदू परिवार विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे बड़े समारोहों से बचती हैं? इतने सारे लोग शुभ तारीख तय करने से पहले इंतजार क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? इसका जवाब एक पवित्र दिन से शुरू होता है जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं।
0: That's right, Mukesh. Observed on the Ekadashi of the Shukla Paksh in the month of Ashad, this year Dev Shaini Ekadashi falls on 25th of July. It comes soon after the famous Jagannath Rath Yatra and marks the beginning of Chaturmas, which is a spiritually significant 4-month period in the Hindu calendar.
1: सोचिए, महीने तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार आराम करने, सोचने समझने और नई ऊर्जा पाने के लिए एक जरूरी विश्राम लेना आवश्यक है। हम सभी को ऐसे विश्राम की आवश्यकता होती है ना? हिंदू परिवार इसी बात को प्रतीकों के जरिए बहुत खूबसूरती से सिखाती है।
0: Yes, the custom believes that on Devshayani Ekadashi, Lord Vishnu enters Yog Nidra, a divine cosmic sleep resting on the sacred Shir Sagar or the ocean of milk. 4 months later, he awakens on Prabhodini Ekadashi, bringing this sacred period to an end. That is why this Ekadashi is also lovingly known as Harishayani Ekadashi, Ashadi Ekadashi and Padma Ekadashi in different parts of India.
1: और सारा अलग अलग इलाके, अलग अलग नाम, लेकिन भक्ति, धैर्य और आंतरिक बदलाव का एक ही सुंदर संदेश। और यही बात भारत की सांस्कृतिक विरासत को इतना खास बनाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भले ही परंपराएं अलग दिखें, भाषाएं बदल जाएं और रीत रिवाज अलग अलग हों, लेकिन आस्था की भावना लाखों लोगों को खूबसूरती से आपस में जोड़ती है।
0: Well, Chaturmas literally means 4 months, and these 4 months are not seen as a pause in life. They are seen as an opportunity to grow within. In our busy lives, we are constantly chasing deadlines and promotions and marks and targets and achievements. But how often do we pause and ask ourselves, am I becoming a better human, a better person? That is exactly the spirit Chaturmas encourages.
1: बिल्कुल, सिर्फ उत्सव मनाने के बजाय यह

0: आत्म अनुशासन, प्रार्थना, ध्यान, दान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए प्रेरित करता है।
1: And this is one of the reasons, Mukesh, why, as we mentioned earlier, that many families traditionally avoid weddings and certain other auspicious ceremonies during these months. Rather than beginning something new externally, the focus shifts inwards, strengthening ourselves internally.
0: और इस दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। उन्हें तुलसी के पत्ते, पंचामृत, फल, सूखे मेवे और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और कई श्रद्धालु शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और बहुत से लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं और आरती करते हैं, साथ ही शांति, समृद्धि और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: एंड देन ऑफ कोर्स कम्स अनदर ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, दैट इज चैरिटी। Because devotion is considered complete only when compassion accompanies it. Some donate food grains, others offer clothes or daily essentials. Even a small act of kindness performed with sincerity is believed to carry immense spiritual value. I think कोई भी मजहब हो उसमें सबसे ज्यादा emphasis इसीलिए जो है दान को दिया जाता है
0: जी।
1: Because that you enrich yourself, you are not giving to someone else but you are giving your soul a lot in that transaction, you can say. Even a small act of kindness like smile जिसे कहा जाता है, even a smile from your heartfelt smile towards your neighbor, towards your friend, that is charity.
0: बिल्कुल। और इस दिन से जुड़ी एक और दिलचस्प परंपरा व्रत रखना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवार बस अनाज और दाल नहीं खाते, वहीं कुछ लोग पूरे दिन कड़ा व्रत रखते हैं और अगले दिन तय पारण के समय व्रत खोलते हैं। रीति रिवाज भले ही अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्मनियंत्रण और भक्तिभाव को बढ़ाना।
1: That's right, Mukesh. And if you just think very rationally and logically also, because this is the time of the year जब हमारे मुल्क में खासतौर से मॉनसून चरम सीमा पे हैं, जर्म्स एंड इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड खाएंगे या बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, सो यू हैव मोर चांसेस ऑफ कैचिंग दोज इलनेसेस। सो कोई भी मतलब साइंटिफिक बात अगर हम समझाएंगे तो लोगों की नहीं समझ आएगी, बट अगर हम लोग वही यू नो भगवान की आस्था में कह के कहेंगे तभी लोगों की समझ में आती। सो दिस इज द टाइम टू प्रॉब्ली यू नो ईट लेस एंड हैव सम मॉडरेशन इन योर लाइफ।
0: कई चीजें वर्जित होती हैं इस जो चातुर्मास का समय है, चार महीने का समय है, इसमें कई चीजें वर्जित होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए और शायद वो इस जो मौसम में जो कमियां होती हैं या अच्छाइयां होती हैं उसके अनुसार हमारा शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है।
1: दैट्स वेरी राइट मुकेश। एंड वेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर दिस ईयर द एकादशी तिथि बिगिन्स एट 2:44 AM ऑन 25th July एंड कंक्लूड्स एट 12:14 AM ऑन 26th July। Ancient scriptures such as the Bhavish Puran and Padma Puran describe this sacred period as the time when Lord Vishnu enters divine rest, reminding devotees that life isn't only about constant action, it is also about reflection, balance and renewal.
0: और इसी से जुड़ी एक कथा भी है कि भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो दुनिया को कौन चलाता है। दुनिया को चलाने के लिए ये जिम्मेदारी दूसरे देवताओं पर दे दी जाती है। जैसे सावन के महीने में शंकर भगवान को देते हैं, उनकी पूजा होती है, वो संभालते हैं। उसके बाद फिर आपका गणेश चतुर्थी आती है तो भगवान गणेश उस समय अपना पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर देवी दुर्गा आ जाती हैं, नवरात आते हैं, इस तरह से विभिन्न जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो शायद यही वो शाश्वत ज्ञान है जो देवशयनी एकादशी में छिपा है। कभी कभी सबसे बड़ी प्रगति हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। इसलिए चाहे आप व्रत रखें, प्रार्थना करें, दान पुण्य करें या बस कुछ पल कृतज्ञता और आत्मचिंतन में बिताएं, देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति की शुरुआत आंतरिक शांति से होती है।
1: And maybe that's one of the most beautiful gifts India's ancient traditions continue to offer the modern world. And now, हम लोग ने एकादशी की तो बात कर ली मुकेश। Today, apart from the spiritual significance of देवशयनी एकादशी, the world is also observing four important international observances that highlight health, justice, equality and human dignity. The first is the International Day for Judicial Well-being, which is observed to recognize that mental health and well-being of judges is essential for a fair, impartial and effective judiciary.
0: बिल्कुल सायरा, न्यायिक अधिकारी अक्सर बहुत अधिक दबाव में काम करते हैं क्योंकि उन्हें जटिल मामलों को सुलझाना होता है और ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यह दिन काम की बेहतर जगह बनाने और भावनात्मक सेहत को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है ताकि ईमानदारी और सहानुभूति के साथ न्याय किया जा सके।
1: दैट्स यू नो सम ऑफ माय लॉयर फ्रेंड्स एक्चुअली जोक है कि हम लोग अपनी जैसे क्लाइंट्स की हियरिंग होती ना तो कुछ लोग बहुत से लोग

0: शिद्दत से भगवान से दुआ कर रहे होते हैं, तो मेरे लॉयर फ्रेंड्स कहते हैं भगवान से दुआ सबसे ज्यादा ये करो कि जज का मूड सही हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट
1: बहुत
0: यू नो द
1: जरूरी होता है
0: पर्सन हु इज गोइंग टू
1: कुछ भी
0: गिव द
1: निर्णय लेने के
0: जजमेंट.
1: लिए
0: यस
1: आपका मनोभाव बहुत जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, बिकॉज इवेंचुअली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स
1: जी
0: बट हु कम विद अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट बताया, दे कैन एक्चुअली चेंज लाइव विद द जजमेंट.
1: बिल्कुल
0: सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यू नो मेंटल हेल्थ एंड द वेल बींग ऑफ द जजेस इज ऑल्सो ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. And well, today is also World Drowning Prevention Day, which is observed every year on this day, that is 25th of July, following a United Nations resolution. Well, drowning claims hundreds and thousands of lives, every year, with children and young people among the most vulnerable.
1: बिल्कुल, ये दिन तैरना सीखने, पानी के आसपास बड़ों की देखरेख सुनिश्चित करने, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने और समुदाय आधारित जल सुरक्षा पहलों को मजबूत करने जैसे आसान लेकिन जान बचाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
0: And well, another important observance is World Embryologist Day, which is also known as World IVF Day, marking the birth of the world's first IVF baby, Louise Brown, on 25th July 1978. The day celebrates the remarkable advancements in assisted reproductive technology and honors embryologists, fertility specialists, and healthcare professionals whose work has brought hope and the joy of parenthood to millions of families across the world.
1: और अंत में, आज अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के अमूल्य योगदान, नेतृत्व और उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ उनके साथ होने वाले भेदभाव और असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है।
0: Well, the day promotes inclusion, equal opportunities and protection of their rights while celebrating the rich cultural heritage and resilience they bring to societies across the globe.
1: और ये सभी आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए न केवल वैज्ञानिक प्रगति और मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता है, बल्कि सुरक्षित समुदायों, ज्यादा समानता और सभी के लिए मानवीय गरिमा के प्रति लगातार प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है। आकाशवाणी के FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा के साथ। और कार्यक्रम में वक्त हुआ है क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले ओडिशा चलें।
0: यस एब्सोल्युटली मुकेश, बिकॉज द सेक्रेट सिटी ऑफ पुरी इन ओडिशा इज सेट टू विटनेस वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट रिचुअल्स ऑफ द एनुअल रथ यात्रा दिस इवनिंग एज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड देवी सुभद्रा विल बी अडॉर्न्ड इन द रिस्प्लेंडेंट शोनाबेश or the golden attire. Lakhs of devotees from across the country and abroad are expected to gather along the grand road to behold the celestial splendor of the sibling deities. Our correspondent reports on the elaborate preparations for this grand spiritual spectacle.
2: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Sunabesa or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the sibling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials, symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: और उड़ीसा से अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख के द्रास में आज 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर दो दिन के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में पाकिस्तान पर देश की जीत की याद में मनाया जाता है।
0: That's right, and a war commemoration event was also organized at Lamuchen Viewpoint to pay tribute to the soldiers who made the supreme sacrifice during the 1999 Kargil War. The event featured a documentary on Operation Vijay, tributes to brave soldiers, interactions with the families of the martyrs, and sharing of experiences by war veterans.
1: और आज करगिल युद्ध स्मारक पर विजय भोज और शौर्य संध्या समारोह का आयोजन होगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस के मुख्य कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे और युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: The Kargil War Memorial at Dras is wearing a festive yet solemn look as preparations

0: for state visit to Romania, the president said that Indians living abroad continue to remain deeply connected to their motherland and make every Indian proud through their achievements and dedication.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि रोमानिया के राष्ट्रपति निकिशोर डैन और अन्य नेताओं के साथ उनकी बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मजबूत प्रतिबद्धता झलकती है। उन्होंने बताया कि भारत और रोमानिया के बीच सहयोग का दायरा कई क्षेत्रों में बढ़ा है, जिनमें व्यापार, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं।
0: And well, the president appreciated the valuable contribution of Indian professionals, entrepreneurs, researchers, healthcare workers and students to Romania's development. She also thanked the government and the people of Romania for warmly welcoming the Indian community and ensuring their safety and well-being.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो स्क्वैश की अगर हम भारत करें तो भारत की अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा की ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामी को 3-1 से हराया। फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं।
0: And well, in men's cricket, India will take on host Zimbabwe in the second T20 international of the three-match series at Harare. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. And India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after para-athlete Jhandu Kumar clinched the bronze in the men's heavyweight para-powerlifting.
1: और अब हम याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरीश मिश्र को। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां तथा जीवन चरित्र आदि लिखे हैं। भारतीय साहित्य अकादमी ने उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया था। गोदावरीश मिश्र जी ने 1941 में उड़ीसा के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का पद भी संभाला था। देश सेवा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने की भावना गोदावरीश मिश्र के अंदर आरंभ से ही थी। बहुत सी रूढ़ियों का पालन न करने के कारण सामाजिक बहिष्कार की भी उन्होंने परवाह नहीं की और उनके सामने अध्ययन के लिए इंग्लैंड और अमेरिका जाने का अवसर आया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
0: That's right, Mukesh, and we are also remembering Edward James Corbett, or jinko hum log jante hain Jim Corbett ke naam se. It's his birth anniversary. We all know that he was an Anglo-Indian hunter and author. He gained fame through hunting and killing several man-eating tigers and leopards in northern India. And as detailed in his best-selling 1944 memoir, The Man-Eaters of Kumaon. In his later years, he became an outspoken advocate of the nascent conservation movement. And born in Nainital, Corbett explored and hunted in the jungles of India in childhood. He shot his first man-eater in 1907 and continued to hunt and kill such animals over the next four decades who had become man-eaters.
1: और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक बाबूराम इशारा की। उन्होंने एक लंबा संघर्षशील जीवन जिया। वे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किसी पहाड़ी गांव के रहने वाले थे। किशोर उम्र में ही भागकर वो मुंबई आ गए थे और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में चाय देने का भी काम किया था। और उन्होंने एक फिल्म निर्देशित की थी जिसका नाम है नजर, एक नज़र। उस फिल्म का हम अपने श्रोताओं को डायलॉग सुनवाते हैं।
2: आवाज और सूरत का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें तो किसी हरे पत्ते के सीने पर होना चाहिए था शबनम। कहां तुम कमल बनकर इस कीचड़ में आ गई?
3: अगर मानते हैं मैं कमल हूं तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए।
2: कमल हमेशा कीचड़ में नहीं रहता शबनम। तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस कीचड़ से निकालेगा, मैं नहीं तो कोई और से।
3: मैं कीचड़ में रहूं या गंगा जल में, एक बात याद रखिएगा, मैं शबनम हूं। आकाश से गिरी हूं, आकाश में ही लीन हो जाऊंगी।
2: आकाश तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेगा।
1: और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म जो एक नजर है, इसका एक गाना भी हमने आपके लिए निकाला है, उसे भी सुनवाते हैं।

और ये जो गाना था वो चेतना फिल्म का था, बी आर इशारा ने उसको निर्देशित किया था। एक और फिल्म आई थी उसका भी हम अपने श्रोताओं को गाना सुनाते हैं।

तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति

आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि

0: विवाद स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi today. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying it is not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said that following the irregularities in the NEET UG examination 2026, the government handed over the investigation to the CBI and cancelled the exam. The government also announced a fresh date for a re-examination. He added that the government decided to conduct the examination in computer-based test CBT mode from next year. The BJP has accused the Congress of shying away from the discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Addressing media in New Delhi, BJP MP and spokesperson Sudhanshu Trivedi sought to know from leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, whether his party will take part in the discussion on the issue when the proceedings of the House resume on Monday. He alleged that there are some elements whose only intention is to take political mileage and not to address students' concerns. The third round of discussions between the government and CJP delegation is underway in New Delhi. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh are holding discussion with the delegation, focusing on CJP's demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat Metro stations are now open. President Draupadi Murmu has lauded the contribution of the Indian community in Romania, describing them as a vital pillar of the growing partnership between the two countries. Addressing a reception hosted for the Indian community in Bucharest on the concluding day of her state visit to Romania, the president said that Indians living abroad continue to remain deeply connected to their motherland and make every Indian proud through their achievements and dedication.
2: भारत।

0: मान्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow at 11 a.m. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the news on AIR mobile app. The ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. Culture and Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat has called it a defining moment for India's cultural heritage. In a social media post, Mr. Shekhawat said that Sarnath is a timeless beacon of peace, wisdom and compassion. In men's cricket, India was 74 for 2 in 8.2 overs against hosts Zimbabwe in the second T20 international in Harare when reports last came in. Zimbabwe have won the toss and opted to field first. Fast bowler Yash Thakur has made his debut. After replacing Ashok Sharma in the Indian squad, Zimbabwe have kept their squad unchanged. Shreyas Iyer led the men in blue will look to seal the series as they already lead with 1-0. And with that, we end this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शिवानी गोला से ये लोकगीत। और आइए एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं, कलाकार हैं राजबाला और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजबाला और उनके साथियों से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं ब्रह्मपाल नागर और कुसुम गौड़।

ब्रह्मपाल नागर और कुसुम गौर द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका मनभावन कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। दोस्तों, आज की शुरुआत एक खुशखबरी से, और वो खुशखबरी यह है कि ग्लासगो में चल रही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में अपना खाता खोल दिया है। और ये जो शानदार प्रदर्शन है, ये किया है भारतीय पैरा पावर लिफ्टर जंडू कुमार ने, जिन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया है। देश का पहला पदक है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके अलावा भी शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी रिंग से लेकर लॉन बॉल के मैदान तक भारतीय खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज शुरुआत हुई है पदकों की, और उसके बाद अब जो मुकाबले होंगे वहाँ भारतीय खिलाड़ी पदक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार जिस तरह तैयारी है, जिस तरह जज्बा है और जिस तरह प्रोत्साहन मिला है, तो निश्चित रूप से हालांकि स्पर्धाएं कम हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का दमखम वही है, जोश वही है और कौशल वही दिखाना है जो अब तक हम शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। बहरहाल, इसके अलावा भी बात होगी, और बात होगी क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरा T20 मुकाबला है। पहला भारत जीत चुका है 7 विकेट से। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट है, वहाँ जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी पर उतारा है। भारत ने 13वें ओवर में अभी 3 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। लेटेस्ट अपडेट भी देंगे और इसके अलावा भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात इसके अलावा शूटिंग की होगी, जहाँ भारत की दो निशानेबाज सोनम और एलावेलिन ने फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन वो पोडियम फिनिश कर नहीं सकी। लेकिन अगर स्क्वैश की बात करेंगे तो वहाँ अनहत ने शानदार प्रदर्शन किया है, और कनाडा के ओंटारियो में चल रही विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के वो फाइनल में पहुँच गई हैं। अगर वो खिताब जीतने में सफल रहती हैं तो ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बनेंगी। इसके अलावा भी चर्चा होगी अन्य खेलों पर, जिसमें हॉकी शामिल है, UTT शामिल है। इसके अलावा भी अन्य खबरों पर हम आपसे बात करेंगे। तो पहले चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ओर, जहां भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस पर भी हम आपको ताज़ा अपडेट भी देंगे। तो पहले पेश है ये रिपोर्ट।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स,
0: मंजिलें उनको

0: मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने देश की झोली में पहला पदक डाल दिया है। इस पदक से भारतीय उम्मीदों को नई परवाज मिली है। बुलंद हौसलों के साथ अन्य स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुक्केबाजी के रिंग से लेकर लॉन बॉल्स के मैदान तक भारतीयों के दमखम की धमक गूंजने लगी है। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में रहने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार बचपन में पोलियो ग्रस्त हो गए। उनके सामने सिर्फ शारीरिक ही नहीं आर्थिक चुनौतियां भी थी, लेकिन मुश्किलें लाख हों पर बुलंद हौसलों के आगे कहां टिकती हैं। झंडू कुमार ने 2017 में पैरा एथलीट के रूप में कैरियर शुरू किया और उसके बाद जिम में ट्रेनिंग के दौरान पावर लिफ्टिंग की ओर रुझान बढ़ गया। पैरालंपिक पदक विजेता कोच राजेंद्र सिंह रहलू ने उनकी प्रतिभा को निखारा। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी झंडू कुमार ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता का एक नया अध्याय लिख दिया। झंडू कुमार ने कांस्य पदक दिलाया। उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाया। पहले दो प्रयासों में 181 और 190 की लिफ्ट की, जबकि तीसरे प्रयास में 196 किलो नहीं उठा सके, लेकिन 190 किलोग्राम का वजन उन्हें कांस्य पदक दिलाने में सफल रहा। ग्लासगो रवानगी से पहले ही झंडू कुमार अपने पदक जीतने को लेकर आश्वस्त थे। उन्होंने दल की रवानगी से पूर्व आकाशवाणी से बातचीत में कहा था,
1: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
2: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने
1: सर देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210 220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है। वहाँ
0: झंडू के कोच राजेंद्र राहुल भी अपने शिष्य की सफलता को लेकर काफी आशावान थे और झंडू कुमार ने उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाया।
3: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। ये बहुत बड़ा दल जा रहा है, इस बार पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: हालांकि बर्मिंगम में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सुधीर अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। पुरुष हैवीवेट वर्ग में सुधीर ने पहले प्रयास में 208 किलो वजन उठाया, लेकिन फिर 211 किलोग्राम वजन उठाने के प्रयास में विफल रहे। उसके बाद उनकी और वजन उठाने की कोशिश भी नाकाम रही और वे चौथे स्थान पर रहकर पदक से वंचित हो गए। पुरुष पैरा लाइटवेट पावर लिफ्टिंग में अशोक कुमार मलिक ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन चौथे स्थान पर पिछड़ गए। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 200 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन 205 किलोग्राम का तीसरा प्रयास विफल रहा। उनका कुल स्कोर 143.8 रहा। परमजीत ने 176 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन 189 किलोग्राम उठाने में विफल रहे। वे 135.6 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहे। स्पर्धा का स्वर्ण इंग्लैंड की मार्क स्वान ने 222 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। उन्होंने नाइजीरिया के रॉलैंड को पछाड़ा, जिनके नाम रजत पदक रहा। पावरलिफ्टिंग महिला लाइटवेट में जसप्रीत कौर छठे स्थान पर रही। उन्होंने 112 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। उनका कुल स्कोर 96.4 अंक रहा। सुमन देवी ने 103 किलोग्राम का सफल प्रयास किया, 88.4 के कुल स्कोर से सातवें स्थान पर रही। स्वर्ण पदक नाइजीरिया की एस्तर ने जीता। महिला हैवीवेट पावरलिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 100 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन पदक की दौड़ से बाहर रहीं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जाजरिया को उम्मीद है इस बार भारत के पैरा एथलीट नया इतिहास रचने में सफल रहेंगे।
4: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है और मैं हर एथलीट को जानता हूँ, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
0: लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। भारत की रूपारानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को सीधे सेटों में 6-4 7-5 से पराजित किया। भारतीय जोड़ी की ये लगातार दूसरी जीत रही और अब सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। पुरुष वर्ग में पुतुल सोनोवाल ने फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर को 21-6 से हराकर 15 अंकों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। इससे पूर्व उन्होंने अपने पहले मुकाबले में कनाडा के विश्व चैंपियन रायन बेस्टर को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उनके नॉकआउट चरण में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। पैरा तैराकी की S13 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट 1 में रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुद्धिगना तीसरे स्थान पर रहे। उनके साथ अली इमाम भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। फाइनल में हालांकि वे पोडियम फिनिश नहीं कर सके। रवि वीरा वेंकट पांचवें स्थान पर रहे जबकि अली इमाम ने आठवां स्थान प्राप्त किया। बेशक रवि और अली इमाम पदक जीतने में

0: विफल रहे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने का वादा निभाया। अली इमाम ने रवानगी से पहले कहा था,
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या उम्मीद कर रहे हैं?
2: मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा ये पहली बार है कोई बड़े कॉम्पिटिशन में खेल रहा हूँ, आई विल गिव माई बेस्ट।
0: पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने 25.52 के समय के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन सेमीफाइनल में 25.47 सेकंड के साथ वे 11 स्थान पर पिछड़ने के बाद शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सके और फाइनल में पहुंचने से चूक गए। कुल मिलाकर 3 भारतीय तैराकों ने फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी वो स्पर्धा है जहां भारतीय खिलाड़ियों से पंच कदम दिखाने की बड़ी उम्मीदें हैं। महिला वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है, बस पदक का रंग तय होना है। पुरुष वर्ग की बात करें तो जादूमणि सिंह मांडेग बाम ने बैंटम वेट यानी 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान स्कॉटलैंड के ऑरन कलन को एक तरफा 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड से ही जादूमणि ने तेज फुटवर्क और राइट और लेफ्ट हुक से जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने पूरे मुकाबले में दूरी बनाकर मजबूत रक्षण भी कर दिखाया और बीच बीच में काउंटर अटैक किए। इस जीत से जादूमणि प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं और अब उनका मुकाबला पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा। कलात्मक जिम्नास्टिक में पुरुष टीम और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भारतीय जिम्नास्टों ने हिस्सा लिया। पुरुष टीम में तपेश्वर नाथ, तपन मोहंती, योगेश्वर सिंह और स्वास्तिक केपी शामिल थे। तपेश्वर नाथ ने फ्लोर एक्सरसाइज में अच्छा स्कोर बनाया, वहीं योगेश्वर ने वॉल्ट और स्वास्तिक ने पैरेलल बार्स में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यह पदक के लिए नाकाफी था। कनाडा ने स्वर्ण, इंग्लैंड ने रजत और ऑस्ट्रेलिया ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने कुल 208.55 अंक बनाए, जबकि कनाडा 241.40 के साथ टॉप पर रहा। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने रवानगी से पूर्व हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी से खास बातचीत की थी, और वो देखने में आ रहा है जिस तरह झंडू ने प्रदर्शन किया, झंडू कुमार का प्रदर्शन शानदार रहा, कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा जी जो खिलाड़ी अपनी तैयारियों और जिन्हें अपना यकीन था वो शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं, और उम्मीद है यही प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में रहेगा और भारत का पदक तालिका में स्थान और मजबूत होगा। फिलहाल भारत 9वें स्थान पर चल रहा है और पदक तालिका की स्थिति अगर आपको बता दें तो ऑस्ट्रेलिया 6 गोल्ड 2 रजत और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 13 पदक लेकर टॉप पर चल रहा है। इसके अलावा नाइजीरिया 3 गोल्ड 3 सिल्वर और के साथ 6 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि स्कॉटलैंड 2 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ 4 पदक लेकर तीसरे स्थान पर चल रहा है। इंग्लैंड 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान पर है। तो अभी भारतीय झोली में और पदक आने हैं। बहरहाल जो ताज़ा अपडेट है प्रवीण क्यों ना उससे अवगत करा दें। लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की भारतीय महिला जोड़ी ने टोंगा की पेरिस बेकर और मिल्का नाथन के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल की है और यह है भारतीय महिला जोड़ी की लगातार तीसरी जीत है। और मुक्केबाजी की अगर बात करें तो भारत के सचिन सिवाच ने 60 भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है और वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। सचिन ने 60 भार वर्ग में जो कनाडा के मुक्केबाज थे क्योमो अल अहमदी को, उनको 4-1 से पराजित किया। अब उनकी टक्कर इंग्लैंड के विल हैबिट के साथ होगी। इसके अलावा अरुंधति चौधरी, प्रवीण हुड्डा भी आज रिंग में उतरेंगे और जैसे ही अपडेट हमको मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल में भी मीनाक्षी रीना और लक्ष्मी पुलबू के ग्रुप चरण में वेल्स की टीम के सामने हैं। अगर अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके अलावा रात 7:30 बजे पुतुल सोनीवाल, जो कि भारत के लॉन बॉल्स खिलाड़ी हैं, पिछली बार बर्मिंगम में लॉन बॉल्स ने भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और वही सिलसिला अभी जारी होता नजर आ रहा है। महिला जोड़ी अच्छा कर रही है। पुतुल सोनीवाल भी अगले मुकाबले में मलेशिया के इजाजत शमीर के सामने होंगे और वो 2 मुकाबले जीत चुके हैं, जिसमें पहले ही मुकाबले में उन्होंने विश्व चैंपियन को हराया जैसा हमने अभी जिक्र किया था। तो इसके अलावा रात 8:15 कलात्मक जिम्नास्टिक में महिला टीम स्पर्धा में पदक दिलाने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। इसके अलावा भारतीय टीम की अगर बात करें तो इसमें प्रगति नायक है, निशिका अग्रवाल हैं, प्रोतिष्ठा सामंता हैं और रशिता रेवाले हैं। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन भी हो गए जहां प्रगति नायक से एक अच्छी उम्मीद की जा रही है। रात 11:37 पुरुषों की 400 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी होगी और यहाँ भारत की दक्षिण कुमार, शशि कुमार और इसके अलावा आर्यन नेहरा उतरेंगे और अगर वो अब हीट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फाइनल में भी पहुंचेंगे। फाइनल 11:30 होगा। इसके अलावा कल अगर रविवार की अगर बात करें तो ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की झोली में एक और पदक आ सकता है और ये उम्मीद की जा रही है। भारत की

स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू से जो कि 49 बार किलो वर्ग में उतरेंगी। पिछली बार बर्मिंगम में हुए खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 3 पदक हैं। इस बार वह उनमें और इजाफा कर सकती हैं। इसके अलावा 60 किलो पुरुष वर्ग में ऋषिकांता और एमराजा उतरेंगे। मुक्केबाजी की बात करें, जिस तरह मुक्केबाजों ने शानदार शुरुआत की है और अपने पंच का दम दिखाया है, मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया, जादूमणि भी अपना अगला मुकाबला खेलने उतरेंगे। इसके अलावा कपिल पोखरिया और नरेंद्र बरवाल भी रिंग में नजर आएंगे पंच चलाते। इसके अलावा एथलेटिक्स में बात करें तो सर्वेश कुचारे ऊंचे कूद स्पर्धा में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इसी तरह 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस फिर से भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। पैरा एथलीटों में राकेश भाई भट्ट और श्रेयान त्रिवेदी T37, T38 100 मीटर रेस में अपनी रफ्तार दिखाएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी से, जो लगातार इस पर अपना एक शानदार जो भारतीय प्रदर्शन है उस पर आपको अवगत करा रही है।

0: और बात अब क्रिकेट की करते हैं तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है वहाँ अभी बात करें तो 13वें ओवर में जैसा हमने बताया 3 विकेट पर 113 रन बना चुकी थी भारतीय टीम। वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन बनाए हैं 9 गेंदों पर जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। अभिषेक शर्मा ने 8 रन का ही योगदान दिया और मुजर बजानी ने उन्हें आउट किया, कॉट करवाया। इसके अलावा ईशान किशन अभी खेल रहे हैं 50 रन बनाकर, जबकि श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान हैं वो 25 रन का ही योगदान दे पाए। इसके अलावा तिलक वर्मा हैं ईशान किशन के साथ क्रीज पर, उन्होंने 8 रन बनाए हैं। तो अभी भारतीय टीम कोशिश करेगी कि एक बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहे और एक चुनौती दे मेजबान टीम को, क्योंकि मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुना है। और अभी लेटेस्ट अगर बताएं तो 16वें ओवर में 3 विकेट पर 168 रन भारतीय टीम बना चुकी है। बहरहाल जो मुकाबला है ये सीरीज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय टीम के पास एक मौका है। जिस तरह आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ T20 में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और आयरलैंड से हम 2 मैच आ गए थे हारे थे, इंग्लैंड से फिर 4 मैच आ गए। 3 बार के T20 विश्व कप विजेता भारत ने जो पहले मैच में जिम्बाब्वे को जो 7 विकेट से हराया था, 1-0 की बढ़त ली थी, वो विश्व कप के बाद भारत के लिए एक एक जीत थी पहली। और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में 50 रन की पारी खेली थी, जबकि मयंक यादव 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे थे। और पहले मुकाबले के बाद मयंक यादव ने क्या कहा था, आइए जानते हैं।
1: About Zimbabwe, that there is a good help for the fast bowler in the wicket. So this is the first time I'm playing in Zimbabwe in Harare. So yeah, it's a great feeling. And when I was bowling there, and I was getting a lot of help from the wicket, and I think that helped a lot in the team for the team. Yeah, it feels great, especially like now after the first game we had a good result, and going into the second T20, obviously like it will be. I will take as a challenge again to come again and perform again for the team and to help the team to win again. नहीं सर, वैसा तो कोई कॉन्वर्जेशन नहीं था टीम में किसी भी प्लेयर के थ्रू। एक लाइक हर दिन एक नया चैलेंज ही है हम सब के लिए। सो बस वही हमारी बात हुई कोचेज एंड कैप्टन के साथ भी कि लाइक ये सीरीज़ एक नया सीरीज़ है एंड उसको उसकी तरह ही लेंगे। एंड कोई भी टीम छोटा बड़ा नहीं होता, विल टेक एज अ प्रॉपर चैलेंज। सर मुश्किल तो बहुत रहा एंड स्पेशली लाइक 2 साल का जो ये लंबा गैप था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए एज अ पर्सनल पर्सन, बिकॉज मेन थिंग जो है एज मेरे साइड पे नहीं था उस समय। मैं सिर्फ लाइक 22-23 साल का था। सो वो एक चीज़ हमेशा मुझे लाइक इफ़ेक्ट करती थी कि लाइक इतने कम एज में मुझे इतना सारा देखना पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कंट्री के खेलने के लिए जो मोटिवेशन है वो आई थिंक वो हर प्लेयर के बचपन से ही होता है। सो वो एक मोटिवेशन मेरे लिए थी कि लाइक वापस मैं कंट्री के लिए आऊँ एंड वापस जैसे परफॉर्म मैंने करा वैसे करूँ। पेस को लेके तो बात नहीं होती ज़्यादा, लेकिन बॉन्ड बहुत अच्छा है हमारा आपस में। हम जरूर शेयर करते हैं कि लाइक अगर जो भी जैसे मैंने पहला ओवर डाला मुझे जो हेल्प मिल रही थी मैंने वो डेफिनेटली अशोक के साथ शेयर करा एंड प्रिंस के साथ भी शेयर करा कि हम क्या बेटर ऑप्शन है, क्या अच्छा ऑप्शन रहेगा।

0: करने का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंडीशन में थे पहले 6 ओवर के बाद. और कितना स्क्वीज़ कर सकते हैं और क्या क्या हम बॉल डाल सकते हैं. वो एक अच्छा बातचीत रहती है हमेशा आपस में. इससे पहले मेरी इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब वो कैप्टनसी कर रहे थे मैच के बीच में, वो मुझे ऐसा लगा कि लाइक बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया बॉलर्स पे सारे. एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि लाइक जो मैं डालना चाहता था वो उन्होंने उसको बैक करा उस चीज़ को. या जब उन्होंने कोई एडवाइस दी तो मुझे वो एक वेरी कॉन्फिडेंट लगा कि लाइक मैं वो बैक कर सकता हूँ या वो एक अच्छा ऑप्शन है उस टाइम पे. मुझे बहुत फ्री लगा उनके साथ खेलने में. पहली बार उनकी कैप्टनसी में खेल रहा हूँ, मैंने आज तक बस देखा ही था उनको टीवी पे या दूसरी टीम के साथ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी कैप्टनसी में खेलने.
1: जी हाँ, अब मयंक यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था पहले मुकाबले में, और अब भारतीय टीम अगर जो चुनौती देती है, जितना बड़ा स्कोर करती है, ये देखना होगा। और उसके बाद एक बार फिर से उनकी एक भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी भारतीय गेंदबाजों की, और जिम्बाब्वे को लक्ष्य से पहले रोकने की, और उनको जो लक्ष्य देगी भारतीय टीम उससे पहले रोकने की। बहरहाल, क्या और बताना चाहेंगे प्रवीण? 2027 का आईसीसी ने शेड्यूल भी जारी किया है, काफ़ी पैक्ड है, और भारतीय तो आईपीएल का मज़ा लेते ही हैं। इसके अलावा जी इंटरनेशनल मुकाबले हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है और पेश है। प्रवीण, क्या ये इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे आप?
0: अबाउट जिम्बाब्वे दैट
2: क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है साल 2027, क्योंकि आईसीसी ने अपना क्रिकेट का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसकी शुरुआत होगी जनवरी 2027 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी से, जो कि खेली जाएगी भारत के अंदर. इसके अंदर खेले जाएंगे 5 टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि शुरू होगी 21 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक, जिसमें पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा 21 से 25 जनवरी के बीच नागपुर के अंदर, दूसरा टेस्ट मैच 29 से 2 फरवरी चेन्नई, तीसरा 11 फरवरी से 15 फरवरी गुवाहाटी, चौथा 19 फरवरी से 23 फरवरी रांची, और आखिरी और अंतिम टेस्ट मैच 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक खेला जाएगा अहमदाबाद में. ये सीरीज़ भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से काफ़ी रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही क्रिकेट के अंदर और टेस्ट मैच के अंदर एक अच्छा खासा दबदबा रख. वाकई ये सीरीज़ देखने के बाद क्रिकेट फैंस को मज़ा आ जाएगा कि इतनी रोमांचककारी हो रही है. और उसके बाद एक और तड़का लगेगा आईपीएल का, जो खेला जाएगा 14 मार्च से लेकर 25 मई के बीच. मैच टूर्नामेंट के अंदर जो है वो 74 मैच खेले जाएंगे, जिसका आयोजन जो है वो बीसीसीआई करेगा. इसके बाद खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो होगा 9 जून से लेके 13 जून 2027 में, जो खेला जाएगा एट द ओवल ग्राउंड लंदन में. आईसीसी के कैलेंडर में जो अगला टूर्नामेंट है वो है एशिया कप 2027, जो कि खेला जाएगा 18 जून से लेकर 4 जुलाई 2027 तक. इस टूर्नामेंट की जो मेज़बानी है वो बांग्लादेश कर रहा है, और 2027 के विश्व कप के लिहाज से ये टूर्नामेंट काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे 50 ओवर यानी वनडे फॉर्मेट में खेलने के हिसाब से प्रस्तावित किया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीरपुर, सिलहट और चट्टोग्राम को मेज़बानी के लिए प्रस्तावित किया है. टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें एशिया की 6 प्रमुख टीमें तथा 1 क्वालिफायर टीम हिस्सा लेगी. यह टूर्नामेंट 2027 विश्व कप के ठीक पहले होगा, इसलिए सभी टीमें इसे अपनी अंतिम तैयारी के रूप में देख रही हैं. एशिया कप के ठीक बाद होगा, एशिया कप के साथ साथ एक और टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, जो है एशेज सीरीज़, जो शुरू होगी 18 जून से, और इसकी मेज़बानी करेगा इंग्लैंड. ईसीबी ने एशेज सीरीज़ के सभी वेन्यू फाइनल कर दिए हैं. सबसे ख़ास बात यह है कि इस बार साउथहैम्पटन स्थित यूटिलिटा बाउल इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि ये मैदान पहली बार एशेज टेस्ट सीरीज़ की मेज़बानी करेगा. एशेज सीरीज़ का पहला मुकाबला 18 जून 2027 से टेंट ब्रिज में खेला जाएगा. इसके बाद लॉर्ड्स, एजबेस्टन, साउथहैम्पटन और द ओवल में मैच खेले जाएंगे. आखिरी एशेज सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया था. इस बार इंग्लैंड अपने घर में अपनी हार का बदला लेना चाहेगी. और साल के अंत में होगा क्रिकेट का विश्व कप, जिसका क्रिकेट प्रेमी सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तारीखें आ गई हैं, जो 4 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 2027 तक खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। बता दें कि साउथ अफ्रीका ने पिछली बार वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2003 में की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। पिछले दो वर्ल्ड कप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को 7-7 के दो

0: अब प्रवीण बात करते हैं चीन के हांगजोंग में चल रही आईएसएसएफ राइफल पिस्टल शॉटगन विश्व कप की, और सोनम और इलावेलिन यहाँ फाइनल में पहुंचने में जरूर सफल रही, लेकिन सोनम 187.7 अंक के साथ पांचवें और इलावेलिन छठे स्थान पर रही। इलावेलिन ने 166.9 का स्कोर किया। फाइनल के लिए शीर्ष 8 शूटर क्वालिफाई करते हैं, और इस तरह सोनम और इलावेलिन फाइनल में पहुंचने में जरूर सफल रही। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में श्रेया अग्रवाल भी उतरी थी, लेकिन वह 630.7 के साथ 13वें स्थान पर पिछड़ गई। जो 8 पहुंचे उनमें चीन की वांग जिफाई, एलावेलिन वान हो जिन कोरिया की, ताइपे की वी हुआंग यूटिंग, चीन की हान जियायू, नॉर्वे की जीनेट, जर्मनी की कैथरीना जॉनसन और भारत की सोनम उत्तम मस्कर शामिल हैं। भारत में अब तक सैन्यम के रजत के अलावा पदक की तलाश है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सुरुचि सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। वो भी फाइनल में पहुंची थी, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन 137.6 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर रही। इसके अलावा महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के में विदारसा के विनोद ने फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन 135.2 के साथ वे छठे स्थान पर रही थी। अभी पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन के मुकाबले होने हैं, महिला 25 मीटर पिस्टल प्रिजन राउंड होना है, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन से जुड़े प्रारंभिक चरण के मुकाबले भी होने हैं। तो भारतीय निशानेबाज आगे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बात स्क्वैश की करें तो कनाडा के ओंटारियो में चल रही विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की अनहत सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बना ली है। अनहत ने सेमीफाइनल में मिस्र की तीसरी वैधता प्राप्त बार्म समी को 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 से पराजित किया। पिछले साल सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कांस्य पदक जीतने वाली और विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर शामिल अनहत भारत की जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियन बनने से महज एक कदम दूर हैं। अनहद से पहले भारतीय स्क्वैश की दिग्गज खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने 2005 में ये उपलब्धि हासिल की थी, वे फाइनल में पहुंची थी। अनहद 4 विश्व जूनियर टूर्नामेंट में खेल चुकी हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में ही उनका सफर थम गया था, पर इस बार उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर एक शानदार जो इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। फाइनल में उनके सामने मिस्र की ही रकाया सलेम होंगी। प्रवीण कहना, अब हॉकी की चर्चा की जाए, हॉकी पर क्या बताना चाहेंगे आप?
1: जी सर, बात करते हैं हॉकी यूथ फाइव्स एशियन चैंपियनशिप जो मस्कट में चल रही है, जिसमें भारतीय सब जूनियर बालक टीम ने पाकिस्तान और ओमान को एक मतलब बुरी तरीके से परास्त किया है। भारतीय टीम ने पहले ओमान को 10-1 से हराया और उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-3 से रौंद कर लगातार दूसरी बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहला हाफ भारत ने अपने नाम कर लिया, रोमित पाल ने 8वें मिनट में गोल कर खाता खोला। इसके बाद जैसे भारत ने गोल की लाइन ही लगा दी भारत की तरफ से। इसके बाद करण गौतम ने 10वें मिनट में और कप्तान केतन कुशवाहा ने गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया है। और जैसे ही दूसरा हाफ का 12वां मिनट आया, प्रहलाद ने एक और गोल कर भारत का जो स्कोर है वो 4-0 कर दिया। लेकिन खैर, पाकिस्तान ने भी कुछ वापसी की कोशिश की और मोहम्मद उस्मान ने 12वें और 15वें मिनट में 2 गोल किए, और इसके बाद कप्तान आदिल ने एक और गोल कर स्कोर जो है वो 4-3 कर दिया। मैच काफ़ी रोमांचक हो गया था उसके बाद, और भारत ने फिर तुरंत पलटवार जवाब देते हुए शाहरुख अली ने 16वें, राहुल यादव ने 18वें और कप्तान केतन कुशवाहा ने एक बार एक और गोल कर 20वें मिनट में भारत का जो स्कोर है वो 7-3 कर दिया, और पाकिस्तान पर एक शानदार जो जीत है वो दर्ज की। भारत की तरफ से कप्तान केतन कुशवाहा ने 2 गोल किए, और लगातार 2 जीत के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में एक मजबूत शुरुआत की है। ये जो टूर्नामेंट है सर, ये अगले होने वाले FIS यूथ हॉकी फाइव्स विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर भी है, और 2 लगातार जीत के साथ भारत की उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी मजबूत हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉकी का जो भविष्य आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा है सर।
0: जी बिल्कुल। बात अब टेबल टेनिस UTT कंटेंडर की करें तो श्रीजा अकुला ने फ्रांस की क्लियर प्याट कार्ड को हराकर 3-1 से पराजित किया है और प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। अब उनके सामने जापान की हितोमा सातो होंगी, जिनसे उनका मुकाबला होगा।
1: सर अब बात करते हैं यूटीटी यानी अल्टीमेट टेबल टूर्नामेंट जो चल रहा है गोवा के अंदर, उसमें डेम्पो गोवा चैलेंजर्स ने दबंग दिल्ली को जो है वो यूटीटी के 7वें सीजन में हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। डेम्पो गोवा चैलेंजर्स ने दबंग दिल्ली को 8-2 से हराया। गोवा की तरफ सर ओलंपिक खिलाड़ी एल्वेरो रोबेल्स ने शानदार खेल दिखाया और पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल में दोनों में अपनी भूमिका जो है निभाई और गोवा को एक शानदार जीत की तरफ बढ़ाया। रोबेल्स ने यूसुफ आदिल अजीज को सीधे गेम से हराकर गोवा को एक शानदार शुरुआत दिलवाई। पहले 2 गेम आराम से जीतने के बाद रोबेल्स ने तीसरे गेम में 7-10 से पिछड़ने के बाद जो वापसी की है उससे गोवा जो है सीधे सीधे जो है फाइनल के सेटों के अंदर पहुंच गया है।
0: जी बिल्कुल, बात अब डूरंट कप की करें। डूरंट कप फुटबॉल आज से आगाज हो रहा है कोलकाता में, और जिसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच है। ताज़ा स्थिति यह है कि अभी दो गोल रहित दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला है और गोल रहित बराबरी चल रही है। इस बार आयोजन 5 शहरों में कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग और रांची में होंगे। 24 टीमों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। पिछली विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। तो अब आपको जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 खेला जा रहा है उसमें ताज़ा स्थिति से आपको अगर अवगत कराएं, तो 18.1 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। और जो इसके तिलक वर्मा ने भी नाबाद अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। फिलहाल घड़ी की सुई अनुमति नहीं दे रही, तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मुझे नवीन कुमार शर्मा और प्रवीण यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी 3 मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
3: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
5: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
3: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
6: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
3: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि

छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन

0: यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said during the meeting the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: CJP's chief spokesperson Sarav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. Earlier today, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation during the past 10 days following students' protest. He said it was not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a sharp attack on the Congress and the Samajwadi Party, saying that the paper leak mafia is the legacy of these very parties. He asserted that there are only two places for those who play with the future of students, jail or hell. The Chief Minister was addressing a public gathering today after inaugurating and laying the foundation stone of 125 development projects worth more than 489 crore rupees for the Fatehpur Sadar and Ayasha Assembly constituencies. The Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House, Janpath and Central Secretariat Metro stations are now open. Meanwhile, Delhi police has advised citizens to avoid travelling towards the New Delhi area due to heavy crowds and high traffic congestion observed across the district. Sharing an advisory, the police directed commuters to use alternative routes to prevent delays and ensure a hassle-free journey. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news.

0: Sony IR mobile app. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. In Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicușor Dan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defense, digital technology, education, renewable energy and culture. The flood situation in Assam remains critical, with over 1.15 lakh people taking shelter in relief camps. Shivasagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood deaths toll to 61. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In Gujarat, rescue and relief operations are underway on a war footing following heavy rainfall across the state. Severe monsoon conditions continue in the state, with heavy rainfall lashing several parts of the state. In men's cricket, India were 217 for 5 in 19.5 overs against host Zimbabwe in the second T20 international in Harare when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
2: कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वरांजलि। 24 जुलाई शुक्रवार को मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला प्रोजेक्ट है कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली लाइन, बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। 46 किलोमीटर का 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदावती रिवर पे मेगा ब्रिज है, बाकी सारे के सारे आइटम्स बहुत स्पीड से हो जाएंगे। अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पॉल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रिफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 135,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। Our country's performance on green transportation has been very good. और अभी तो recently hydrogen train has done very well. 17th जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने hydrogen train जींद से inaugurate की थी। इसके 1000 किलोमीटर flawless कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच

0: every parameter. We are measuring about some 130 odd parameters continuously हम measure कर रहे हैं उसमें. कैसा उसका behavior है, किस तरह के उसके parameters के values आ रहे हैं, वो सब चीजें measure कर रहे हैं. Second मैं point आता हूँ, भव्य रसायन स्कीम. Economy में there are certain industries which are foundational industries. Steel industry is a foundational industry. Chemical industry is a foundational industry. Chemical is one of those industries जिसमें if you have that industry in your country, then you can have मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड अपॉन केमिकल इंडस्ट्री. माने प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है. भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स. प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है. इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण. एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में. जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ दी गैशियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे. दीज थ्री डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बेसिकली बी सिलेक्टेड थ्रू अ चैलेंज मोड. स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे. एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1,000 करोड़ रुपीज तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा. एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वेरी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इंफ्रा, लेट्स से हेल्थ केयर में, लेट्स से फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इन सब का बर्न सेफ्टी से रिलेटेड, इन सब चीजों के लिए बहुत स्पेशल इसमें ध्यान दिया जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए. माने प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर अ कंट्री, उसमें स्टेप बाय स्टेप वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीजों का एक एक करके वो सारी चीजें तैयार हो रही है जो कि विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है.
1: 23 जुलाई गुरुवार को भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर इंद्रेश मिश्र को सांगीतिक प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया गया. प्रस्तुत है इस आयोजन में सांगीतिक प्रस्तुतिकरण की एक झलक.

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन संबद्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य षड् दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। असम राज्ये जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या एकषष्टिः जाता, यत्र एक लक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धार शिविरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तम्। भारतीय स्क्वैश क्रीडिका अनाहत सिंहः ऐतिह्यं विरिच्य जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप श्रृंखलायाः महिला एकल निर्णायक द्वन्द्वे स्वीय स्थानं रक्षितवती। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीप्रधानेन निगदितं यत् गत 10 दिवसेषु प्रचल्यमाणानां स्थितिमालक्ष्य तेन मन्त्री पदमिदं त्यक्तम्। छात्राणां प्रदर्शन पुरस्सरं सुरक्षास्थितिं च मनसि निधाय शिक्षा मन्त्रिणा त्यागपत्रं प्रदत्तम्। तेन प्रतिपादितं यत् नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले अशेषे देशे हि परिस्थितिम् आलक्ष्य त्यागपत्रमिदं प्रदत्तम्। तेन प्रधानेन प्रोक्तं यत् तेन प्रधानमन्त्रिणः विश्वासं सहयोगं च सम्मानितम्। तेन भणितं यत् देशस्य सेवा एव तस्य सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यते। मध्यप्रदेश उच्चन्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन सम्बन्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता। न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् आरोप पत्राणां नामांकनस्य त्रिमासाभ्यन्तरे तेषां प्रकरणानां निवारणं भवितव्यमेव। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य 6 दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। कश्मीरस्य संभागीय आयुक्तेन अंशुलगर्गेण आकाशवाण्या सह वार्तालापे सूचितं यत् बाल्टाल पहलगाम मार्गयोः यात्रा पुनः समारब्धा अस्ति। अत्रांतरे 79,200+ यावत् तीर्थयात्रिणां समूहः अद्य प्रातः भगवती नगर यात्रिनिवास जम्मूतः प्रस्थितः। असम राज्ये जलप्रलये 15.5 लक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धार शिविरेषु आश्रयम् अगृह्णन्।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। नीलम बहन, जैसा कि हमारे बहन भाई जानते हैं, आज शनिवार है तो उनको सुनने को मिलेगा ही लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव की। बहन भाइयों, ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव और त्योहार सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और दैनिक श्रम की थकान मिटाने का मुख्य साधन है। ये उत्सव जाति और वर्ग के भेदों को मिटाकर सामूहिक भावना को मजबूत करते हैं और प्रकृति तथा कृषि चक्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, प्रकृति और देवत्व का उत्सव, ऋतुओं को बदलना, अच्छी फसल से जुड़ी खुशियाँ, लोक उत्सवों में ये सब कुछ शामिल हैं। ये उत्सव समुदायों को एकजुट करते हैं और आपसी भेदभाव व जाति की सीमाओं से उठकर अनोखे तरीकों से धार्मिक खाई को पाट सकते हैं। एक तरफ ये निरंतरता लाते हैं, वहीं रोजमर्रा के जीवन व श्रम से जुड़ी मुश्किलों के बीच राहत के दो पल भी प्रदान करते हैं। ग्रामीण भारत के विविध समुदायों के कारीगरों के बिना ये सब संभव नहीं होता, जिनकी मेहनत और शिल्प कलाओं के जरिए त्योहारों का संगीत, नृत्य, पूजा और भोज संभव हो पाता है।
0: उत्सवों के दौरान पूरा गांव मिलकर काम करता है, जिससे भाईचारा बढ़ता है। जाति, वर्ग और लिंग की सीमाओं से ऊपर उठकर सब एक साथ भाग लेते हैं, जिससे भेदभाव मिटता है, सुख दुख साझा करने और एक दूसरे का सहयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे सामूहिक आनंद मिलता है।
1: बिल्कुल, लोक उत्सवों से लोकगीत, नृत्य और कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। स्थानीय भाषा, कथाएं और वेशभूषा जीवित रहती हैं, जिससे रीति रिवाजों की रक्षा होती है।
0: लोक उत्सव खेती और रोजमर्रा के कड़े काम की रसहीनता को दूर करते हैं। मेलों और आयोजनों से जीवन में नया उत्साह आता है।
1: बिल्कुल, मेलों में दस्तकारों और कारीगरों की कला बिकती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो बहन भाइयों, ये तो बात रही ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव के महत्व की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी शशि भाई।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खेड़ा कुरसान डिस्ट्रिक्ट शामली।
0: मांगेराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: रोशनी भारती को सुनवा देना जी। तो एक नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: हमारे चाचा हैं पंडित महावीर शर्मा जी, पोते हमारे नितिन, अक्षय, लक्ष्य, आयुष, पीयूष।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं गांव पुनिया से विनोद टेलर बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: रोशनी भारती की सुना दिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम जी?
0: हाँ जी,
3: साहिल दैया, रोहित दैया, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: रोशनी भारती को सुना देना सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चे नाम है सर?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रोशनी भारती से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: मैं जिला महेंद्रगढ़ से दोंगड़ा गांव से बोल रहा हूँ जी। यादराम पटवारी,
0: यादराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: हाँ सुनवाओ जी, हमारे देवेंद्र सिंह सुनवाओ जी, बड़ी ऐसी राजनी कोई।
0: चलिए जरूर सुनवाएंगे।
1: पोता पोते के नाम लूंगा जी, सुहानी शर्मा, यश शर्मा, भवेश शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, नमस्ते शशि बाबू।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से नियमित होता
0: जी। डॉक्टर साहब, किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: देवेंद्र सिंह को
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गाँव बराना सर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: देवेंद्र सिंह को
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे साथ ही आरती भारती स्वाति मिसेज कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर देवेंद्र सिंह से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो, नमस्कार जी। सूर्यवास
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज ब्रजेश को सुना देना जी, और नाम लेना चाहूंगा जी, केशव दास विवेक प्रयाग पर्यंत।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ, गाँव राम सावाड़ा, जिला सहारनपुर से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रजेश को सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: एक नाम लूंगा सर, हमारे बड़े भाई हैं रंडेली से, बस सर बटार। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: मैं हरि सिंह सैनी, गांव पसवा नगला, जिला अमरोहा, यूपी से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ब्रजेश कलाकार को सुनवा देना, और मैं और कुछ नाम भी बोलना चाहता हूँ मैं
0: जी।
3: देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश डॉक्टर है, नीतीश, हेमपाल, पुष्पंदर, ललित, राघव और गोविंद मेरा भांजा, और गांव से रामशरण, पूरे गांव की फरमाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रजेश से ये रागनी, किस्सा रहेगा नरसी के भात का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बलराम वैसला की आवाज़ में एक लोकगीत सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: हमारे दोस्त हैं शीश पाल अकेला जी और बबली कुमार प्रजापति जी और राजेंद्र सैनी जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सर विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ, वीरभूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
0: विजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सर बलराम वैसला जी को सुनना चाहेंगे, और कुछ मित्र हैं हमारे रामनिवास अग्रवाल जी, सूबेदार खेमचंद, हवालदार रामपत सैन, बनवारी लाल यादव, तमाम मित्रों के साथ सुनना चाहेंगे सर जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जगदीश चिंडाड़िया बोल रहा हूँ जी, ढाणा निशांत जिला भिवानी से जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: बलराम वैसला को सुना देना जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम लेना चाहूंगे
0: जी,
3: राजवीर चिंडाड़िया, सतीश चिंडाड़िया, रिकित चिंडाड़िया, जगदीश चिंडाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सर मैं गांव बागोत महेंद्रगढ़ से प्रकाश अम्बावता बोल रहा हूँ सर।
0: प्रकाश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सर बलराम बैसला जी को सुनवा दिए, कुछ साथी हैं सूबेदार खेमचंद, हवालदार रामपल जी हैं, बनवारी लाल नेहरूगढ़ से।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बलराम बैसला से ये रागनी, खिस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
3: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CJP के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
5: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
3: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसे

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। जैसा कि हमारे किसान बहन भाई जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के इस मौसम में आप किसान भाई टमाटर और मिर्च की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, इन दोनों की अच्छी फसल उगाने के लिए पौधे का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए और साथ ही नर्सरी के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी नहीं भरता हो, और इसके अलावा बरसात में होने वाले रोगों और कीटों से भी फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारी बारिश की वजह से पौधे सड़ सकते हैं, इसके लिए जल निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे जो किसान भाई हैं ज़रूर ध्यान करें। जिन किसान बहन भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है तो वो रोपण कर सकते हैं, और जो करना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जा करके जो उन्नत किस्में हैं टमाटर की, मिर्च की, उनका पता करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी के लिए जैसे हमने बताया है कि ऊंचा स्थान होना चाहिए ताकि आप आसानी से नर्सरी तैयार कर सकें। और नर्सरी तैयार करने के बाद आपको उसका रोपण भी करना है, तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर दें और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं, और रोपण है वो शाम के समय करें ताकि पौधे धूप और गर्मी से बचें। और आप मेड़ बना के रोपण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे पौधों की पानी से सुरक्षा होगी। क्योंकि अगर पौध में पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं जो जड़ गलन की समस्या है उससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो मेड़ बनाकर आप रोपाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।
1: बिल्कुल, और रोपाई के बाद पौधों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और खरपतवार की समय समय पर सफाई करें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके।
0: बिल्कुल, और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और पौधों की बढ़वार के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, और साथ ही जल निकासी का विशेष ध्यान रखें ताकि पौधों की जड़ों में पानी ना रुक सके। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप किसान बहन भाई इस बरसात के मौसम में मिर्च और टमाटर की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और नीलम बहन, जो हमारे किसान बहन भाई कुछ हटकर करना चाहते हैं तो वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे हमारे जो किसान बहन भाई हैं वो तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर भी रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और अब नई तकनीकी और नई फसलों में किसानों की रुचि बढ़ रही है। इसी के साथ अब किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है। मशरूम ने बाजार में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है।
0: बिल्कुल, और वर्तमान समय में शहरों से लेकर

0: गांव तक लोगों के बीच मशरूम बहुत ही पसंदीदा सब्जी बन गई है। बाजार के पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भाई भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर नए सिरे से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही किसान भाई ऐसी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं और किसानों के लिए मशरूम की खेती फायदे का सौदा बन सकती है।
0: तो बात हम तकनीक की कर रहे हैं, तो संरक्षित खेती द्वारा आप किसान भाई मशरूम की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर डी के राणा। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजबा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर डी के राणा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज हम संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संरक्षित तकनीक है वो क्या है।
2: ये बड़ा एक ही इंटरेस्टेड विषय भी है और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा आय का साधन भी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो खेती होती है जनरली खेत में होती है, बीज लगाया जाता है, खाद डाला जाता है, पर मशरूम की खेती थोड़ा अलग हटके है। इसके लिए आपको, अगर हम प्रोटेक्टेड बात करते हैं, संरक्षित की बात करते हैं, इसके पहले तो मैं फायदे बताना चाहूंगा कि क्या फायदा है
0: जी।
2: क्योंकि जब आप संरक्षित खेती करते हो मशरूम की, तो इसको पूरे साल भर आप इसका उत्पादन कर सकते हो, इसको उगा सकते हो। क्योंकि जब मार्केट की बात आएगी आपको बेचने की, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जहां भी इसको आप बेचेंगे, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कैटर्स हो, वहां आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो वो चाहता है ये कि भाई पूरे साल मुझे मशरूम मिलती रहे। तो प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम पूरे साल मशरूम की खेती करते रहें, और उससे हमको क्या है कि पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी। और दूसरी हम बात करें, जिसको कहते हैं हम फील्ड में खेती, सीधे तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि इसको उत्पादन करने के लिए दो तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चीज है कि तापमान, सबसे पहली जरूरत है तापमान। इसके लिए अगर हम बटन मशरूम की बात करें, तो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके उत्पादन के लिए होना चाहिए। और हम नमी की बात करें, यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें, तो 80 से लेके 90% के बीच जो है आर्द्रता, यानी कि नमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये हमको कम मिलती है, अगर हम नेचर की बात करते हैं, तो जाके मिलती है हमको नवंबर से लेके फरवरी तक। अगर हम इन दोनों चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो पूरे साल हम इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज की हम बात करें, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए मशरूम घर होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमको, पहले तापमान और आपकी ह्यूमिडिटी अगर हमारे पास है, इस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम इसकी राउंड द ईयर पूरे साल इसकी खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तापमान कंट्रोल की बात की आपने, ह्यूमिडिटी की बात की, तो किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
2: इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको कितने क्षेत्र में मशरूम की खेती करनी है। और एक और भी ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे मशरूम का, तो हमको साथ साथ तीन कम से कम रूम एक साथ रखने पड़ेंगे। एक रूम में हमने क्या किया, पहले कंपोस्टिंग की, दूसरे में हमने 15-20 दिन के बाद कंपोस्टिंग की, तीसरे में उससे 15 दिन बाद की। तो ये क्या होगा, ये रेगुलर राउंड द ईयर चलती रहेगी। एक बार अगर हमारे पास एक ही कमरा है, या कोई भी हमने कंट्रोल किया हुआ है, पैलन से किया है, तो उसमें क्या है कि एक बार किया, फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा, तो मार्केट में आप रेगुलर जो मशरूम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो उपकरण की बात करें, तो मशरूम का जो घर होना चाहिए, और कंट्रोल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर वे में पूरी की पूरी तरह से इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारा कि हवा भी उसके अंदर हम चाहें तो आए, अन्यथा हवा भी ना आ पाए। दूसरा, आप इसको पक्का बना सकते हो। इसके अलावा भी आप पैनल के द्वारा बना सकते हो, जिसमें कि आपका जो तापमान है, ह्यूमिडिटी है, वो प्रॉपर से आपका मैनेज हो जाए। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की, एसी की भी जरूरत पड़ेगी आपको, आपको जो है डक्टिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। जहां आप कंपोस्ट डालोगे, स्पान मिलाओगे, वो रैक होना चाहिए या पोलोथीन होनी चाहिए, स्प्रे मशीन पानी की होनी चाहिए, ताकि उसमें जो आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, या जब आप उसके अंदर जो केसिंग मिट्टी आप डालते हो, उसकी ऊपर की परत को गीला करने के लिए स्प्रेयर भी आपके पास होना चाहिए, तापमान नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नापने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें तो जनरली हैं कि जब आप कंट्रोल कंडीशन में करोगे, तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिएंगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने जो चीज़ें बताई हैं उनमें लागत भी काफ़ी आएगी, तो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है हमारे किसान भाइयों को?
2: हाँ, किसान भाइयों के लिए अगर हम कंट्रोल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए अगर हम हरियाणा में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें, तो वहाँ पे 40% यानी 40 से 50% सब्सिडी MIDH के माध्यम से भी दी जाती है किसान को। जो मिशन है भारत सरकार का बागवानी मिशन, उसके माध्यम से भी दी जाती है। और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है यानी कि बागवानी का जो अधिकारी है, उससे किसान भाई अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है उससे संपर्क कर सकते हैं। जो वहाँ की जो सब्सिडियाँ हैं, मशरूम के बारे में हो, चाहे मधुमक्खी के बारे में हो, या स्प्रिंकलर के बारे में हो, या बागवानी के क्षेत्र में हो, तो आप वहां से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मशरूम तो कई प्रकार की होती हैं और खासकर हम संरक्षित तकनीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी किस्म की मशरूम हमारे किसान भाई उगा सकते हैं?
2: अगर भारत में हम बात करते हैं तो अधिकतर जो है व्हाइट बटन मशरूम जो है उसको किसान भाई उगाते हैं, क्योंकि बाजार जो है, मांग जो है, वो व्हाइट बटन मशरूम की है। तो इसको जो उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, देखो दो तरीके से मैंने बताया, एक तो हम कंट्रोल कंडीशन में जिसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन हम कह रहे हैं,
0: जी
2: दूसरा है कि नेचुरल कंडीशन में या झोपड़ी वगैरह बना के, वो भी हम वहाँ मशरूम सीजन में, वो भी सीजन में हम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मशरूम घर आपके पास हो। मशरूम घर के अलावा जो आप बात करते हो, तो इसकी खाद होती है जिसको कहते हैं कंपोस्ट, यानी कि मशरूम की खाद, वो साधारण गोबर की खाद नहीं होती। उसको बनाने के लिए वो कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी भी बनाने की कई तकनीकें हैं, जैसे एक को कहते हैं हम लॉन्ग मेथड द्वारा, जो लगभग 30 28 30 दिन में बन के तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले गेहूं का भूसा हो, चाहे आपका धान का भूसा हो, चाहे वो सरसों का भूसा हो, चाहे वो बाजरे का भूसा हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ जो अलग मिश्रण होते हैं, जैसे यूरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास का भी इस्तेमाल किया जाता है, आपका आटे का जो चोकर होता है जिसको बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बनाने की कई सारी तकनीकें हैं, जैसे लॉन्ग मेथड होगा, शॉर्ट मेथड होगा, एक होता है इंडोर मेथड, तो उसके द्वारा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट हम बाहर से भी ले सकते हैं, वो अगर परचेज भी करना तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जरूरत पड़ती है स्पान की, जिसको कहते हैं मशरूम का बीज। तो मशरूम का बीज भी जो है लगभग मार्केट में 80 से 100 रुपए किलो के आसपास मिलता है। 100 किलो कंपोस्ट जो होगी हमारी, लगभग 1 किलो बीज उसमें हमारा बटन मशरूम का लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप स्पान है तो स्पान को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम केसिंग मिट्टी। केसिंग मिट्टी की आवश्यकता तब पड़ती है जब पूरी तरह से जो आपकी खाद है माइसीलियम उसमें फैल जाता है, यानी कि मशरूम, जैसे मशरूम का बताया, मशरूम एक फंगस है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी खाई जाती है। तो मशरूम फंगस है यानी कि जीव है, कवक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो इस खाद है कंपोस्ट उसमें धीरे धीरे फैलता है। वो लगभग 12 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से खाद में माइसीलियम फैल जाता है, कवक जाल उसका अच्छी तरह से फैल जाता है। उसके बाद केसिंग मिट्टी हम उसमें बिछाते हैं। केसिंग मिट्टी बिछाने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर फिर माइसीलियम फैलने लगता है। तो अब हमको मॉइस्चर की, नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो केसिंग मिट्टी को बनाने के लिए भी कई मिश्रण होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर केसिंग मिट्टी बिछा दी तो लगभग 12 से 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे उसमें से पीनिंग निकलने लगती है, यानी कि धीरे धीरे से मशरूम की बॉडी निकलने लगती है, फूटिंग बॉडी, और वही 4 5 दिन में धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण हो जाती है। फिर उसको तुड़ाई करके मार्केट में बेच दिया जाता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे इसमें, कि साफ सफाई का ध्यान रखना, और कहीं भी किसी भी चीज की कोई इंसेक्ट आ रहा है या कोई डिजीज दूसरी आ रही है, उनसे कंट्रोल करना, समय समय पर मॉइस्चर का ध्यान रखना, तापमान का ध्यान रखना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मशरूम के लिए। अच्छा उत्पादन करने के लिए हमको मैनेजमेंट जो है, यानी कि प्रबंधन जो है, वो अच्छा होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि सफेद मशरूम उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जानकारी की या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं, खास करके संरक्षित तकनीक द्वारा, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
2: क्योंकि जो इसकी खेती है अन्य खेतियों की तुलना में बिल्कुल अलग है, तो इसकी जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए जो इच्छुक किसान भाई हैं, वो नज़दीक के अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, क्योंकि सभी जिलों में देश के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। वहां से लगभग उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने में सारी चीजों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है मशरूम को हम कर सकते हैं, स्पान कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, रूम कैसे आपका होना चाहिए, रेक एक दूसरे से

0: कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो वो पूर्णतः आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी, कृषि इकाई के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसान भाई सबसे पहले तो आपके नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में, इसके अलावा जो देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय में भी इनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो अपने नजदीक के जो कृषि विश्वविद्यालय, वहां से किसान भाई वहां से भी संपर्क कर प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो भी किसान भाई इस तरफ आना चाहते हैं तो जरूर अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय, वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात आती है जैसे कोई भी किसान भाई इस संरक्षित तकनीक को सीखकर उसने मशरूम का उत्पादन कर लिया, अब बात आती है बाजार की या मार्केटिंग की, बेचें कहाँ पर, तो किस तरह से कहाँ पे वो संपर्क करें?
0: देखो, बेचने के लिए वैसे तो जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस जिले की इकाई जो आपको प्रशिक्षण देगी, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय है चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको बाजार का पता होता है कि भाई यहाँ आप आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बड़ी बड़ी मंडियां सब जगह मशरूम को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा जो होटल्स हैं, होटल्स में आप बेच सकते हो, क्योंकि आजकल जो है सभी जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी, छोटे छोटे आपके जो ढाबे हैं, वहां भी मशरूम का प्रयोग किया जाता है, इस सब्जी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे कैटल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐप बनाए रखा है, उनके माध्यम से भी इसको सेल करते हैं। रिटेल में भी, मार्केट में आप जो है वहां सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मार्केट आपको पकड़ना पड़ेगा, और जब आप कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो मार्केट आपको आसानी से मिल जाती है। यानी कि जब आप प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करते हैं तो आपको आसानी से मार्केट की दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से किसान भाई जब मशरूम पैदा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपना मार्केट में इन जगह आप बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब सब जैसे कोई भी हमारे किसान भाई मशरूम उत्पादन करके बाजार ले जाते हैं तो खासकर उस वक्त कितना ध्यान रखना जरूरी, किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है?
0: मशरूम क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आप इसको एक बार तुड़ाई करने के बाद में, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत नहीं होती, तो इसको आप तुड़ाई करने के बाद में 8-10 घंटे के बीच में आप इसको सेल भी कर लेते हैं, मार्केटिंग सारी चीज कर लेते हैं, तो अच्छा है। नहीं तो कई बार उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कई बार नीचे से खुल भी जाती है, और खुल जाएगी तो मार्केट में अच्छा उसका रेट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन में मैं किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात आपको जो है सही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको CO2 की मात्रा ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो भी आपको मशरूम उगाने में दिक्कत आएगी, और अगर कम होगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। कि जब आपने स्पानिंग की है, यानी कि खाद के अंदर जब आपने बीज मिलाया, उसके बाद जब माइसिलियम धीरे धीरे फैलना शुरू होता है, तो उस समय 10,000 से 20,000 ppm के बीच आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है पहला चरण। फिर दूसरा चरण जब स्टार्ट होता है कि जब आप उसके ऊपर केसिंग बिछा देते हो, और फिर उसके बाद जब फ्रूटिंग बॉडी की तरफ चलते हैं हम, तो वो दूसरा चरण होता है मशरूम का। तो उस समय आपको 800 से 1500 ppm के बीच आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना, अगर दोनों में ही अगर 800 से, इस समय जब आप फ्रूटिंग बॉडी आपकी निकल रही है, 800 से अगर कम CO2 हो जाएगी तो भी कहीं ना कहीं मशरूम को निकलने में दिक्कत आएगी। अगर 2000 से ऊपर हो जाती है तो जो मशरूम का जो तना है वो पतला हो जाएगा, उसकी जो लंबाई है तने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे मार्केट में भी उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, उनको वो अच्छी मशरूम नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन को भी टाइम टाइम पर आपको सुबह के टाइम आपको देना है, इन चीजों को आपको मेंटेन रखना है। दूसरा, आपकी नमी जो है, मॉइस्चर जो है, उसको प्रॉपर वे में आपने मेंटेन करना है। अगर नमी आपका, कई बार क्या होता है अगर आपकी जो केसिन की ऊपर की लेयर है वो ड्राई होगी, सूखगी, नमी कम है, तो पीनिंग निकलने में दिक्कत आ जाएगी, फिर आप समझोगे कि ऊपर मशरूम आ ही नहीं रही है। और अगर नमी ज्यादा होगी तो उसका क्या, रोटिंग हो जाएगी, सड़ने लगेगी वो अंदर ही अंदर। तो ये जरूरी है कि मॉइस्चर का आप पूरी तरह से मेंटेन उसको रखें, और इसी तरह से तीसरा टेम्परेचर का, अगर ये चीजें आपने सही से मेंटेन कर ली तो बिल्कुल आप अच्छा मुनाफा कमा पाओगे।
1: बिल्कुल, तो जरूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान, नमी, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए मशरूम के क्षेत्र में रोजगार की क्या कुछ संभावना है?
0: नहीं, मशरूम आज की डेट में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ व्यवसाय है। वो जो नवयुवक हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई वो सीखें और अपना स्वयं का रोजगार वो करें। इसीलिए भारत सरकार जो है कई क्षेत्रों में इसके लिए आपको सब्सिडी के रूप में भी मदद करती है, तो नए यूथ के लिए तो बहुत अच्छा एक व्यवसाय है।
1: बिल्कुल डॉक्टर डीके राणा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान मित्रों को, किसान भाइयों को दी है। हमारे खासकर जो युवा साथी हैं, ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और इस तरफ रोज़गार की संभावनाएं तलाश करेंगे, क्योंकि साल भर का ये रोज़गार है। और जो हमारे किसान भाई अभी तक मशरूम की खेती नहीं करते हैं, तो वो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम में आने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं इंद्रपाल शर्मा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और कलाकार थे इंद्रपाल शर्मा।
1: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपको बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: ग्राम संसार में कल बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे कारगिल विजय दिवस और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और इसके अलावा भारतमाला परियोजना योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में आप किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और आपकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे, और इसके अलावा किसान

0: किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। सरकार के साथ बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। CJP ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर बंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार के साथ वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
5: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
7: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
5: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CJP के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
7: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
5: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि उनका 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा, सुधारों के प्रति

0: प्रतिबद्धता और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से त्यागपत्र देने पर कहा कि ये निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
1: श्री सिरसा ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य की चिंता है तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ भी समान न्याय होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी कथित पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के मुद्दों पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल थे। नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइट एयर सुविधा 2.0 के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति ने मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंत्रालय ने कहा कि एकमात्र आधिकारिक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल airsuvidha.civilaviation.gov.in है। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने निर्बाध रूप से 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है और इससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इस हाइड्रोजन रेलगाड़ी को इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने इस दौरान लगभग 12 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 28,800 रुपए और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जांच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि ये जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और अत्यधिक यातायात जाम को देखते हुए नागरिकों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर आज बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ NCRTC के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के लिए गार्डिंग द बॉर्डर्स विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सैनिकों के साहस को चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। NCRTC ने कहा कि नमो भारत स्टेशनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया जा रहा है। RGU की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कल करगिल विजय दिवस है, इसी संदर्भ में हमारी पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2026 में अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और विभिन्न नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन किया है। निगम के स्टॉल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, नागरिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया तथा निगम की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कई पहलों के माध्यम से जुलाई महीने को बाल संरक्षण माह के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने 321 सेशन के माध्यम से 112,000 से अधिक विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। शिक्षा निदेशालय ने पॉक्सो और बाल सुरक्षा नियमों के पालन की जाँच के लिए 1,503 स्कूलों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि विद्यालय में शपथ समारोह, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस स्टेशन के दौरे से बच्चों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के लोक निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों और विकासात्मक पहलों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और newsonair मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीतने वाले झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई, वहीं दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सवेरे और दोपहर के समय हल्की हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राजधानी में कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों तथा उच्च स्तरीय कांवड़ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देवशयनी एकादशी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान विष्णु के सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। कहा, तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

अपना त्याग पत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन किसी अच्छे फनकार में ये खूबी होती है कि वो न सिर्फ ज़हनी और कलबी कैफियतों को समझता है और महसूस करता है, बल्कि जो कुछ लोगों पर गुज़रती है उसका अपनी तख्लीकी काविश से बरमला इजहार भी करता है। शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो शायर ज़हनी और कलबी कैफियत को जो महसूस करता है शायरी में ढालता है और उन सब को लोगों के रूबरू पेश कर देता है। यही शायर का एक बड़ा कमाल है। अजीम फिलासफर हुमर का कहना है, शायरी तो की जाए लेकिन शायर का फ़र्ज़ ये है कि जो कुछ वो अपनी शायरी में बयान करे वो सच भी हो। इस तरह शायरी में जब हकीकत को बयान किया जाता है तो वो सबके दिलों की आवाज़ बन जाती है। वो किसी एक फ़र्द या शख्स के ख्यालात, जज्बात और एहसासात ना होकर आफाकी बन जाते हैं। आइए सामईन शायरी सुनी जाए, यानी सुनते हैं मुशायरा। इस मुशायरे की निजामत फरमा रहे हैं जनाब एजाज अंसारी। आइए सुनते हैं।
2: आकाशवाणी के इस मुशायरे में जिन शोरे कराम को आज अपना कलाम पेश करना है उसमें जनाब राशिद रहमान, जनाब शाकिर दहलवी, जनाब सलीम अमरोहवी और ये खादिम एजाज अंसारी। तो आइए आकाशवाणी के इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए और मैं सबसे पहले ज़हमत देना चाहूँगा जनाब राशिद रहमान साहब को, जिनका ताल्लुक़ मेरठ से है और वो वहाँ से तशरीफ लाए हैं।
3: एक मतला और चंद शेर पेश कर देता हूँ, समाअत फरमाएं कि जब से तेरी आँख मेरी आँखों से लड़ी है,
2: जब से तेरी आँख मेरी आँखों से लड़ी है,
3: जब से तेरी आँख मेरी आँखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है।
2: क्या कहने क्या कहने,
3: दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है और पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम।
2: वाह।
3: पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
2: वाह।
3: लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है। वाइज ये तेरा रोजे कयामत तो नहीं है,
2: वाइज ये तेरा रोजे
3: कयामत तो नहीं है, क्यों अपनी तुझे और मुझे अपनी पड़ी है।
2: वाह।
3: क्यों तुझे अपनी और मुझे अपनी पड़ी है।
2: वाह, वाह, वाह, वाह।
3: और कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है। ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है।
2: वाह, वाह, वाह।
3: और तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तकदीर से हर हाल में तदबीर बड़ी है।
2: अच्छा है, अच्छा है भाई,
3: तकदीर से हर हाल
2: में। साहब अच्छा है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। तदबीर बड़ी है,
4: क्या कहने।
3: और बतौर खास कि सब रास्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई, सब रास्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई, हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है।
2: हालांकि
3: बहुत देर से एक लाश पड़ी है।

0: बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया
1: क्या
0: आपका।
1: मंजर बनाया,
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: जब
1: वाह,
0: से
1: क्या
0: तेरी
1: मंजर
0: आंख
1: पेश
0: मेरी
1: किया आपने।
0: आंखों से लड़ी है,
2: क्या बात है,
0: दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है, और मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है। और मक्ता पेश है, मैं कई रोज से राशि

0: और पेश कर देता हूं, मुलायजा करें कि देखिए क्या से क्या हो गया,
1: देखिए क्या से क्या हो गया,
0: हमसे अपना जुदा हो गया, हमसे अपना जुदा हो गया, और हमसे कैसी खता हो गई, हमसे कैसी खता हो गई, बावफा बेवफा हो गया, बावफा बेवफा हो गया, और हुस्न जब से खफा हो गया,
1: हुस्न जब से खफा हो,
0: हुस्न जब से खफा हो गया, मुनफईल आईना हो गया, मुनफईल आईना हो गया, और जिंदगी एक उलझन बनी, जिंदगी एक उलझन बनी, सांस लेना सजा हो गया, सांस लेना सजा हो गया, और रात भर खाक छानी मगर, रात भर खाक छानी मगर, ख्वाब भी लापता हो गया, ख्वाब भी लापता हो गया, और कोई शिकवा नहीं अब हमें,
1: कोई शिकवा
0: नहीं अब हमें, जो हुआ मोजिजा हो गया,
1: जो हुआ
0: मोजिजा हो गया, ढूंढता है उन्हें अब कहाँ, राशिद उनसे जुदा हो गया। और एक गजल के चंद शेर कि मेरे ख्याल में दिन रात आ रहा है वो, मेरे ख्याल में दिन रात आ रहा है वो, मुझे सदाए लगा के बुला रहा है वो, और चमन में छाई है जैसे प्यार की बदली, चमन में छाई है जैसे ये प्यार की बदली, दिलो दिमाग पे इस तरह छा रहा है वो, दिलो दिमाग पे इस तरह छा रहा है वो, और जफाओ जुल्म की जहनों में तीरगी है बहुत, जफाओ जुल्म की जहनों में तीरगी है बहुत, मोहब्बतों का दिया यूं जला रहा है वो, मोहब्बतों का दिया यूं जला रहा है वो, और ज़बाने उर्दू का ये भी तो एक करिश्मा है, ज़बाने उर्दू का ये भी तो एक करिश्मा है, गजल की बज़्म को हर दिन सजा रहा है वो, गजल की बज़्म को हर दिन सजा रहा है वो, और वो जितने शेरों में पिन्हा है हसरत गम की, वो जितने शेरों में पिन्हा है हसरत गम की, वही कलाम दोबारा सुना रहा है वो, वही कलाम दोबारा सुना रहा है वो, और ये देखता हूँ मैं नफ़रत की खेतियाँ करने, ये देखता हूँ मैं नफ़रत की खेतियाँ करने, मेरे दियार में हर रोज़ आ रहा है वो, मेरे दियार में हर रोज़ आ रहा है वो। और मक्ता पेश है कि दुआ को हाथ उठाने थे अब जिसे राशिद, दुआ को हाथ उठाने थे अब जिसे राशिद, हर एक बात पे खंजर उठा रहा है वो, हर एक बात पे खंजर उठा रहा है,
1: क्या कहने।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और चंद शेर और अर्ज करता हूँ कि लड़कियां जब बनाने लगी हैं, लड़कियां जब बनाने लगी हैं, रोटियां मुस्कुराने लगी हैं, रोटियां मुस्कुराने लगी हैं, और रहा आसान होगी यकीनन, रहा आसान होगी यकीनन, मुश्किलें आजमाने लगी हैं, मुश्किलें आजमाने लगी हैं,
2: आसान होगी यकीनन,
0: मुश्किलें आजमाने लगी हैं, और कोई उनसे ये जाकर बता दे, कोई उनसे ये जाकर बता दे, उनकी यादें सताने लगी हैं, उनकी यादें सताने लगी हैं। और मक्ता पेश है कि तेरी गजलों को राशिद सुना है, तेरी गजलों को राशिद सुना है, बुलबुलें गुनगुनाने लगी हैं, बुलबुलें गुनगुनाने लगी हैं। शुक्रिया। आदाब।
1: अभी आप जनाब राशिद रहमान को समाअत फरमा रहे थे, और अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाब शाकिर दहलवी साहब से, जो अपने मुनफरिद लहजे की वजह से पहचाने जाते हैं, एक अच्छी शायरी जदीद लबो लहजे के शायर जनाब शाकिर दहलवी।
3: एक गज़ल के चंद अशआर।
2: अशआर।
3: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम,
1: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम,
3: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम, यानी किसी ख्याल में उलझे
2: हुए,
3: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम, यानी किसी ख्याल में उलझे हुए हैं हम, माहौल जश्न का है मगर दिल उदास है,
1: माहौल जश्न का है मगर दिल उदास है,
3: जश्न का है मगर दिल उदास है, ऐसे तेरे मलाल में उलझे हुए,
1: क्या कहने शाकिर साहब, वाह वाह वाह वाह,
3: माहौल जश्न का है मगर दिल उदास है, ऐसे तेरे मलाल में उलझे हुए हैं हम। शेर देखिए सलीम साहब के, फूलों के खैर खा

0: तो हर समत है यहाँ।
1: फूलों की
0: फूलों के
1: खैर खा
0: खैर
1: तो
0: खाह
1: हर
0: तो
1: संत
0: हर
1: हर
0: समत
1: संत
0: है
1: है।
0: यहाँ,
1: हाँ
0: खुशबू की देखभाल में उलझे हुए
1: उलझे
0: हैं
1: हुए। क्या
0: हम।
1: कहने,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहने,
0: वाह वाह वाह
1: क्या
0: वाह,
1: कहने।
0: बहुत प्यारा शेर है। वाह वाह वाह,
1: फूलों
0: के खैर खाह तो हर समत है यहाँ,
1: क्या कहने।
0: खुशबू की देखभाल में उलझे हुए हैं हम। खुशबू की देखभाल में उलझे हुए हैं हम, आया ना आज तक कोई उम्मीद भी नहीं।
1: वाह,
0: आया ना आज तक कोई
1: कोई
0: उम्मीद
1: उम्मीद
0: भी नहीं, उस लम्हे विसाल में उलझे
1: उलझे
0: हुए
1: हुए।
0: हैं
1: वाह
0: हम।
1: वाह
0: बहुत अच्छा,
1: वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा।
1: वाह वाह।
0: आया ना आज तक कोई उम्मीद भी नहीं, उस लम्हे विसाल में उलझे हुए हैं हम। दुश्मन की ये मजाल कहाँ घेर ले हमें,
1: वाह,
0: दुश्मन की ये मजाल
1: मजाल कहाँ
0: कहाँ
1: घेर
0: घेर
1: ले
0: ले हमें,
1: हमें,
0: अपनी ही एक चाल में उलझे
1: उलझे
0: हुए
1: हुए
0: हैं
1: हम।
0: हम।
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह
0: है भाई,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने
1: वाह
0: हैं।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया।
1: वाह
0: दुश्मन की ये मजाल कहाँ घेर ले हमें,
1: वाह,
0: अपनी ही एक चाल में उलझे
1: उलझे
0: हुए
1: हुए
0: हैं
1: हैं
0: हम।
1: हम।
0: एक और गजल से चंद अशार देखिएगा।
1: जी अरशद,
0: एक खता की और कहीं से हम कहीं के हो गए, एक खता की
1: और
0: और
1: कहीं से
0: कहीं
1: हम
0: से
1: कहीं के
0: हम
1: हो
0: कहीं
1: कहीं
0: के
1: के
0: हो
1: हो गए,
0: गए, आसमां के रहने वाले थे जमीं के
1: जमीन के
0: हो
1: हो।
0: गए।
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा,
1: है,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह।
1: अच्छा है,
0: एक
1: बहुत अच्छा
0: खता की और कहीं से हम कहीं के हो गए,
1: है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: आसमां के रहने वाले
1: भाई
0: थे
1: बहुत प्यारा है।
0: जमी के हो गए, आसमां के रहने वाले थे जमी के हो गए। हो खुशी कोई भी दिल में देर तक ठहरी नहीं,
1: वाह,
0: हो खुशी कोई भी दिल में देर तक ठहरी नहीं, आए गम मेहमान बनकर और यहीं के हो गए।
1: अच्छा
0: बहुत
1: है,
0: अच्छा,
1: अच्छा
0: वाह बहुत
1: है,
0: अच्छा, बहुत अच्छा।
1: बहुत अच्छा है
0: हो
1: शाकिर
0: खुशी
1: साहब,
0: कोई भी दिल में देर तक ठहरी
1: भाई क्या
0: नहीं,
1: कहने हैं। वाह वाह वाह,
0: आए गम मेहमान बनकर और
1: और
0: यहीं
1: यहीं
0: के
1: के
0: हो
1: हो गए।
0: गए। हमने दिल में दी जगह यारों को, लेकिन यार लोग, हमने दिल में दी जगह यारों को, लेकिन यार लोग छोड़कर दिल की हवेली आस्तीन के
1: के
0: हो
1: हो
0: गए।
1: गए। अरे
0: अरे वाह,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: भाई क्या
0: अच्छा,
1: कहने
0: वाह
1: हैं।
0: वाह।
1: वाह
0: हमने दिल में
1: वाह,
0: दी जगह यारों को, लेकिन
1: क्या
0: यार
1: बात
0: लोग
1: है शाकिर
0: छोड़कर
1: साहब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: दिल की हवेली आस्तीन के हो गए। और
1: क्या कहने हैं। वाह वाह वाह,
0: आपका हर बात पर कहना वो हमसे जी नहीं, आपका हर बात पर कहना वो हमसे जी नहीं, हम भी आशिक आपकी उस जी नहीं के हो गए।
1: वही क्या
0: बहुत
1: कहने
0: अच्छा,
1: हैं। वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह, जी नहीं के
0: हम
1: हो
0: भी
1: गए,
0: आशिक आपकी उस जी नहीं के हो गए।
1: क्या कहने
0: और शेर
1: हैं
0: देखिए साहब,
1: जनाब।
0: कि उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
1: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
0: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक, हम भी सब शिकवे भुला कर फिर उन्हीं के हो गए।
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा,
1: है, बहुत
0: बहुत
1: अच्छा
0: अच्छा,
1: है। वाह
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: उम्दा।
1: वाह,
0: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: कहने,
1: क्या कहने,
0: हम
1: बहुत
0: भी
1: उम्दा।
0: सब शिकवे भुला कर फिर उन्हीं के हो
1: वाह
0: गए।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह,
0: और एक गज़ल देखिए।
1: इरशाद।
0: दिले सियाह में शम्मे जलाने वाला शख्स,
1: आह, दिले सियाह,
0: दिले सियाह में शम्मे
1: हमें
0: जलाने
1: जलाने
0: वाला
1: वाला
0: शख्स,
1: शख्स।
0: मिला था हमको भी एक बार एक उजाला शख्स।
1: अच्छा है, बहुत
0: दिले
1: अच्छा,
0: सियाह में शम्मे
1: शमे
0: जलाने
1: जलाने
0: वाला
1: वाला शख्स।
0: शख्स, मिला था हमको भी एक बार उजाला शख्स, और तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं देते रहो।
1: वाह,
0: बहुत खूब। तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं
1: सदाएं
0: देते
1: देते रहो।
0: रहो, वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स। बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह।
1: वाह वाह वाह,
0: तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं देते रहो,
1: वे
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहने
0: वाह
1: हैं।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह,
0: वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स।
1: वाह वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: शेर देखिए कि वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स, ये शख्स खुद जो बज़ाहिर खंडर सा लगता है।
1: वे क्या कहने हैं। वाह, ये शख्स
0: ये
1: बहुत
0: शख्स खुद जो बज़ाहिर
1: खंडर
0: खंडर सा
1: खंडर सा
0: लगता
1: लग रहा
0: है,
1: है
0: बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला
1: शख्स।
0: शख्स।
1: भाई
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया,
1: वाह वाह, भाई बहुत प्यारा शेर कह
0: बहुत
1: दिया है।
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: ये
1: बहुत
0: शख्स
1: कहने,
0: खुद जो बज़ाहिर
1: क्या
0: खंडर सा
1: कहने,
0: लगता
1: भाई
0: है,
1: क्या
0: वाह
1: कहने
0: वाह
1: हैं।
0: वाह,
1: वाह वाह वाह
0: बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला शख्स,
1: वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मशाल उठा के जो निकला था रोशनी करने,
1: हाँ,
0: मशाल उठा के जो निकला
1: निकला
0: था
1: था
0: रोशनी
1: रोशनी
0: करने,
1: करने।
0: अंधेरी भीड़ ने कल शब वो मार डाला शख्स।
1: अरे,
0: मतलब
1: अच्छा है भाई,
0: बहुत
1: अच्छा है
0: बढ़िया,
1: शाकिर साहब,
0: भाई
1: भाई
0: वाह वाह
1: दोबारा
0: वाह
1: पढ़िए
0: वाह वाह
1: इसको।
0: वाह।
1: वाह वाह
0: मशाल
1: वाह
0: उठा
1: वाह
0: के जो
1: वाह,
0: निकला था रोशनी करने,
1: भाई क्या कहने हैं। वाह वाह वाह,
0: अंधेरी भीड़ ने कल शब वो मार डाला
1: क्या बात
0: शख्स,
1: है भाई,
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह वाह।
0: चराग लेके जहां भर में घूम लीजिएगा,
1: हाँ,
0: चराग लेके जहां भर

0: में घूम लीजिएगा, कहीं ना पाएंगे हम जैसा भोला भाला।
1: भाला शख्स, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, भाई क्या
0: चराग
1: पूर्ण
0: लेके
1: दीपक
0: जहां
1: निभाया
0: भर
1: आपने।
0: में घूम लीजिएगा,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कहीं ना पाएंगे हम जैसा भोला
1: भोला
0: भाला
1: भाला
0: शख्स।
1: शख्स,
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह, खंडर वाला शेर एक बार फिर जहमत होगी आपको। वाह वाह वाह,
0: ये शख्स खुद जो बजाहिर खंडर सा
1: खंडर सा
0: लगता
1: लगता
0: है,
1: है। हा।
0: ये शख्स खुद जो बजाहिर खंडर सा लगता है, बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला शख्स।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छे,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने
0: बहुत
1: हैं।
0: खूब।
1: हाँ, बनाए हैं कई इसने बुलंदो वाला शख्स। वाह वाह।
2: सामई, अभी आप जनाब शाकिर देहलवी को समाअत फरमा रहे थे, और अब मैं जिस शायर के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ उसे जनाब सलीम अमरोही के नाम से जाना जाता है। सलीम अमरोही साहब अपने मुतरन्निम आवाज़ और लहजे की वजह से भी अपनी ख़ास शनाख्त रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सलीम अमरोही से।
3: गज़ल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। आपका हुक्म है, आपने कहा कि मुतरन्निम शायर, लेकिन आज कोशिश करूँगा कुछ तहत में आप तक कुछ अशआर पहुँचा सकूँ। अर्ज़ क्या है कि आदमी ने उरूज पाया भी, आदमी ने उरूज पाया भी, पर ज़मीं में यही समाया भी।
1: वाह,
3: आदमी ने उरूज पाया भी,
0: जमी में यही
3: पर जमी में यही समाया भी, पर जमी में यही समाया भी, इस तरह बेकरार करके मुझे,
2: इस कदर बेकरार करके
3: इस
2: मुझे।
3: तरह बेकरार करके मुझे, आपको कुछ करार आया भी, इस
2: आया
3: तरह बेकरार करके मुझे,
0: आपको कुछ करार आया भी,
3: आपको कुछ करार आया भी,
0: बहुत
3: आपको
0: अच्छा
3: कुछ
0: है
3: करार आया भी। शेर समाप्त होना, ये इजाज़ भाई देखिएगा
2: जनाब।
3: कि अगर अंधेरे में होता है इंसान, भाई
2: घर
3: साहब,
2: अंधेरे में होता है
3: अगर
2: इंसान,
3: अंधेरे में होता है इंसान, छोड़ देता है साथ साया
0: साया,
3: भी।
0: बहुत
2: अच्छा
0: अच्छा, बहुत
2: है,
0: अच्छा है।
3: अगर अंधेरे में होता है इंसान,
0: छोड़ देता है साथ
3: छोड़
0: साया भी,
3: देता है साथ
0: साथ
3: साया भी, छोड़ देता है साथ साया भी, कौन है जो ये पूछे माँ की तरह,
2: आह
3: कौन है जो ये पूछे माँ
0: माकी
3: की तरह,
0: तरह
3: कुछ मेरे लाल तूने
0: तूने
3: खाया
0: खाया।
2: अच्छा
3: भी,
2: है, अच्छा है भाई।
3: कौन
2: वाह
3: है
2: वाह,
3: जो
2: क्या
3: ये पूछे माँ की तरह,
2: बात है सलीम
3: कुछ
2: साहब,
3: मेरे लाल
0: तूने खाया
3: तूने
0: भी, खाया
3: खाया भी, कुछ
0: भी।
3: मेरे लाल तूने खाया भी, और हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है,
2: हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है,
3: हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है, क्या कभी हमको आजमाया
2: वाह
3: भी,
2: वाह वाह
0: बहुत
2: वाह वाह
3: हमसे
2: वाह,
3: दूरी ये बेसबब क्यों
2: वाह
3: है,
2: वाह वाह वाह
3: क्या कभी हमको आजमाया
0: आजमाया
3: भी। ये
0: भी।
3: शेर कुछ हटके हो गया, देखिएगा शायर किस लायक
2: जी
3: हो,
2: इरशाद।
3: कि क्या कभी हमको आजमाया भी, खर्च करने से पहले ये सोचें,
2: खर्च करने से पहले ये सोचें
3: खर्च करने से पहले ये सोचें, आपने कुछ
2: कुछ
3: कभी कमाया
0: कमाया
3: भी,
2: वाह वाह
3: खर्च
2: वाह
3: करने
0: वाह,
3: से पहले ये
2: अच्छा शेर है
3: सोचें,
2: सलीम साहब, अच्छा शेर है।
3: मादर
2: वाह वाह
3: शुक्रिया,
2: वाह
3: बहुत
2: वाह
3: बहुत।
2: वाह,
3: खर्च करने से पहले ये सोचें, आपने कुछ
0: कुछ
3: कभी
0: कमाया,
3: कमाया भी,
2: वाह वाह वाह वाह
3: सादगी थी तुम्हारे शेरों में,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: सादगी थी तुम्हारे शेरों में, यूं ही सबकी समझ में आया भी,
2: वाह वाह
0: बहुत
2: वाह वाह
3: सादगी थी तुम्हारे शेरों में। मख्ता देखिएगा शायद किस लायक हो, जाकिर साहब
2: जनाब,
3: देखिएगा कि इतनी लंबी हयात पाई सलीम,
2: इतनी लंबी हयात
3: इतनी
2: पाई सलीम,
3: लंबी हयात पाई सलीम, कुछ जमाने को कर दिखाया भी,
0: बहुत अच्छा
2: वाह
0: है,
2: वाह
0: बहुत
3: इतनी
0: अच्छा,
3: लंबी
2: वाह वाह वाह
3: हयात
2: वाह
3: पाई
2: वाह,
3: सलीम, कुछ जमाने को कर दिखाया भी।
2: वाह
3: एक
2: वाह वाह
3: गजल
2: वाह
3: के चंद
2: वाह,
3: अशआर और समाअत फरमा लीजिए,
2: इरशाद जी, इरशाद।
3: मतलब देखें कि जब भी आवाज में मिली आवाज,
2: जब भी आवाज में मिली आवाज,
3: जब भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद दूर तक गई आवाज,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: जब
0: बहुत
3: भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद
0: दूर
3: दूर
0: तक
3: तक
0: गई आवाज,
3: गई आवाज, और धीमा धीमा सा आपका लहजा,
2: धीमा धीमा सा आपका लहजा,
3: धीमा धीमा सा आपका लहजा, और फिर उस पर मखमली आवाज,
0: बहुत अच्छे, बहुत
3: धीमा धीमा सा आपका लहजा, और
1: और फिर उस पर

0: मखमली आवाज मुद्दतों बाद है सुना लेकिन, मुद्दतों बाद है सुना लेकिन, लग रही है सुनी सुनी आवाज,
1: वाह वाह वाह,
0: लग रही है सुनी सुनी आवाज, और हैं बहुत सी जहां में आवाजें, हैं बहुत सी जहां में आवाजें, पर नहीं कोई आपसी आवाज।
1: अच्छा है, वाह वाह वाह,
0: बहुत सी जहां में आदाब हैं, बहुत सी जहां में आवाजें, पर नहीं कोई आपसी आवाज, और दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, दिल से उठती है, दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, और बनती है शायरी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है,
0: दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में,
1: सलीम अमरोही साहब, वाह वाह वाह,
0: दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, और बनती है शायरी आवाज, किसी सूरत वो दब नहीं पाती,
1: किसी सूरत वो दब
0: किसी
1: नहीं पाती,
0: किसी सूरत वो दब नहीं पाती, हक की खातिर अगर उठी आवाज,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: हक की खातिर अगर उठी आवाज, वो कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं देती है जिंदगी आवाज,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं देती है जिंदगी आवाज, और ये भी देखा है हमने दुनिया में,
1: वाह ये भी देखा है,
0: देखा है हमने दुनिया में, मार देती है अनसुनी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है,
0: मार दे आदा, मार देती है अनसुनी आवाज, और खुद दिखा देती है असर अपना,
1: खुद दिखा देती है असर अपना,
0: दिखा देती है असर अपना, हो अगर दर्द में भरी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है,
0: खुद दिखा देती है असर अपना, हो अगर दर्द में भरी आवाज, और सर उठाकर वो चल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, जिसकी दुनिया में दब गई आवाज,
1: वाह वाह वाह,
0: जिसकी दुनिया में दब गई आवाज, मैंने लफ्जों में जब पिरोई सलीम, मैंने लफ्जों में जब पिरोई सलीम, पूरी महफिल में गूंज उठी आवाज,
1: वाह वाह,
0: पूरी महफिल में गूंज उठी आवाज, जब भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद दूर तक गई आवाज।
1: वाह वाह, अभी आप जनाब सलीम अमरोही को समाअत फरमा रहे थे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं अब एक ऐसी शख्सियत के हुजूर पहुंचा जाए जो न सिर्फ अपनी निज़ामत के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, बल्कि शायरी भी वो इस अंदाज़ से करते हैं कि लोग उनके सुनने के लिए बेचैन रहा करते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के इस मुशायरे के सीनियर शायर जनाब एजाज़ अंसारी साहब के हुजूर पहुँचता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: शुक्रिया सलीम अमरोही साहब। सबसे पहले एक दो कतात समत फरमा लीजिए, फिर गजल तक पहुंचूंगा। बफ़ैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, बफ़ैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है, बफ़ैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है, मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ, मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है,
2: बहुत अच्छा, बहुत खूब,
1: मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है, मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ,
2: बहुत अच्छा,
1: मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है।
0: वाह वाह वाह,
1: गजल का मतला यहीं से समाज फरमाए और देखें ये मतला सलीम साहब, आप भी मोहतरम रहमान साहब और शाकिर भाई, के फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है, फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है, बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी जाता है।
2: बहुत अच्छे, बहुत खूब,
0: वाह वाह वाह,
1: फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है,
0: वाह वाह वाह,
1: बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी

0: जाता है।
1: वाह वाह वाह,
0: जरूरी इसलिए है हादसों का सामना करना, झिझक भी खत्म होती है, दिल से डर भी जाता
2: डर भी जाता
1: है। वाह बहुत खूब,
0: जरूरी इसलिए है हादसों का सामना करना, झिझक भी खत्म होती है, दिल से डर भी जाता है। और वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको सुना है, अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है।
2: बहुत अच्छे, बहुत
0: वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको सुना है, अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूं तो मेरा सर भी जाता है।
2: बहुत
0: ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूं तो मेरा सर भी जाता है। जिसे होती है धुन एजाज मंजिल तक पहुंचने की, जिसे होती है धुन एजाज मंजिल तक पहुंचने की, वो मंजिल तक हजारों ठोकरे खाकर भी जाता है। वो मंजिल तक हजारों ठोकरे खाकर भी जाता है। और यहीं से दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमा लें सलीम साहब, कि कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है।
2: क्या कहने, क्या कहने,
0: कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है रहमान साहब, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। और शेर अब सुनिए शागिर भाई, कि उसे लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है।
2: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा, बहुत खूब कहने।
0: उस एक लम्हे को कैसे करूं नजर अंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है।
2: सदी कम है,
0: फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है,
1: कम है।
0: यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज की वही
1: कम है।
2: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहें।
0: यहाँ खुलूस वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज की वही कम है। और शेर सुन लीजिए साहब, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शाकिर भाई, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और मेरी जिंदगी का बहुत सच्चा शेर, के गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है।
2: बहुत बहुत,
0: गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है।
2: बहुत अच्छा,
0: शुक्रिया,
2: बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इससे पहले के अख्तिताम का ऐलान किया जाए, मैं एक बार फिर उन शोरे कराम के नामे नामी का ऐलान करना चाहूँगा जिन्होंने आज के इस आकाशवाणी के मुशायरे में हिस्सा लिया और अपना कलाम पेश किया। जनाब राशिद रहमान, जनाब शाकिर देहलवी, जनाब सलीम अमरोही और ये खादिम एजाज अंसारी।
3: सामीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब एजाज अंसारी। इस मुशायरे की तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार अली सैफी की। अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए।

0: खुदा हाफिज।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म मन का ये गीत।

0: कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड

0: calculations, whatever maximum will be possible, that will be given to them.
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने

0: के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन

0: इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वह हमें इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारेफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफ्द के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निज़ाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफ्द के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के उन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर ना हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरव दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफ़क़्क़ा वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल व जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: लोकसभा में हज़्ब इख्तलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम करे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए

0: उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमत के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर, चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी के अहम सुतून हैं।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोज़ा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाज़ाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसरत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है, जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के

0: एक ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरास्ते आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सोनावेशा में निहायत शानो शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे लिबास, जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरम इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे देर एल ज़ोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम से कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज़ के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 3 विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कैनेडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहित सिंह ने मिस्र की बार्ब समे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। CJP ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम

0: प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाए जाने के अवसर पर आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है आईवीएफ तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सके। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है। है, जिससे प्रोस्टेट और

0: ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं।
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर

0: है क्या और ये इतने खास क्यों है?
1: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पर बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं, उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
0: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है? इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
1: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से वापस 0 लाएंगे, तो एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी, FeB, बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
0: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं?
1: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और मोस्टली जो हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो, जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
0: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
1: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं, जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
0: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स, की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट, उनका विजन कोई

0: समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक आईसीएमआर की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमिट, एक फीमेल और मेल गेमिट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को आईवीएफ कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है, और फिर स्लोली स्लोली पांचवे दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवे दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों आईवीएफ तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं, देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं आईवीएफ के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन एआई सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में एआई विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो एआई के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना, इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक एक एम स्ट्राइप ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती

0: वो MStripe ऐप में एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी, जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए, और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं कर रहा, वो कैसे बदलेगा। सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली, वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी DC प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनकी द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरिफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोता हूँ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: warm welcome to all our listeners of National Programme of Music. In today's broadcast, we bring to you a delightful semi-classical vocal recital by Akashwani's A-grade artist, Shrimati Aditi Banerjee.
1: Shrimati Aditi Banerjee ne apni prarambhik sangeet shiksha swargiya hai. श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन ख्याल एंड टप्पा सिंगिंग under the eminent exponent of the Gwalior Gharana, Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit, under the guidance of Padma Bhushan Srimati Shobha Gurtu, for nearly 14 years, she mastered the authentic Purab Ang Gayaki, performing Thumri, Dadra, Hori and Kajri, and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions. In addition to topping her MA and MPhil degrees in music from Delhi University with gold medals, Srimati Aditi Banerjee was specially honored by Padma Vibhushan Girija Devi during the Purabang Gayaki Utsav.
1: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी, जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं, बैरन रतिया कैसे आऊं।
0: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun?

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का अमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक का अमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया।

0: है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके जिंदगी में कुछ चीजें खामोशी से दाखिल हो जाती हैं और खामोशी से अलविदा भी कह जाती हैं। लेकिन इस वक्त बात यह है कि किस तरह से खामोशी से आपकी जिंदगी में कुछ चीजें दाखिल हो जाती हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें शामिल हो जाती हैं और उनका एहसास जब होता है, जब या तो वो बहुत करीब आ जाए या फिर उनसे थोड़ी दूरी बनने लगे। तो ऐसी वो कौन सी चीज़, वो ऐसी कौन सी शख्सियत, वो ऐसा कौन सा इंसान

इंसान ऐसा था आपकी ज़िंदगी में जो बहुत खामोशी से आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, और आपको उसके दाखिल होने का अंदाज़ा, उसके आपकी ज़िंदगी में शामिल होने का जो एहसास है वो आपको कब हुआ? आप हमें बताइए हमारे ईमेल एड्रेस पे। हमारा ईमेल एड्रेस है ip radio delhi@gmail.com।

खामोशी से अगर किसी की आमद हो रही है और आपकी खामोशियाँ गुनगुना रही हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद है। लेकिन अगर आपकी खामोशियों में कुछ हलचल ज़्यादा मच रही है और खामोशियों की जगह कोहराम ने और शोर शराबे ने ले ली है तो ज़रा संभलने की ज़रूरत है। और यही जो बात है, यही ज़िंदगी की असलियत है कि जब आप ज़्यादा खामोश रहें और अचानक ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल ज़्यादा हो जाए तब भी सोचने की ज़रूरत है, और अचानक उथल पुथल ज़िंदगी में खामोशियाँ आ जाएं और उनकी ये समझ लीजिए कि दस्तक ज़्यादा होने लगे तब भी संभलने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि संभल जाइए, ये आपके लिए अलर्ट है।

0: कभी कभी बिना सोचे समझे की गई चीजें, की गई बातें कामयाब हो जाती हैं, और कभी कभी जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहता है कि क्या अच्छा होता कि उस वक्त थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर सोच लिया होता। तो अब मुझे ये पछतावा ना हो कि काश मैंने पहले से मैसेजेस शामिल कर लिए होते तो सबके नाम शामिल हो जाते, इसलिए मैं आपके मैसेजेस अभी से शामिल कर रही हूँ। हमारे पास मैसेज आया है मेरठ कैंट से, लिखने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। आपने की है गीत की फरमाइश, तो जनाब कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए। कमल ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ अनिल कुमार गौहानकर ने हमें मैसेज किया है, और आपने लिखा है ब्रैकेट में सिर्फ एक ही मेल। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिर्फ एक ही मेल किया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी कही बात को मान लेते हैं। आपने गीत की फरमाइश की है अनिल कुमार जी, तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। आप हमें उमरखेड़ा महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं अभिजीत गौहानकर, श्रीमती सरिता गौहानकर, प्रिंस एकांश, और बदलापुर मुंबई से आपके साथ हैं प्रणीता गौहानकर, सिद्धांत और अर्जुन गौहानकर, उनके साथ हैं टुक टुक। इसके साथ साथ मैसेज सुदर्शन शाह का हमारे पास आया है, आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। कमल बालूजा हमें मैसेज कर रहे हैं, और आपने एक गीत की फरमाइश की, आप मजनू का टीला से हमें मैसेज कर रहे हैं, और आपके साथ हैं सागर बालूजा, और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपने साथ साथ अपने साथियों का भी आप नाम शामिल कर लेते हैं। मैसेज हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश से, और लिखने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, और मऊ से हमें लिखा है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। आपका बहुत धन्यवाद, आपने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। किशन सपकल जी ने हमें मैसेज किया है, और आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। आप हमें शास्त्री नगर बीड़ शहर से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकल। रमेश कुमार ने हमें मैसेज किया है पटेल नगर मलोट से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया के साथ हैं गीता रानी जाजौरिया और गगनदीप। अकरम हुसैन प्रिंस ने हमें सीतामढ़ी बिहार से मैसेज किया है, आकांक्षी पाहुआ का मैसेज हमारे पास आया है, और आपने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। मैसेज हमारे पास पहुंचा है राधे श्याम शर्मा जी का, आप हमें गांव हांडी खेड़ा से मैसेज कर रहे हैं, सिरसा से आपके साथ हैं इंदिरा शर्मा, और मसरूर हसन का हमारे पास मैसेज आया है सहारनपुर से, आपके साथ हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। संजय ढींगिया जी का मैसेज हमारे पास आया है, और गीत की फरमाइश आपने की है, आपके साथ हैं नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। नबी हसन का भी हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, और नंद किशोर घाटे जी ने हमें मैसेज किया है बीड़ शहर महाराष्ट्र से, इसके साथ साथ सतीश अनेजा ने हमें मैसेज किया है, और आप चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं बिमला अनेजा। अब्दुल गफ्फार का मैसेज हमारे पास आया है, और आप हमें मैसेज कर रहे हैं कहाँ से जी, आप हमें मैसेज कर रहे हैं खंडवा से, आपके साथ हैं अब्दुल हक डाबर और ज़ियाउल हक। इसके साथ साथ अब ज़रूरी ये है कि आपको एक आवश्यक सूचना सुनवाएं, उसके फौरन बाद आप सुनेंगे बेहतरीन गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ये जो खामोशियों में कभी कभी आहिस्ता से आते हैं और कभी एक हल्की सी दस्तक देके कहीं खो जाते हैं, तो उस वक्त जो बेकरारी होती है उसे तलाश लेने की, उसे पा लेने की, उसे देख लेने की, वो बेकरारी इस गीत में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है। और बढ़ते हैं हम अगले मैसेज की तरफ। मैसेज हमारे पास आया है हिसार से, लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आपने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। और प्रवीण चौहान ने हमें खरगोन से मैसेज किया है और आपने कहा है कि किसी, ये आप एक गीत सुनना चाहते हैं। अच्छा, और हाजी मजहर ने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, तो बहुत शुक्रिया। आप हमें मऊ से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है रज़िया बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी। गाज़ीपुर से मैसेज किया है आज़ाद अली अनवर ने और रिजवाना परवीन ने। मैसेज हमारे पास आया है मीरा सिंह का और आपने एक गीत की फरमाइश की है और आप हमें मैसेज कर रही हैं समस्तीपुर बिहार से। आपके साथ हैं ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से हैं सोनम सिंह और अनामिका सिंह। मैसेज है हमारे पास मोहम्मद कमर का और आपने कहा है कि आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि मेरे पास तो मेरे माइक का वॉल्यूम बिल्कुल दुरुस्त है। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इत्तला करने के लिए। नासिर शेख ने हमें मैसेज किया है और आप हमें महाराष्ट्र श्री रामपुर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। अहमदनगर से आपके साथ हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मिकाइल और जैनब। मैसेज हम तक पहुंचा है सुदर्शन मुखी जी का और आपके साथ है अनीता मुखी, सिमरन शांति नगर सोनीपत से आप हमें मैसेज कर रही हैं। मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश वर्मा का और आपने गीत की फरमाइश की है। रहमान ने हमें मैसेज किया है और आप हमें खंडवा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं शेख सईद राही और अनस। मैसेज हमारे पास आया है सतीश अनेजा का और आप हमें कह रहे हैं कि जी टॉपिक पर बात है। तो जी आपने कहा कि जब हमारा किरदार अच्छा होता है तो हम किसी न किसी की पसंद बन जाते हैं जिसकी हमें खबर तक नहीं होती, लेकिन जब वो कभी हमारी कुछ खासियत और कुछ वो बातें जो उसको पसंद हैं वो बातें बयान करता है तो सच में वो पल बहुत बेहतरीन होता है। खामोशी से पली मोहब्बत जब अचानक से पनपती है तो यकीनन वो ज़िंदगी के बेहतरीन पलों में अव्वल नंबर पर होता है। बहुत सही कहा आपने सतीश जी। और वाकई में खामोशी से, एक खामोशी में कहें या फिर ऐसे कहें कि जब अचानक कोई आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और बस यूं ही लगे कि बस यूं ही मुलाकात थी या फिर अचानक से उसका आना हो गया या बात शुरू हो गई, तो कह सकते हैं कि वो खामोशी से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जो उसका अच्छा अमल है, जो उसका अच्छा बिहेवियर है, जो उसका ये समझ लीजिए उसका तरीक़ा है आपकी फ़िक्र करने का या आप के लिए आपकी अच्छी चीज़ों को सराहने का, तब वहाँ से वो रिश्ता जो है वो बनना और पनपना शुरू हो जाता है। और वक्त के साथ साथ और समझ के साथ साथ जैसी जैसी समझ बढ़ती है एक दूसरे के लिए, वो रिश्ता पुख्तगी की तरफ, मजबूती की तरफ बढ़ने लगता है। सहारनपुर से हमारे पास मैसेज आया है जॉन डिकॉस्ट्रा का, रोज़ी पर्ल और विलिस ने हमें मैसेज किया है। आपने कहा है कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें, तो ज़रूर आप अपना नाम सुन रहे होंगे। गुरमीत सिंह ने हमें मैसेज किया है साउथ एक्सटेंशन से और जी आपको गीत पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज हमारे पास आया है पटना बिहार से और लिखने वाले हैं वसीम अकरम, साले खातून और गुड़िया। मुकेश भट्टा जी ने हमें मैसेज किया है केंद्र, माफ़ कीजिएगा, पटियाला से आपने हमें मैसेज किया है और आपके साथ हैं नीलम भट्टा, निहारिका और वंश भट्टा। अब्दुल गफ्फार ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ अमृत राम गरीहा जी ने हमें मैसेज किया है भटिंडा से और रियासत हुसैन साहब हर बार की तरह इस बार भी मैसेज

जिसकी झड़ी लगा दी है आपने। आप हमें उत्तर प्रदेश खंडवा, माफ़ कीजिएगा, आप हमें उत्तराखंड से मैसेज कर रहे हैं, और आपके साथ हैं नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज़ और रिफ़ाक़त, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। आपने कहा कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लिया जाए। इसके साथ साथ पूनम गगनेजा ने हमें मैसेज किया है जलालाबाद वेस्ट से, आपके साथ हैं सुरेश गगनेजा। और कौशल्या जोशी जी, ये नाम हमारे यहाँ नया भी शामिल हुआ है इस वक्त के कार्यक्रम में, आप हमें सहारनपुर चंद्रनगर से मैसेज कर रही हैं। कौशल्या जोशी हैं, सुरेश जोशी, सोनाली और रायगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, प्रभा जाटव, आशु जाटव और हिसार से हैं गुंजन और सृजन। आपने गीत की फरमाइश की है। फागुराम यादव जी का भी हमारे पास मैसेज आ गया है, और आप हमें कांकेर संबलपुर से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। सुनते हैं ये बेहतरीन गीत।

और अगला मैसेज हमारे पास आया है हिमकेश्वर साहू जी का, और आप हमें छत्तीसगढ़ भट्टापारा से मैसेज कर रहे हैं। वलीउल्लाह अंसारी ने हमें डुमराव से मैसेज किया है, माफ़ कीजिएगा। और यास्मीन अंसारी या यामिनी, यामिनी अंसारी आपके साथ हैं, असमानाज अंसारी आपके साथ हैं। ताज मोहम्मद ने हमें मैसेज किया है, और गुरप्रीत सिंह ने हमें मैसेज किया है तंगौरी से, और आपके साथ हैं जसबीर कौर, महिक प्रीत और सहज प्रीत सिंह, और पंजाब से आपका मैसेज हम तक पहुंचा है। आपका मैसेज भी और नाम भी पहली बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीम वक़ार ने हमें इंदिरा चौक दिल्ली से मैसेज किया है, और आपके साथ हैं माहिरा अजीम, निशा अजीम, और आर कुमार ने हमें पंजाब से मैसेज किया है, आपके साथ हैं मिंटू थॉमस और पिंकी। छोटे अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं संभल से, और आज आपने नाम नहीं लिखा छोटे अंसारी साहब, आपने आज तो नाम नहीं लिखा, नाम लेके ही मुखातिब नहीं किया। जसवीर सिंह ने हमें मैसेज किया है, और आप हमें बता रहे हैं कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए सुन रहे हैं। आप हमें निमानाबाद ज़िला जींद से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। आपने कहा कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लें, तो उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है चमन पार्क दिल्ली से, लिखने वाले हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, और वीरम गाम से मैसेज हमें किया है अजीता पॉल, अभिजीत पॉल और हिमा पॉल ने भी मैसेज हमारे पास और आए हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है, और आप कह रहे हैं कि पुराने गीतों को भी जगह दें, तो बसंत जी मैं हमेशा हमेशा कोशिश करती हूँ, बल्कि मुझे पसंद पुराने गीत भी हैं, लेकिन लगा कि आज जिस तरह की फरमाइश आ रही है, क्यों ना थोड़े से नए गीतों को भी शामिल किया जाए कार्यक्रम में। और ये गीत भी कर्ण प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हमें कोलकाता से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है गंगाधर येमेकर का, और आप हमें महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं प्रमोद येमेकर और प्रदीप। आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज हमारे पास आया है अमृत जी का, और आप हमें भटिंडा से मैसेज कर रहे हैं। तो जी सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।

मेरे हाथ से इस घड़ी का जो हाथ है वो छूटता चला जा रहा है। लगभग लगभग हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं और कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं। मैसेज हमारे पास आया राजकोट गुजरात से, लिखने वाली हैं रश्मि झरना और भरत कुमार। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए। स्वीटी जोड़ा का मैसेज आया है हमारे पास, कृष्णा पार्क दिल्ली से आपके साथ हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवान। और मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद कमर का, और फारूक अली ख़ान ने हमें मैसेज किया है। आपने हमें मैसेज कहाँ से किया है? यूपी गगनौर से। और आपने कहा है कि इस रात की तन्हाई में आप हमें सुन रहे हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं इस तन्हाई में, और ख़ामोशी आपके इर्द गिर्द नहीं है। पी एस नवानकर ने हमें मैसेज किया है, शंकर लाल जायसवाल ने हमें मैसेज किया है।

आप हमें इताला महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं दुर्गेश्वरी, जायसवाल, राखी, तृप्ति, अर्णव और शुभ प्रसाद। मैसेज हमारे पास आया है, और किसका? हमारे पास मैसेज आया है पटना बिहार से, अक्रम का मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, और भी बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कि मैंने सभी के नाम शामिल कर लिए हैं। और अब इस कार्यक्रम का ये उम्मीद करती हूँ ये आखिरी गीत है। उम्मीद क्या, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी ही गीत है। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को ही इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ उठा न सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने लोगों से शांतिपूर्वक

0: घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 46,06,924 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं, जो दिल्ली के कुल 1,45,10,298 मतदाताओं का 45.53% हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, रात के 12:10 हुए हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम सुरों के सफ़रनामे का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको एक ऐसी मीठी आवाज़ की जानकारी देते हैं जिनके सफ़र के बारे में हम बात करते हैं। वो आवाज़ जो केवल कानों तक ना पहुँचे बल्कि सीधे दिल में उतर जाए, सुर जो समय के साथ और भी निखरते चलें, और गायकी जिसमें शास्त्रीय संगीत की गहराई के साथ भावनाओं की सादगी भी हो। ऐसी ही एक आवाज़ की हम बात करेंगे आज। गायक हैं सुरेश वाडेकर। भारतीय संगीत में ऐसी आवाज़ बहुत ही कम है जिन्हें सुनते ही मन ठहर सजाए। ऐसी ही एक आवाज़ है सुरेश वाडेकर की। उनकी आवाज़ में, उनकी गायकी में ना कोई बनावट है और ना ही कोई दिखावा, बस सुरों की सच्चाई और भावों की गहराई है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सुरेश वाडेकर ने कैसे अपने जीवन को, अपने संघर्षों को उपलब्धियों में बदला, और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से भी होंगे जो जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। तो आइए क्यों ना शुरुआत करें एक ऐसे गीत से जिसने ज़िंदगी को अपनाने का एक नया ही नज़रिया दिया है। फिल्म है सदमा और गीत गुलजार का और संगीत इलैयाराजा, और गाया है सुरेश वाडेकर ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, सुरेश वाडकर की बात हम कर रहे हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। जहां दूसरे बच्चे खेल के मैदान में अपना समय बिताते थे, वहीं सुरेश जी का मन रियाज में लगता था। उन्होंने प्रख्यात गुरु पंडित जियालाल वसंत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। गुरु का अनुशासन, नियमित अभ्यास और संगीत के प्रति समर्पण, यही तीन बातें आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कहा जाता है कि सुरेश वाडकर रोज़ कई घंटों तक रियाज करते थे। उनका मानना था कि रियाज ही कलाकार का सबसे बड़ा साथी होता है, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ में सुरों की शुद्धता आज भी सुनाई देती है। साल 1976 उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने प्रतिष्ठित सुर सिंगार प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उस प्रतियोगिता में संगीत जगत की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर संगीतकार जयदेव ने उन्हें फिल्मों में गाने का मौका दिया। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। उस दौर में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान गायक पहले से स्थापित थे। ऐसे समय में अपनी अलग पहचान बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन सुरेश वाडकर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हमेशा गीत की भावना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उनके शुरुआती गीतों में एक ऐसा गीत आया जिसने श्रोताओं को ये एहसास करा दिया कि भारतीय फिल्म संगीत को एक नई और संवेदनशील आवाज़ मिल चुकी है। आइए सुनते हैं फिल्म गमन का ये कालजयी गीत। फिल्म गमन और संगीत जयदेव, गीत लिखा था शहरयार ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रही है सुरेश वाडकर की, जिनके संगीत की बात कर रहे हैं हम, जिनकी गायकी की बात हम कर रहे हैं, और ये विशेष प्रस्तुति समर्पित है उनको, फिल्म संगीत की एक ऐसी आवाज़ को जिसकी सादगी और सुरों की मिठास ने दशकों से श्रोताओं के दिलों में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। सुरेश वाडकर के लिए ये मोड़ लेकर एक महान फिल्मकार राज कपूर आए। साल था 1982। राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म प्रेम रोग पर काम कर रहे थे। संगीत की जिम्मेदारी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कंधों पर। फिल्म के लिए एक ऐसी आवाज़ की तलाश थी जो किरदार की मासूमियत, दर्द, भावनाओं को पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त कर सके। कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन अंततः सुरेश वाडकर की आवाज़ चुनी गई। ये फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव साबित हुआ। फिल्म का गीत फिल्म का गीत मैं हूँ प्रेम रोगी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। इस गीत ने सुरेश वाडकर को देश भर में नई पहचान दिलाई। उनकी गायकी में जो सहजता थी वही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत

दोस्तों कहते हैं एक अच्छा गायक सिर्फ सुर नहीं लगाता बल्कि गीत के शब्दों को भी जीता है। सुरेश वाडकर की गायकी में यही खूबी सबसे अलग दिखाई देती है। रिकॉर्डिंग के दौरान वे गीत का भाव समझने के लिए गीतकार और संगीतकार से विस्तार से चर्चा करते थे। उनका मानना था कि यदि गायक शब्दों का अर्थ महसूस नहीं करेगा तो श्रोता भी उस भावना से जुड़ नहीं पाएंगे, और यही समर्पण उनकी गायकी को समय की कसौटी पर खरा उतरता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत गीत।

फिल्म परिंदा से ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस गीत में जो दोस्ती है, अपनापन है, प्रेम की भावना है, वो बेहद खूबसूरती से व्यक्त होता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा और बात हो रही है आज गायक सुरेश वाडकर की। दोस्तों हर गायक की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। कोई अपनी ऊंची आवाज़ के लिए जाना जाता है तो कोई अपनी अदायगी के लिए, लेकिन सुरेश वाडकर की पहचान बनी भावों को सुरों में ढाल देने की अद्भुत कला से। और यही कारण था कि जब भी किसी संगीतकार को ऐसा गीत चाहिए होता जिसमें संवेदनाएं शब्दों से ज़्यादा सुरों में बोलें, तो उनकी पहली पसंद अक्सर सुरेश वाडकर ही होते हैं। संगीतकार खयाम ने एक बार कहा था कि सुरेश वाडकर की आवाज़ में एक ऐसी सादगी है जो सीधे श्रोता के मन को छू लेती है। वहीं रवींद्र जैन उनकी शास्त्रीय समझ और शब्दों की स्पष्टता की बहुत सराहना करते थे। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर की आवाज़ की बारे में या उन्हीं के बारे में, उनके गाए गीतों के बारे में। तो दोस्तों, सुरेश वाडकर ने सिर्फ फिल्मी गीतों तक ही ख़ुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने भक्ति संगीत, मराठी भावगीत, गज़लों और शास्त्रीय प्रस्तुतियों में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद उन्होंने कभी अपना रियाज नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि कलाकार की असली पूंजी उसका अभ्यास होता है। आज भी वे युवा गायकों से कहते हैं कि अगर सुर आपका मित्र बन जाए तो सफलता अपने आप आपके पास चली आएगी। यही सोच उन्हें एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक आदर्श गुरु भी बनाती है। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म माचिस से

साथियों, सुरेश वाडकर ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अनेक देशों में लाइव कॉन्सर्ट किए। विदेशों में बसे भारतीयों के बीच उनके कार्यक्रमों को हमेशा भरपूर प्यार मिला। वो मंच पर कम बोलते हैं, लेकिन जब गाते हैं तो हर गीत एक कहानी बन जाता है। ये सादगी भी उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। साल 2021 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान केवल एक गायक को नहीं बल्कि उस साधक को मिला जिसने दशकों तक संगीत को पूरी निष्ठा के साथ जिया। तो आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म हीना से, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और मोहम्मद सईद की आवाज़ में।

0: और अब आज की इस मधुर संगीत यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुरेश वाडकर की आवाज़ हमें यह एहसास कराती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की भाषा भी है। दशकों से उन्होंने अपने सुरों के माध्यम से प्रेम, विरह, भक्ति, उम्मीद और जीवन के अनगिनत रंगों को स्वर दिए हैं। उनकी गायकी हमें ये सिखाती है कि सच्ची कला समय की मोहताज नहीं होती, वो हर दौर में दिलों को छूती है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि आपको हमेशा रेडियो के हर कार्यक्रम पसंद आए। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: हाँ, इसकी रंग लगती है।
2: तो हमने तो देखा ना, मेरे सामने ये असाइनमेंट पे काम करता था मैम, ये जर्नलिस्ट वाला काम नहीं करता था। ही वाज ऑन असाइनमेंट कि हाँ ये कैमरा यहाँ गया कि नहीं, ये यूनिट यहाँ गई कि नहीं, वो रिपोर्टर वहाँ पहुँचा कि नहीं, ये फुटेज आई कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आई कि नहीं, ये गेस्ट को बुलाओ, वो उसको बस।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को

0: मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 15,22,000 मृत मतदाताओं और 14,43,000 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो स्थायी रूप से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके अलावा 7,37,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,71,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य के कुल 4,16,00,000 मतदाताओं का 89.22% हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म खुदा गवाह से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म मौसम से यह खूबसूरत सा गीत, और गाया था लता मंगेशकर और भूपेंद्र ने। आइए अगली फिल्म से गाना सुनते हैं। फिल्म है उत्सव और गायक हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल।

अभी आपने सुना फिल्म एतबार से इस गीत को, गायक भूपेंद्र और लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म सिलसिला से, गायक अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंधी से, गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर।
1: किसी और सभी की बात थी,
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी। लो

0: सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
3: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में

0: संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर शनिवार शाम 4 बजे तक 340,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर भीषण हो सकती है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protests during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said the NEET UG results declared on July 16 were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He also said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act that caused him deep anguish. Union Minister Prahlad Joshi will be the new education minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as well as New and Renewable Energy. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The CJP has withdrawn its protest after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination systems and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them. On the 5-point charter given by the CJP for reforms and examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. On that note,

0: the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें पीसफुली अपने घर वापस जाएं.
2: Prime Minister

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। इस यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान

समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर आज शाम 4 बजे तक 340,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। सुबह के 4 बजने को है, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं,

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 4:20 और 11 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए SR जानकी रमन की प्रस्तुति।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आपने एस आर जानकी रमन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप अश्वत्थासन और तितली क्रिया के बारे में जानेंगे। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति को मानद सम्मान से भी सम्मानित किया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोष कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता जताई। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अश्वथासन और

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट

0: तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें, श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें, अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें, सुखासन जैसे अवस्था लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए, यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने अश्वत्थासन और तितली क्रिया के बारे में जाना। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।